0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

भूषण मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकवन्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं।

0: श्रावण प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। आद्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यम तमीशमजरामरमात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। जो आदि और अंत में और मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी और समानता अथवा तुलना और कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके पांच मुख हैं और खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना पालन और संगार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप पांच प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का और हम मन ही मन चिंतन करते हैं। शूला ही टंक घंटा शिशिणी कुलिशा नशाग्नभिर्दधानम दौर्भिर्शीतांशु खंड प्रतिघटित जटा भारमौलिम त्रिनेत्रम नाना कल्पाभिरामापघन मभितमतार्थ प्रदम सुप्रसन्नम पद्मस्थम पंचवक्त्रम स्फटकमणि निभम पार्वतीशम नमामि। जो अपने कर कमलों में क्रमशः त्रिशूल सर्प परशु घंटा तलवार अंकुश वज्र पास अग्नि और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनका और प्रत्येक मुखमंडल द्वितीया के चंद्रमा से युक्त जटाओं से सुशोभित हो रहा है, जिनके चंद्रमा और सूर्य और अग्नि ये तीन नेत्र हैं, जो अनेक कल्प वृक्षों के समान अपने भक्तों को स्थिर करने वाले मनोरथों से परिपूर्ण कर देते हैं, और जो सदा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, जो कमल के ऊपर विराजमान हैं, जिनके पांच मुख हैं तथा जिनका वर्ण स्फटिक के समान दिव्य प्रभा से आभासित हो रहा है, उन पार्वतीनाथ भगवान सदाशिव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विवरासत शंभु सुजाना। सच है सुजान भक्तों की भक्ति का इससे परिचय मिलता है। यही मर्म श्री गुरु वशिष्ठ के इस वाक्य में भरा हुआ है। सुनहु भर

तभावी प्रबल बिलखी कहे हूँ मुनि नाथा, क्योंकि जब अगात हृदय श्री भरत जी ने कहा कि सो गोसाई विधि गति जही छय की, सकही को टाकी टेक जो टेकी, भुजही मोही उपाहूं अब सो सब मोर अभाऊं, तब वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कह दिया, तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख विधि सपन हूँ नाही। वस्तुतः बात भी यही है, भगवान शिव तथा श्री वशिष्ठ जी को भवानी के मिटने वाले समर्थ भी तो राम भक्ति के प्रताप से ही मिली थी, नहीं तो कह

0: श्री महादेव अथवा मुनि वशिष्ठ जी अपने देवपन या मुनिपन के बल से विधि अंक के मिटाने की सामर्थ्य तो रखते नहीं थे। यह अघटित सामर्थ्य भगवान की दया से और भागवत भक्ति के प्रताप से भक्तों के ही तो शक्ति है। अतः उन धर्म यह सिद्धांत रहता है कि हम तो तुम्हारे खुशी में खुश हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। सती को परीक्षा लेने का आदेश करते समय भगवान शिव ने इतना ही चेतना दे दिया था, ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत्।

पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः स्थमेश्वरं श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज फ्राइडे 14 अगस्त के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। कल जो मानस पाठ चल रहे हैं, कल दोहा संख्या 54 यानी दोहा नंबर 54 पर हम लोगों ने विराम लिया। माँ सती जो अपनी ओर से चारों ओर भगवान राम की सर्वव्यापकता की दर्शन कर रहे हैं, इसको तुलसीदास जी और विस्तार से बताते हुए आगे लिख रहे हैं। चलिए आज का पाठ हम लोग करें।

माता सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे।

अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी की बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सो

0: आज इसी चौपाई के साथ हम विराम लें, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: इहसे ततो नो अभयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयम् न पशुभ्यः।
1: आर्यसभा मॉरिशस के पुरोहित रामसुंदर शोभन का सादर सुप्रेम नमस्ते और सुप्रभात। श्रावण मास की वेद चर्चा विषय में निर्भय होना पर विचार करूंगा। यह मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 22वां मंत्र है। प्रिय श्रोतागण, सारे संसार में परमपिता परमेश्वर का वास है। ईश्वर स्वयं चारों ओर अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहता है। कोई ऐसी जगह खाली नहीं बचा है जहाँ ईश्वर का हाथ न गया हो। इस मंत्र में भक्त अपने ईश सर्वरक्षक से प्रार्थना करता है, हे महेश्वर दयालु, मैं डरा हुआ हूँ, भयभीत हूँ, मुझे कभी किसी मनुष्य या व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी घटना से भय न हो। मन में कभी कभी ऐसी ऐसी बातें सोच सोच कर व्यर्थ में भय पैदा हो जाता है। कभी किसी प्रकार आशंका करके मन को डर का डर बना रहता है। प्रिय श्रोतागण, अनेक बार ऐसा

काव्य होता है कि भय इतना बलवान हो जाता है कि दिन भर मन मस्तिष्क में छाया रहता है, दिमाग से हटाओ हटता नहीं, भुलाने पर भी नहीं भूलता है, बलपूर्वक मन को किसी दूसरे काम में लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन अचानक फिर वही चिंता भय आशंका आ घिरती है। आजकल वर्तमान समय में समस्याएं और भी गंभीर हो गई हैं। परिवार में आपसी तनाव के कारण भय उत्पन्न हो गया है, घरों में स्त्रियों का पुरुषों से भय है, बेटियों को गलियों में बदमाशों से डर है, बच्चों को माता पिता से भय है, पड़ोसी को पड़ोसी से भय है, अध्यापक को विद्यार्थी से, यहाँ तक पत्नी को पति से भय, भाई को भाई से डर बना रहता है, आदमियों को आदमी से अर्थात मनुष्य को एक दूसरे से भय रहता ही रहता है। इस समय संसार में भय और आतंक का तांडव नृत्य हो रहा है। प्रतिदिन कहीं न कहीं 50 से अधिक लोग अकाल के काल में समा जाते हैं। इसका महान कारण क्या है? अविश्वास। संसार का सामाजिक संतुलन बिगड़ गया है। झूठ, छल, कपट, वर्ताव में न्याय का तनिक भी भाव नहीं। कब किसी पर कौन आक्रमण कर दे, विश्वास नहीं है। संसार भोगवाद का पिटारा बन गया है। उस पिटारे में मनुष्य के धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, आदर्श अनादर्श का ज्ञान सब बंद गया है। उसमें स्वार्थ का ताला लग गया है। ऐसा लग रहा है कि उस ताले में अज्ञानता की जंग लग गई है और ज्ञान की चाबी खो भी गई है। प्रिय श्रोतागण, आप लोगों ने सुना, बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में पंडिता सुनीति देवी प्रसाद मुगल का सादर से प्रेम नमस्ते और इस वेद मास के संदर्भ में प्रस्तुत है मंत्र व्याख्या। ओम मूर्धासी राध ध्रुवासी धरुणा धर्त्रयसी धरणी आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा। यजुर्वेद अध्याय 14 मंत्र 21। अर्थात कुछ अहंकार ग्रस्त पुरुष स्त्री को पुरुष की तुलना में न्यून बुद्धिमती न्यून शक्तिधारी दुर्बल प्राणी के रूप में हेय दृष्टि से देखते हैं। उनकी दोषपूर्ण मान्यता है कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम श्रेष्ठ है, अतः उसे अपने भरण पोषण के लिए पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है। उनकी यह भी धारणा है कि पुरुष को ही न कि स्त्री को परिवार का प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार पुरुष की क्षमता स्त्री से कहीं अधिक ऊंच होती है। यजुर्वेद का निम्नलिखित मंत्र लोगों की धारणा को मिथ्या ठहराता है। पवित्र वेद स्त्री की स्थिति को ऊंच और श्रेष्ठ ठहराते हैं तथा उसके प्रति ऊंच सम्मान व्यक्त करते हैं। वैदिक धर्म के अनुसार स्त्री श्रेष्ठ व्यक्तित्व की धनी है जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है। यह स्त्री ही है जो परिवार की प्रमुख होने के नाते गृहस्थ की बुद्धिमत्ता

पूर्ण देखभाल करती है, परिवार के सदस्यों का सावधानी पूर्वक पालन करती है और वंश की प्रतिष्ठा और सम्मान बनाए रखती है। वह पुरुष की प्रथम अध्यापिका है, पुरुष की प्रथम पाठशाला उसकी माँ की ममतामयी गोद है। घर में सबसे बड़ी अर्थशास्त्री पुरुष नहीं वरन स्त्री है। यह स्त्री ही है जो घर को चलाती है, जो घर की आय तथा व्यय में बुद्धिपूर्ण सामंजस्य रखती है। संक्षेप में, वही घर का स्तंभ और धुरी है, वही घर की संरक्षण तथा त्राणदाता है, वही शांति और समृद्धि की अग्रदूत है। अतः उसे उचित रूप में ही श्रेष्ठ पद की अधिकारिणी कहा जाता है। जो वेदों में सुलभ है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ओम शांति शांति शांति।

0: नमहे।
1: सब मनुष्यों को परमेश्वर की उपासना वेद के अनुसार करनी चाहिए। ऐसा करने से मन, बुद्धि और आत्मा में पवित्रता का संचार होता है। जैसे सूर्य की किरणों में ऊर्जा होती है, वैसे ही भगवान की भक्ति में शक्ति होती है। जैसे सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही परमात्मा की भक्ति से

0: बुद्धि प्रकाशित होकर निर्मल और दिव्य बन जाती है। अतः सब मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना से सुमति को प्राप्त करें और ईश्वर प्रदत्त ऐश्वर्य से लाभ उठाएं तथा सब जीवों के उपकार में सदा तत्पर रहें।
1: ओम कल्पताम ते दिशस्तुभ्यमापः शिव तमास्तुभ्यं भवन्तु सिन्धवः अन्तरिक्षं शिवं तुभ्यं कल्पतां ते दिशः सर्वाः।
0: जीव के लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाएं अत्यंत सुखकारिणी होवें। प्राण प्रद स्वस्थ वायु और जल अत्यंत शांतिदायक होवें। समुद्र और नदियां सब जीवों के लिए लाभकारी होवें। मेघ से युक्त अंतरिक्ष व आकाश सब जीव के लिए कल्याणकारी होवें। ईशान नैऋत्य आग्नेय वायव्य ऊपर नीचे ये सब उपदिशाएं जीव के कर्म में मंगलकारी सिद्ध होवें। जो लोग अधर्म को छोड़कर सब प्रकार से धर्म का ही आचरण करते हैं उनके लिए यह धरती एवं संपूर्ण सृष्टि के उपयोगी पदार्थ सुखकारक तथा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होवें।
1: ओम सूर्य एकाकी चरति चंद्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिराव परम महत्।
0: हे जानने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों, सूर्य परमात्मा की व्यवस्था से बिना किसी आधार या अन्य साधन के अपनी कक्षा में गतिशील रहता है। इसी सूर्य के प्रकाश से चंद्रलोक प्रकाशित होता है। अग्नि हिम बर्फ व ठंड की औषधि है। अग्नि ठंड व शीतलता को समाप्त कर देती है। विशाल भूमि बीज बोने का स्थान है। इस सृष्टि में सूर्यलोक अपनी आकर्षण शक्ति से आकाश में विद्यमान है और नियमित रूप से गतिशील होकर सब पदार्थों को प्रकाशित करता है। उसी से धरती और चंद्रादि लोक प्रकाशित होते हैं। अग्नि शीत को हटाती है। फसल उगाने योग्य भूमि के तुल्य विशाल और कल्याणकारी और कोई भी स्थान नहीं है।

सुना। नमस्कार। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक आज शुक्रवार को लग रही है। समिति पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर विचार करेगी। समिति को ये फैसला करना होगा कि मौजूदा कीमतें बरकरार रखी जाएं या इनमें बढ़ोतरी की जाए। रिजल ट्रांसपोर्ट बस सर्विसेज लिमिटेड का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 100 करना है। कंपनी ने कल एबन स्थित हेनेसी पार्क होटल में प्रोजेक्ट हेलियस की शुरुआत की। इस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए रोसल ट्रांसपोर्ट बस सर्विस लिमिटेड ने अपना खुद का सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाया है और रिश्लियो में एक सोलर पावर फॉर्म भी तैयार कर रही है। भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने बताया कि सरकार की ओर से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत बस ऑपरेटरों को हर इलेक्ट्रिक बस के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। युवाओं का एक नया समूह अब नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी में है, जिसका प्रावधान चिल्ड्रंस एक्ट 2020 के तहत किया गया है। 15 से 17 साल की उम्र के ये युवा देश के चारों क्षेत्रों के अलग अलग स्कूलों से चुने जाएंगे और उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के साथ साथ युवाओं से जुड़े विचार विमर्श और विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और विदेश में ब्रिटेन के दक्षिणी हिस्से में कल एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। दुर्घटना में कम से कम 3 डिब्बे पलट गए हैं, 18 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। अस्थिरता से जुड़े सक्रिय बादलों का असर आज रात से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद को पश्चिम, उत्तर पश्चिम और ऊंचे इलाकों पर बादल घिर आएंगे। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात के दौरान दक्षिण, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। आज रात से हवा की रफ्तार तेज होने लगेगी। लगनों के उत्पाद

मुअज़्ज़ज़ सामईन, वैसे तो हमें हर नेक अमल करना चाहिए, मगर ख़ास तौर पर उन नेकियों को ज़रूर अदा करना चाहिए जिनसे हमारे दिलों में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मिसाल के तौर पर अपने दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ाने के लिए शौक़ व मोहब्बत और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। इसके बारे में ख़ुद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहले मोहब्बत का दरूद मैं ख़ुद सुनता हूँ और उन्हें पहचानता हूँ। यानि जो लोग मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद शरीफ पढ़ते हैं उनका दरूद पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सुनते हैं।

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बरकत उठाते, बरकत हासिल करते। मसलन बच्चे बीमार हो जाते या बच्चे पैदा होते तो उनको आपकी खिदमत में हाज़िर करते, आप बच्चे के सर पर अपना हाथ मुबारक फेरते, अपने मुंह में खजूर डालकर उसके मुंह में डालते। और इसके लिए बरकत की दुआ फरमाते। हज़रत साहिब बिन यजीद रावी हैं कि मैं बीमार हुआ तो मेरी खाला मुझको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गई। आपने मेरे सर पर अपना मुबारक हाथ फेरा। वदा ली बिल बरका, और मेरे लिए बरकत की दुआ की। उसके बाद आपने वज़ू किया, मैंने आपके वज़ू का पानी पिया। हज़रत अबू मूसा अशारी अलैहि रहमतुल कवी का लड़का पैदा हुआ तो आपकी खिदमत में लाए, आपने उसका नाम रखा और अपने मुंह में खजूर डालकर उसके मुंह में डाली। वदा लहू बिल बरका, और उसके लिए बरकत की दुआ की। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हु पैदा हुए तो उनकी वालिदा हज़रत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनको लेकर आई और आपकी गोद में उनको रख दिया। आपने खजूर मंगाकर चबाई और उसको उनके मुंह में डाल दिया। फिर बरकत की दुआ की। आप बाज बच्चों के मुंह में कुल्ली फरमाते और बाज खुश नसीबों के मुंह में अपना लुआब मुबारक, लुआब दहन डाल देते और बाज अहले सादत की आँखों पर अपना मुबारक हाथ फेरते। इब्ने माबद एक सहाबी हैं, बचपन ही में उनकी वालिदा उनको आपकी खिदमत में लाई और अर्ज़ की कि इससे बैत लीजिए। आपने फरमाया ये भी छोटा है। ये कहकर इसके सर पे हाथ मुबारक फेरा और उनको दुआ दी। चुनाचे जब उनको लेकर इनके दादा गल्ला ख़रीदने के लिए बाज़ार जाते और सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा

0: और सैयदना इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हु से मुलाकात होती तो वो फरमाते कि हमको भी शरीक करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए बरकत की दुआ इरशाद फरमाई है। हाफिज़ इब्ने हजर इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि इस हदीस से यह साबित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत हासिल करने के लिए सहाबे किराम अपनी औलाद को आपकी बारगाह में हाजिर करते हैं और उन्हें इसका बड़ा शौक़ था। नमाज फजर के बाद सहाबे किराम बर्तनों में पानी लेकर हाजिर होते, बच्चे पानी लेकर हाजिर होते, आप अपना हाथ मुबारक उसमें डाल देते, वो पानी मुतबर्रिक हो जाता, मुतबर्रिक हो जाता। ये हदीस सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल बाब फ़ी क़ुर्बिन नबी मिनन्नास व तबर्रुकिहिम बिही में मौजूद है और हदीस सही है। कभी आप वज़ू फरमाते तो सहाबा आपके वज़ू के पानी को लेकर अपने जिस्म पर मल लेते, आपके बाल मुबारक ज़मीन पर गिरने से पहले उठा लेते और उससे बरकत हासिल करते। अलगरज सहाबे किराम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह से बरकतें हासिल की। अल्लाह पाक उनकी बरकतों का सदका हम सबको, इस पूरी उम्मा को अता फरमाए। वमा अलैना इल्ल बलाग।
1: सामईन अज़ी वक़ार, निसार अख्तर की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद इस उर्दू महफिल सबाल खैर में, जहां हम रबीउल अव्वल के चमकते महीने को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिरागों से रोशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जामा मस्जिद पोटलवी के ख़तीब आला मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ कादरी रज़वी दामत बरकातुहु मालिया की ज़बानी एक बयान समात फरमा रहे थे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें मुफ्ती साहब की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सामईन, आइए इश्क के मिठास लिए हुए ये खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं, मुलायजा फरमाइए।

मोहतरम सामईन, रबीउल अव्वल की आमद दरअसल खुशियों, रहमतों और रूहानी बहार का पैगाम है। ये वो माह मुकद्दस है जिसमें कायनात को अपना सबसे बड़ा इनाम जाने कायनात साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में वो रोशनी अता हुई जो कयामत तक पूरी दुनिया को मुनव्वर करती रहेगी। रबीउल अव्वल वो महीना है जब हमें अपने नफ्स, अपनी ज़बान और अपने किरदार से ऐलान करना है कि हम वाकई ग़ुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सामईन, महफिल को मज़ीद मुअत्तर करते हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब ये नात शरीफ़ मुलायज़ा फरमाइए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली सबूत देने के लिए रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात व अतवार को अपनाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनाए हुए अहकाम पर अमल करना अशद ज़रूरी है। बिलयकीन जो कोई रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेगा तो उसकी बरकत से उस इंसान के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम रोशन हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी आज की बज़्म सबाल खैर अख्तताम पज़ीर होती है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, कामिल इताअत, हुस्न अखलाक और सुन्नतों पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इन्हीं दुआया कलिमात के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। पर वादा है कि अगले जुम्मे को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह निगहबान।

भक्ति में शक्ति। प्रणाम श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है भक्ति वह शक्ति है जो मन को शांति देती है और जीवन को सही दिशा भी दिखाती है। जहां विश्वास सच्चा हो वहां परमात्मा की कृपा का अनुभव अवश्य होता है।

भक्ति में शक्ति। श्रावण माह अर्थात श्रद्धा का माह है, साधना का माह, और भगवान शिव के चरणों में स्वयं को समर्पित करने का पावन अवसर है। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत ही सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें भव्य आडंबर नहीं अपितु सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और

निष्कर्ष निष्पट भाव प्रिय है। श्रावण में जब भक्ति श्रावण माह में जब भक्ति से भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह केवल जल ही नहीं चढ़ाता, अपने मन की अशांति, अपने दुख और अपनी चिंताओं को भी भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करता है। तभी संसार उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं। इतने भोले हैं कि साधारण चीजों से ही साधारण व्यक्तियों के निर्मल भाव को देखकर ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं एकमात्र बेलपत्र और एक लोटा जल अगर आप श्रद्धा से चढ़ाएं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल भी प्रदान करते हैं।

0: श्रोताओं, भक्ति हमें क्या सिखाती है? भक्ति हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास का दीपक बुझने नहीं देना चाहिए। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है जो हमें शीतलता का संदेश देता है। उनके कंठ में विष है जो हमें सिखाता है कि जीवन में कड़वे अनुभव आए फिर भी उन्हें अपने व्यवहार में विष बनने न दें। उनके हाथ में त्रिशूल है जो हमें अपने भीतर के अहंकार, लोभ और मोह पर विजय पाने की प्रेरणा भी देता है। आइए अब इस नीलकंठ बाबा की एक और सुंदर भजन को हम सुनते हैं। आइए।
1: दुखियों पर कृपा करने वाले भोलेनाथ के नाम के सुमिरन से ही सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। सुंदरता के अपार सागर हैं भगवान शंकर, सृष्टि के पालनहार हैं भगवान शंकर, सिद्ध तपस्वी और महान योगी हैं नीलकंठ महादेव भगवान शंकर।

श्रोताओं ओम नमः शिवाय मंत्र बड़ा ही गुणकारी मंत्र है। जिसने भी नाम धरा शंकर का, शंकर से कंकर बन गए।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। पूजा को अनुमति दीजिए, मेरी ओर से सभी को प्रणाम,
1: भक्ति में
0: और शुभ दिन।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे गीता। नमस्कार आपको।
4: नमस्कार नीतुषा, सभी को हमारा नमस्कार। बस कंपनी रोजल ट्रांसपोर्ट ने कल प्रोजेक्ट हेलियोस शुरू किया। ये 2 बिलियन रुपए की योजना है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक बसों की ओर बदलाव को तेज करना है। कंपनी अगले 5 वर्षों तक हर साल 20 डीजल बसों की जगह 20 इलेक्ट्रिक बसें लाने की योजना बना रही है। इस बदलाव में सौर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए रिश्लियो में 5.5 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा केंद्र विकसित किया जा रहा है। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक आज लग रही है। समिति पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर विचार करेगी। ये फैसला लिया जाएगा कि मौजूदा कीमतें बरकरार रखी जाएंगी या इनमें बढ़ोतरी की जाएगी। युवाओं का एक नया समूह अब नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी में है, जिसका प्रावधान चिल्ड्रंस एक्ट 2020 के तहत किया गया है। 15 से 17 साल की उम्र के ये युवा देश के चारों क्षेत्रों के अलग अलग स्कूलों से चुने जाएंगे। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के साथ साथ युवाओं से

0: जुड़े विचार विमर्श और विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और विदेशी खबरों में यूरोप के कई हिस्सों में लंबे समय से जारी गर्मी के कारण डैन्यूब नदी का जल स्तर बेहद कम हो गया है। इसके चलते रोमानिया ने अपने एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र को बंद कर दिया है। और जापान में टोक्यो के पड़ोसी चिबा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कम से कम 6 लोग मारे गए हैं, कई लापता और घायल हुए हैं। खराब मौसम के कारण भूस्खलन और बिजली भी नहीं है। 1,00,000 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बिगड़ते मौसम को लेकर पूरी तरह सतर्क रहेगी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: शुक्रवार 14 अगस्त घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 12:02 रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूँ सुमी और कैसे हैं आप? ठीक है ना? तो चलिए आप सबका फेवरेट प्रोग्राम सुहाना सफ़र लेकर हम आ गए हैं। अभी से लेकर दोपहर के 2 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं जो फ्राइडे का दिन है बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। और फ्राइडे अपने आप में अच्छा ही बीतता है क्योंकि हमें पता होता है कि सैटरडे संडे आने वाला होता है। तो बस आज का जो दिन है काम करने के बाद 2 की छुट्टी भी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सैटरडे संडे भी काम करने जाते हैं। लेकिन चलिए अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जहाँ इसे भी साथ दे रहे हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। और सुहाना सफ़र का ये जो सफ़र है यहाँ पर आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 4028070 पर। साथ ही यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250620 पर। थोड़ी देर में हम अपने टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे जहाँ पर आपके लाइव डेडिकेशंस लेंगे। तो तीसरी मंजिल फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं आशा जी, रफ़ी साहब और साथियों की आवाज़ों में।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए उम्मीद करते हैं कि सुहाना सफर के इस सफर को आप सभी मिलकर एंजॉय कर रहे होंगे। दोपहर का वक्त है और काम करते करते थोड़ी थकावट हो जाती है, तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छे अच्छे गाने चलाएं ताकि आपकी जो थकावट है ये दूर हो जाए। और यहाँ पर बड़े ही प्यार से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून, मतलब कि ये मैसेज यहाँ पर आया है किरण की ओर से, किरण जी की ओर से, जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। किरण जी, गुड आफ्टरनून आपको भी, और वैंकूवर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज किरण जी। गाना जाता है किरण पुरी, जीजी लाल, नरेंद्र कुमार, निंदी, कलाराम कारीगर और वैंकूवर कनाडा के आपके सभी परिवारों के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, खूबसूरत गानों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। नॉट टू फॉरगेट, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और शागिर्द फिल्म का ये जो गाना है, किरण जी आपके लिए चल पड़ा, और उन सभी के नाम जो रफ़ी साहब के फैंस हैं। और शागिर्द फिल्म की अगर हम बात करें तो शागिर्द फिल्म में जॉय मुखर्जी नज़र आए थे, और जॉय मुखर्जी के सभी चाहने वालों के लिए

हाथों में हाथ डाल, ए गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है, तेरे होंठों की प्यास है, ए दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गर।

मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

0: खाना सफर
1: चले ख्वाब तो नहीं, बिल्कुल हकीकत है। और यहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, हम भी यहाँ पर हैं और खूबसूरत गाने भी हैं, इससे ज़्यादा और क्या हम मांग सकते हैं। चलिए दोपहर का वक्त है, लंच करते करते हमारे साथ जुड़े हैं तो आप सभी को बोना पेची हम कहेंगे। देखते ही देखते 12:30 बज चुके हैं और गानों का ये जो कारवा है यहाँ पर चल रहा है इस समय, हमारे साथ बॉम्बू से दनेश्वर जी साथ दे रहे हैं। कहते हैं अगला गाना हो जाए पत्नी सुनीता के नाम और साथ ही निशा रानी के नाम, देवदोस परिवार के लिए जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर वीना जी भी हमारे साथ नोबेल फ्रांस से साथ दे रही है। वीना जी, जो फिल्म से आपने, जिस फिल्म से आपने गाने की फरमाइश की है, ये फिल्म हमारे पास नहीं है, अगर कोई और गाना आप सुनना चाहते हैं तो बेशक आप हमें बताइएगा। अभी के लिए जो गाना है वीना जी, अगला तराना आपके और आपके हस्बैंड देव के लिए हम करते हैं। और यहाँ पर गानों का ये जो सिलसिला है इसे आगे बढ़ाते हुए उन सभी लवली लिसनर्स के नाम भी जो पुराने गानों के शौकीन हैं। और अगला जो तराना है, गाने के साथ साथ एक छोटी सी कहानी भी है। जी हाँ, जब जब फूल खिले फिल्म का ये तराना रफ़ी साहब और नंदा जी की आवाज़ों में, एक था गुल और एक थी बुलबुल।
2: You're listening to RM3 Radio, Mano.

0: खाना सफर खाना सफर।
1: यकीनन दिन है बहार के वक्त फिल्म का ये सदाबहार गाना भी आप सुन रहे थे आशा जी और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ों में। और यकीनन गाने खूबसूरत हो तो दिन भी अपने आप में खूबसूरत हो ही जाता है। और आप लोगों का साथ जो हमें मिल रहा है इसे हम कैसे भूल सकते हैं। इस समय माधुरी जी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप क्या आए बहार आ गई अजी, आपके आने से हमारे प्रोग्राम में बहार आ जाती है। माधुरी जी आप भी हमेशा खुश रहिए और हमारा साथ देते रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत मैसेज के लिए। अब माधुरी आ गई है तो परी कैसे दूर रह सकती है। परी पूछ रही है लाइव कब होगा। चलिए थोड़ी देर में हम आते हैं लाइव, आप लोगों से मिलते हैं। सो ये जो अगला तराना है अखियों के झरोखे फिल्म का, ये जाएगा माधुरी आपके लिए और साथी में परी आपके लिए भी। और यही गाना देव और सुनीता जी आप दोनों के नाम है।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: चलिए, इन गानों को सुनते सुनते कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ ही जाती है। अभी जो अखियों के झरोखे फिल्म का टाइटल ट्रैक आप सुन रहे थे, न जाने कितने हमारे लिसनर्स का ये फेवरेट गाना है हेमलता जी की आवाज़ में। और अब जो अगला तराना यहाँ पर चल पड़ा है वो भी बड़ा खूबसूरत सा गीत है। शागिर्द फिल्म का ये तराना होगा रुक जा ए हवा, लता जी की आवाज़ में। और इसी गाने के साथ जो है हम बढ़ने वाले हैं 1 बजे के समाचार की ओर। और समाचारों के उस पार मिलेंगे हम आपसे सुहाना सफ़र के सेकेंड आवर में, तो आप हमारा साथ यूँ ही देते रहें।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार आपको
3: नमस्कार आदाब गए 10 अगस्त से मॉरिशस में पानी को लेकर कई पाबंदियां हैं खासतौर पर जो पानी पीने के लिए है उसे दूसरी वजहों से इस्तेमाल करना मना है इनमें बाहों को और ग्रीन स्थलों को पानी देना गाड़ियों को धोना और इमारतों की सफाई करना तथा आंगनों और रास्तों को स्वच्छ रखने के लिए जल का प्रयोग करना हर रोज 2 घंटे कम पानी की सप्लाई की जा रही है इल दे दुकोकु पर स्थित होटल अलग तरीके से इस संसाधन का संचालन कर रहा है वो बारिश का पानी स्टॉक करता है समुद्र के पानी का डिसैलिनेशन करता है और इस्तेमाल किए गए जल की रिसाइकलिंग करता है ये संचालन होटल के बिजली उत्पादन पर पूरी तरह से निर्भर करता है अगले महीने तुर्की में COP31 सम्मेलन लगाया जाएगा मॉरिशस अपनी औपचारिक राय के लिए तैयारी कर रहा है इसी मकसद से देश के संचालकों ने पैसिफिक टापुओं के संचालकों से मुलाकात की जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्रीन फंड से लाभ उठाने के वास्ते सब अपने विचारों को लेकर आपस में सहमति जताना चाहते हैं 5 से 8 अक्टूबर के बीच फिजी और टुवालू में मॉरिशस डेलीगेशन और छोटे टापू देशों के प्रतिनिधियों के दरमियान एक मुलाकात लगेगी आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है 14 अगस्त की तारीख तकसीम हिंद और पाकिस्तान के क़याम के लिए बड़ी मायने रखती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बरतानी शासन को ख़त्म करते हुए बंटवारा किया गया था मॉरिशस में पाकिस्तानी लोगों ने मिलकर फ्लोरियाल में पाकिस्तानी सिफारत में यौम आज़ादी मनाई इस मौके पर मॉरिशस और पाकिस्तान के गहरे रिश्तों पर रोशनी डाली गई खासतौर पर सकाफती तजारती और माली शोबों में विदेश में जापान में रिकॉर्ड तोड़ वर्षाएं हो रही हैं और कम से कम 6 लोग जान से गए हैं 5 लोग जख्मी बताए जाते हैं ये बारिश टोक्यो के पास हो रही है इसकी वजह से 20,000 से ज़्यादा घरों में बिजली की सप्लाई बंद

0: बंद हैं और टोक्यो के नारिता हवाई अड्डे में करीब 7,000 मुसाफिर फंसे हैं क्योंकि यातायात ठप है। दर्जे 5 की आपात चेतावनी भी जारी की गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। Avenue des Colombes, Médine Candé-Masque, 76 साल की 76 years old, श्रीमती इंद्राबाई टुकुबा, श्रीमती इंद्राबाई टुकुबा, पैदाइशी नाम अबा, जो आतो सोनीबाई के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई है अर्थी कल सवा ग्यारह बजे इनके बेटे बेतन टुकुबा के घर एवेन्यू दे कोलोम मेदिन कांदेमास्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेदिन कांदेमास्क की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:15 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

0: सुहाना सफर।
1: चलिए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हम करते हैं एंड दिस इज़ योर सेकंड आवर ऑफ सुहाना सफ़र। और आज मैं सुमी आप सभी का साथ दे रही हूँ और जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, कनेक्टेड है, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। गानों को एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्राम का मज़ा उठा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही आपके फ़ोन कॉल्स, आपके डेडिकेशंस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। हिमालय की गोद में फिल्म का जो तराना है लाल माची से सुनीता जी की ओर से इस खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट आई है। गाना जाएगा उनकी सभी प्यारी सहेलियों के लिए। वी हैव उमा, सीमा, आशी, काजल, जो बड़े ही प्यार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चले इन खूबसूरत गानों के जरिए बहुत सारी यादें जो है, बहुत सारी मेमोरीज जो है, जैसे कि उन यादों को याद करने लगते हैं, उन बातों को याद करने लगते हैं जो इन गानों से जुड़े हुए होते हैं, है ना। चलिए अगले गाने की ओर अब हम बढ़ेंगे। नॉट टू फॉरगेट 5250-6200 है नंबर हमारा, साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 4028070 पर। अगला गाना लता जी किशोरदा की आवाज़ में होगा। सौतन फिल्म का ये जो तराना है यहाँ पर जाता है, वेदना जी आपके नाम जो कटरबोन से इस समय हमारा साथ दे रही है। सुबी जी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ में यहाँ पर वैशाली जी आपका भी प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है। तो चलिए ये गाना चल पड़ा आप सभी के लिए।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर सुहाना सफर के ये जो सफर है इसमें जोड़ते हैं इस अगले गाने को। अगला तराना शागिर्द फिल्म का गीत होगा दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। चलिए खूबसूरत गाने की जो दीवानगी है यहाँ पर जारी है और ये गाना बिंदु दुखित राम जी की ओर से जाता है उनके पति रामेश के लिए और सभी दुखित राम परिवारों के लिए।

0: सुहाना सफर।
1: यकीनन खूबसूरत मौसम तो छाया हुई हुआ है यहाँ पर, और खूबसूरत गानों के जरिए ये पल और भी खूबसूरत होता जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ ही मिनट और बचे हैं हमारे इस प्रोग्राम को ख़त्म होने में, तो सोचा जल्दी जल्दी कुछ और डेडिकेशंस आपके जोड़ते हैं। फिया जी इस समय बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और कारवा फिल्म का गाना जाता है आपके नाम, आपके सभी दोस्तों के लिए। सुबी जी भी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रही है, तो चलिए आपका भी साथ हमें मिल रहा है। और यहाँ पर सुनीता जी, आपको भी हम नहीं भूले हैं, तो चलिए कारवा फिल्म का ये जो गाना है, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में आप सबके नाम।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए, जो प्यार भरा साथ है, मानो अभी अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत हुई थी हमारे और आपके इस खूबसूरत साथ की, और देखते ही देखते दो घंटों का ये जो सफर है खत्म होने को चला। लेकिन यकीन मानिए, आज के गाने इतने कमाल के थे, आज के रिक्वेस्ट, आपके डेडिकेशंस, और इन गानों को सुनते सुनते, इन फरमाइशों को पूरा करते

कब ये 2 घंटों का सफ़र ख़त्म होने को चला पता ही नहीं चला है ना। उम्मीद करते हैं कि इस सफ़र को आपने भी इंजॉय किया होगा। तो जाते जाते ये आखिरी गाना सोनी महिवाल फिल्म का तराना होगा। गाना जाता है यहाँ पर अंबिका, प्रेमिला, रेखा और मालिनी के लिए, और साथ में कविता जी खास कर ये गाना आपके लिए भी। और इसी के साथ ये गाना हमारे सभी लवली लिसनर्स के नाम, हमारे तमाम फॉलोअर्स के नाम जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। बस जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, ऐसे 2:30 बजे से हम आपसे मिलेंगे रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में, तो वहाँ पर आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 2 बजे के समाचार की ओर, और 2 बजे के समाचारों के उस पार जो है आप सुन पाएंगे गीत, नृत्य और परंपरा इस कार्यक्रम को अंजू गर्बरन जी की प्रस्तुति में। तो हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार आप सभी को, आने वाला वीकेंड आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते, और ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर आप जब भी मौका मिले साथ देते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
4: नमस्कार आदाब. गए 10 अगस्त से मॉरिशस में पानी को लेकर कई पाबंदियां हैं. खास तौर पर जो पानी पीने के लिए है उसे दूसरी वजहों से इस्तेमाल करना मना है. इनमें बाघों को और ग्रीन स्थलों को पानी देना, गाड़ियों को ढोना, इमारतों की सफाई करना और आंगनों तथा रास्तों को स्वच्छ रखने के लिए जल का प्रयोग करना. हर रोज 2 घंटे कम पानी की सप्लाई की जा रही है. इल्दे दुकोको पर स्थित होटल अलग तरीके से इस संसाधन का संचालन कर रहा है. वो बारिश का पानी स्टॉक करता है, समुन्द्र के पानी का डिसैलिनेशन करता है और इस्तेमाल किए हुए जल की रिसाइकलिंग करता है. ये संचालन होटल के बिजली उत्पादन पर पूरी तरह से निर्भर करता है. अगले महीने तुर्की में COP31 सम्मेलन लगाया जाएगा. मॉरिशस पूरी तैयारी करने में लगा है. इसी मकसद से मॉरिशन प्रतिनिधियों ने पैसिफिक टापुओं के संचालकों से मुलाकात की. जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के वास्ते ग्रीन फंड से लाभ उठाने के लिए सब अपने विचारों को लेकर आपस में सहमति जताना चाहते हैं. 5 से 8 अक्टूबर के बीच फिजी और तुवालू में मॉरिशन डेलीगेशन और छोटे टापू देशों के प्रतिनिधियों के दरमियान एक मुलाकात निर्धारित है और कलेबन में सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के अलावा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के दरमियान राष्ट्र सलाह मशवरे किए गए. आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है. 14 अगस्त की तारीख तकसीम हिंद और पाकिस्तान के क़याम के लिए बड़ी मायने रखती हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बरतानी शासन को ख़त्म करते हुए बंटवारा हुआ था. मॉरिशस में पाकिस्तानी लोगों ने मिलकर फ्लोरियाल में पाकिस्तानी सिफारत में यौम आज़ादी मनाया. इस मौके पर मॉरिशस और पाकिस्तान के गहरे रिश्तों पर रोशनी डाली गई, खासतौर पर सकाफती, तजारती और माली शोबों में. विदेश में पूर्वी जापान में मूसलाधार बारिश की वजह से कम 6 लोग जान से गए हैं और 5 लोग जख्मी बताए जाते हैं. ये घटना राजधानी टोक्यो के

0: पास पेश आ रही हैं। इसकी वजह से 20,000 से ज्यादा घरों में बिजली की सप्लाई बंद है और टोक्यो के नारिता हवाई अड्डे में 7,000 मुसाफिर फंसे हैं क्योंकि यातायात ठप है और दर्जे 5 की आपात चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो अभी ये बस इतना ही, थोड़ी देर में शोक समाचार। BA85 Résidence Saint-Jean 4 Bonne mais on a 6 ans qui 79 years old Shrimati Kupama Suben Paidashinam Ramsami jo Ivy ke naam se zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi hain arthi kal 2 baje inke ghar BA85 Résidence Saint-Jean 4 Bonne se utha kar antim sanskar ke liye Saint-Jean ki shamshan bhumi di jayegi cremation tomorrow at 2 pm shok mein dubes parivar se hame hamdardi hai
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Center, 95.5, North, South, 95.6, 95.2, East, West, 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: RM3 रेडियो पर हमारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के गीत नृत्य और परंपरा कार्यक्रम में। हमारे साथ आज एक नहीं दो मेहमान जुड़े हैं और कार्यक्रम रोचक होने वाला है। चलिए नाम बताती हूँ मैं आपको, बेला रामधारी जी और सुश्री खुशबू रामधारी जी हमारे साथ हैं, दोनों बहनें हैं। बेला जी हिंदी शिक्षिका हैं और साथ ही साथ वे नृत्यांगना भी हैं और नाट्य कला परंगत हैं। तो आप सबको मिलवाते हैं सुश्री बेला जी से, और इधर मेरे साथ बैठी हुई हैं खुशबू जी। तो बेला जी का तो मैंने बताया आपको कि वे हिंदी शिक्षिका भी हैं और साथ ही नाट्य कला से भी जुड़ी हुई हैं, नृत्यांगना भी हैं। खुशबू से पूछते हैं कि आप किस तरह जुड़ी हुई हैं नृत्य से।
2: मैं एक बिजनेस स्टडीज अध्यापिका हूँ, लेकिन जो भी समय मिलता है वो मैं नृत्य को देती हूँ। तो काम के बाद कभी कभी क्लासेस होते हैं या वीकेंड्स में रिहर्सल्स होते हैं, तो मैं इस तरह नृत्य से जुड़ी हूँ।
1: अब मैं बेला जी की ओर आती हूँ। बेला जी, नृत्य आपके लिए क्या है?
3: अगर मैं बताऊं तो नृत्य मेरे लिए एक साधना के समान है। जिस प्रकार हम भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, नृत्य भी कला भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि एक साधना ही है। क्योंकि प्राचीन काल में अगर हम देखेंगे तो नृत्य जो है भगवान को या फिर कृष्ण लीला के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से हम लोग क्या करते थे, एक कथा सुनाते थे लोग श्रोताओं तक या फिर दर्शकों तक। एक हम कह सकते हैं एक उद्देश्य या जो कथाएं हैं कृष्ण की, भगवान प्रभु श्री राम की, तो नृत्य के माध्यम से ही करते थे। तो मेरे लिए नृत्य जो है भक्ति ही है।
1: नृत्य भक्ति मानती हैं आप, पर कहाँ आप अंतर पाती हैं लोक नृत्य में और शास्त्रीय नृत्य? जैसा कि आपने मुझे बताया आप कथक भी करती हैं और भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई हैं, तो दो शास्त्रीय नृत्य आप करती हैं, लोक नृत्य के बारे में आप क्या सोचती हैं और कैसे वे अंतर पाती हैं?
3: हर एक की मैं कहूँगी विशेषता होती है
1: जी।
3: मैं ये नहीं कहूँगी कि एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण है, नहीं, हर एक नृत्य का, संगीत का अपना महत्व होता है।
1: बिल्कुल।
3: तो अगर मेरे लिए शास्त्रीय नृत्य भक्ति के समान है, शायद अन्य लोगों के लिए लोक गीत जो है, लोक नृत्य, उनके लिए भी भक्ति के समान है। दोनों की अपनी विशेषता है। जिस प्रकार हम

0: एक मैं कहूंगी मार्क्स भी महत्वपूर्ण है, फ्रेंच भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हर एक की रुचि उस पर निर्भर होगा,
1: अलग
0: तो
1: दिशा लिए होती
0: अलग
1: है।
0: दिशा होगी।
1: कथक में कथा सुनाने की बात आती है, मतलब आप अपनी भावभंगी के माँ के साथ कथा सुना रही हैं नृत्य के माध्यम से। लोक नृत्य में भी लोक कथाएं ही होती हैं, हमारे समाज की बातचीत होती है वो लोक नृत्य में आ जाती है। भरतनाट्यम में आप कैसे इसको प्रमाणित करती हैं कि भरतनाट्यम में क्या प्रस्तुति होती है?
0: कथक, जिस प्रकार कथक के माध्यम से हम
1: कथा कहते हैं,
0: कथा कहते हैं, तो भरतनाट्यम के माध्यम से भी हम कथा ही सुनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांतों से इसका जन्म हुआ है, तो उनकी जो वेशभूषा अलग अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य या फिर जो वे प्रस्तुत कर रहे हैं दर्शकों तक बराबर ही है, क्योंकि दोनों में आप देखेंगे रामलीला या फिर कृष्ण की कथाएं, और जिस प्रकार आपने बताया कि आधुनिक समय में समाज तक, हम युवकों तक एक अलग उद्देश्य पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भरतनाट्यम भी उसी प्रकार एक साधना ही है बराबर। अलग क्या है, भिन्न क्या है, भारत के अलग प्रांतों से इसका इसकी उत्पत्ति
1: हुई। कथक में आप पूरी कहानी अपने चेहरे से, भावभंगिमा से बताती हैं
0: जी,
1: भरतनाट्यम में?
0: भरतनाट्यम में भी उसी प्रकार
1: चेहरे
0: का भाव भंगिमाएं होती है,
1: और मुद्राएं और फुटवर्क किसमें ज्यादा होता है?
0: कथक में
1: अगर मतलब अंतर करना हो भरतनाट्यम और कथक में, तो फुटवर्क से आप पहचान जाते हैं
0: जी, पहचान जाएंगे, उनकी वेशभूषा से भी हम पहचान जाएंगे,
1: शैली की भिन्नता
0: भिन्नता जी
1: दिख जाती है। अच्छा, आपने कहा कि आप एक टीचर हैं, आप कौन सा नृत्य शैली अपनाती हैं?
2: मैं भी बेला के ही समान मैंने भरतनाट्यम से शुरुआत की थी, तो 11 साल से, जब मैं 11 साल की थी तो मैंने भरतनाट्यम किया था। फिर जब मैं लगभग 18 या 19 साल की हुई तब मैंने कथक सीखना
1: प्रारंभ किया। आज आप यहाँ पर दोनों मौजूद हैं, मैंने आपको अनेक मंचों पर भी पाया, आजकल आप क्या प्रस्तुति कर रही हैं या किसके लिए तैयारी कर रही हैं, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: हमारा एक प्रथम शो होगा कल SBICC पाई में, हम मिस इंडिया मॉरिशस के टैलेंट शो के लिए एक प्रस्तुति करेंगे,
1: दोनों बहनें
0: दोनों साथ में, और उसके पश्चात हमारी गुरु है अर्पिता बनर्जी, आज वो मॉरिशस आई हुई है, उनका शो होगा, तीन शो होंगे कुदा आर्ट सेंटर में, जिसका शीर्षक है कथक की कहानी बॉलीवुड की जुबानी, तो उनके साथ भी हम प्रस्तुति करेंगे कुदा आर्ट्स में।
1: भरतनाट्यम आपने कहाँ से सीखा?
0: महात्मा गांधी संस्थान से, MGI।
1: और कथक?
0: IGCIC, इंदिरा गांधी संस्थान।
1: तो ये परिवर्तन क्यों और कैसे हो पाया?
0: जब मैं डिप्लोमा भरतनाट्यम कर रही थी तो उस समय मैं BA हिंदी भी कर रही थी, लेकिन जब निर्णय करने की बारी आई तो मैंने सोचा, क्योंकि बहन जी स्कोप जो है काम करने का, बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें नौकरी नहीं मिली, सप्लाई टीचर हमने किया बहुत सालों वर्षों तक, तो मैंने सोचा शायद हिंदी में भी मैं अनेक शायद नौकरी प्राप्त हो जाएगी, इसीलिए BA करने वाली थी भरतनाट्यम में, फिर सोचा नहीं करूंगी, मैं हिंदी की दिशा में ही जाऊंगी।
1: हिंदी भाषा को अपनाया आपने?
0: जी,
1: शिक्षा केंद्र हिंदी भाषा रही, पर साथ साथ में आप नृत्य से जुड़ी रही
0: जी,
1: और अपने नृत्य की भी शिक्षा पाई आपने
0: जी,
1: जो आप कह रही हैं IGCIC में आपने
0: जी। फिर एक वर्ष बाद मैंने 2011 तक भरतनाट्यम किया हुआ था, फिर एक साल तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सोचा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैंने सोचा खाली रहूँगी, कुछ नहीं होगा मेरे जीवन में, तो चलो कुछ अन्य नृत्य
1: की शिक्षा मैं
0: सीखती हूँ जी।
1: सीखना तो कभी भी समाप्त नहीं होता है, जीवन पर्यंत हम सीखते ही हैं, पर आपने किस नृत्य को ज़्यादा आनंद महसूस किया, कथक या भरतनाट्यम?
0: भरतनाट्यम केवल कोर्स किया,

0: हुआ था मैंने, लेकिन कथक कोर्स के साथ हम अलग अलग मंच में भी हमने प्रस्तुति की, महाशिवरात्रि हो या फिर आप्रवासी घाट में कुदा अर्थ, जिस प्रकार आप देख सकते हैं, तो मंच जो है कथक के माध्यम से, उनकी कथक की कृपा से ही हमें मंच मिला और प्रस्तुति, शायद लोग हमें पहचानेंगे कथक नृत्यांगना के रूप से ही।
1: कथक नृत्यांगना के रूप में, कथक में आप क्या विशेष पाती हैं जो कि आप भरतनाट्यम में मिस करती हैं?
0: कथक में शायद वो ग्रेस ज़्यादा है और जो उनके हम कह सकते हैं वेशभूषा ही, या फिर जो सीख है उसके पीछे, कथक से ही हम, क्योंकि मैंने भरतनाट्यम सिर्फ कोर्स में ही किया था, मतलब जो हम कह सकते हैं मूवमेंट्स जो है केवल कक्षा तक ही सीमित था, लेकिन कथक क्यों हम उससे अधिक हम कह सकते हैं प्रिय है या फिर जुड़ी हुई है, मंच मिला और शायद पता नहीं बहन जी, हम बाद में परिपक्व हो जाते हैं, शायद वो परिपक्वता बाद में कथक के माध्यम से ही, क्योंकि भरतनाट्यम मैं कह सकती हूँ बच्ची थी उस समय।
1: अच्छा, अब मैं आती हूँ, श्रृंगार कितना आवश्यक होता है जब आप मंच के लिए तैयारी करती हैं, और किस प्रकार का श्रृंगार आप लाते हैं कथक नृत्य में? नेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आभूषणों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या कि आपके परिधान पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता
0: है? सभी का एक मिश्रण होता है, क्योंकि हम कथक जो है, अगर हम कोई व्यक्ति टीवी के जरिए देखेगा या फिर मंच पे देखेगा, तो पहले क्या देखे, वो दृश्य ही देखेगा, तो जो प्रस्तुति होनी चाहिए कथक में वो श्रृंगार ही है, चाहे वो आँख हो या फिर उनकी जो वेशभूषा है, गहने हो, सभी एक, मैं कहूँगी एक अगर छूट जाए तो अधूरा माना जाएगा।
1: हर चीज़ का बैलेंस होना आवश्यक
0: है।
1: और मान लो आप ने कथक करते समय किसी विशेष वेशभूषा का ध्यान रखना पड़ता है, या कि कोई भी वेशभूषा में आप कथक कर सकती हैं?
0: नहीं, जो लड़कियों के लिए है, युवतियों के लिए, लड़की के लिए, कथक के लिए हम दो अलग वेशभूषाएं होती हैं, एक तो एक स्कर्ट के रूप में, घगरा चोली जो है, लहंगा चोली के रूप में है, और दूसरा है अनारकली। तो अगर आप देखेंगे तो प्रायः कथक के केवल ये दो वेशभूषाएं होती हैं,
1: एक अनारकली का,
0: भरतनाट्यम का एक ही होता है,
1: एक ही परिधान
0: जी
1: भरतनाट्यम में पहना जाता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मोड़ देती हूँ अपनी बातचीत को, कि आप शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी, कहाँ आपको लगा कि यह आध्यात्मिक भी है, शास्त्रीय नृत्य भी है, और आप अपने मन को कैसे संतुष्ट करती है, वो आपके लिए तपस्या है, अध्ययन है, आध्यात्मिक है, या के एक थेरेपी है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग नृत्य करते हैं क्योंकि उन्हें शांति मिलती है, एक थेरेपी के रूप में भी आता है, आपके लिए क्या है?
0: मेरे लिए एक साधना है, जिस प्रकार आपने कहा, आज मैं हिंदी अध्यापिका हूँ, अगर मैं बताऊँगी छात्रों के साथ आजकल बहुत ही कठिनाई मिलती है, स्कूल में अध्यापिका होना, अध्यापन कार्य करना बहुत ही कठिन होता है।
1: क्यों, ऐसी क्या कठिनाई आती है आपको?
0: क्या कठिन है, बच्चे जो है आजकल अलग है, होना भी चाहिए क्योंकि परिवर्तन जो है आवश्यक है।
1: आजकल के बच्चे डिजिटल दुनिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं,
0: डिजिटल दुनिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं, और वे अलग हैं, उनकी जो सोच है, और अगर आप देखेंगे प्राथमिक स्तर के बच्चे भी आज परिपक्व हैं। हम जब तक विश्वविद्यालय नहीं गए, हमें बहुत सारी चीज़ नहीं आती थी, लेकिन ये बच्चे
1: पता नहीं था
0: हमें
1: जी।
0: तो आजकल के बच्चे ये सब जानते हैं, तो मेरे लिए जिस प्रकार आपने बताया, नृत्य जो है एक, मैं कहूँगी अभ्यास ही है, एक उसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है, और क्योंकि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती, एक प्रेशर, एक तनाव सारे

0: रहता है कभी कभी, तो स्कूल के बाद कहाँ हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति नृत्य के माध्यम से ही।
1: घर जाके आप अभ्यास करती हैं,
0: अभ्यास करते
1: हैं, आपको शांत पाती
0: हैं। जी, क्योंकि
1: नृत्य के माध्यम से,
0: नृत्य के माध्यम से और नाटक के माध्यम से भी,
1: नाटक के माध्यम। अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या रिश्ता जोड़ता है नाटक और नृत्य को।
0: हम दोनों करते हैं, मैं और खुशबू। हम नृत्य भी करते हैं और बाद में हमें लगा कि हम, क्योंकि जब हम नृत्य करते हैं तो उसमें भाव होते हैं, तो क्यों ना हम नाटक से भी जुड़े, उन कोशिश करें जुड़ने के लिए। तो हमने जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर,
1: जी,
0: हमने उसमें भाग लिया है। और एक बार भाग लिया, फिर द्वितीय बार अलग अलग भाषाओं में, और
1: अलग अलग भाषाओं में।
0: अलग अलग भाषाओं में।
1: कौन कौन सी भाषाओं में आप नाटक करती हैं?
0: भोजपुरी, हिंदी, क्रियोल, अंग्रेजी,
1: चार भाषाओं में आप नाटक करती हैं। नाट्य का मंच आसान है आपके लिए या नृत्य का?
0: दोनों में, दोनों बराबर है,
1: क्योंकि रूप दोनों बिल्कुल अलग है।
0: अलग है, लेकिन दोनों में एक अनुशासन है, दोनों में एक अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि एक कला जो है उस हम एक दिन नहीं सीख सकते हैं। दोनों में एक, उसके पीछे एक कार्य होता है, एक व्यक्ति का कार्य नहीं, पूरी टोली का कार्य होता है, टीम वर्क होता है। तो मैं फिर से ये नहीं कहूँगी कि एक ज़्यादा सरल है दूसरी से, नहीं, दोनों बराबर है।
1: नाट्य कला में आपको भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुति करनी है, जबकि नाटक में आपको संवाद की ज्यादा आवश्यकता है।
0: जी, जी।
1: तो संवाद करना भी आना एक अपने आप में कला है।
0: जी,
1: क्योंकि आपके शब्द भंडार खूब अच्छा होना चाहिए। चलिए, श्रोताओं को हम बहुत कुछ बताना चाहेंगे आगे भी। एक गीत के साथ कार्यक्रम को सजाते हैं, फिर आप दोनों की बातचीत जारी रहेगी गीत नृत्य और परंपरा के कार्यक्रम में।

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: एक बार फिर स्वागत है आप सबका कार्यक्रम गीत नृत्य और परंपरा में। भाई शिव, दीपिका, दीपशिखा और जावेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीम में आज, और हमारे दो अतिथि हैं आज, बेला रामधारी जी और खुशबू रामधारी जी। खुशबू जी, आपने मुझे बताया कि कल आप एक मंच सजाने जा रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: तो कल जो अभी उत्सव शॉपिंग फेस्टिवल हो रहा है
1: जी,
2: तो उसमें से एक प्रोग्राम होगा शाम को 6 बजे, जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस का टैलेंट शो है। तो ये उनका टैलेंट कंपटीशन है, तो ओपनिंग डांस हमारा होगा सचिन जी के साथ।
1: आपका जो है कार्यक्रम के स्वागतम के लिए आपका नृत्य दिखाया जाएगा। हाँ। आप भी उसमें भाग ले रही हैं खुशबू के साथ
2: जी।
1: अच्छा, अब मैं आती हूँ कि आप जब परिधान का सिलेक्शन करती हैं, चयन करती हैं, तो किस प्रकार से करती हैं? जैसे अब टैलेंट शो है तो उसमें परिधान किस रंग का होना चाहिए? कोई कथक का या भरतनाट्यम का कार्यक्रम है जहाँ पर आपने केवल शास्त्रीय नृत्य दिखाना है, किस रंग का चयन करती हैं? और कहीं आपकी भूमिका शोक प्रदर्शित करने के लिए, तो कैसे रंग चयन करती हैं आप अलग अलग स्थितियों में?
3: हम उस दिवस के संदर्भ, उसके हिसाब से हम अपने वेशभूषा का चयन करते हैं। जैसे मिस इंडिया में, क्योंकि उस दिन भारत स्वतंत्रता दिवस, भारतीय स्वतंत्रता दिवस है, तो हमारा गीत भी उसी के हिसाब से
1: संदर्भ में है,
3: संदर्भ में है, तो इसीलिए हम सफेद या फिर नारंगी, तिरंगे
1: के
3: जी
1: रंग को चयनित कर रही
3: जी।
1: अच्छा, कभी आपके कार्यक्रम में ऐसा भी होता होगा कि कोई राम या कृष्ण की लीला दिखा रहे हैं जहाँ पर कुछ समय शोक है और कुछ समय खूब अच्छा प्रदर्शन करना है, तो आप कपड़े बदलती भी हैं?
3: जी, हम बदलते भी हैं, चाहे वो नृत्य हो चाहे वो नाटक हो।
1: नाटक में तो स्थिति के हिसाब से आपको परिधान बदलना पड़ता है, पर नृत्य में पूरा श्रृंगार बदलना पड़ता है अगर आपने स्थिति का परिवर्तन किया, तो उस समय आप कैसे चयन करती हैं?
3: तो उस संदर्भ या फिर उस जो स्क्रिप्ट होता है उसके हिसाब से हम अपने रंग का चयन करेंगे। जैसे कि रामलीला हो, अगर वसंत का या वसंत ऋतु का या फिर श्रृंगार का
1: तो
3: अगर संदर्भ है
1: आएगा।
3: तो जी जबकि अगर शोक हमें दिखाना पड़े तो सफ़ेद रंग, काला रंग, लेकिन हमें बहुत कम समय मिलता है कपड़े बदलने के लिए,
1: क्योंकि कपड़ों के साथ साथ श्रृंगार भी बदलना होता होगा
3: जी,
1: थोड़ा बहुत।
3: तो
2: अगर कोई नृत्य में शोक या शांत भाव होता है तो जो हम यूजुअल गहने पहनते हैं वो नहीं पहनते, फ्लोरल वाइट गहने पहनती है जो उस इमोशन
1: थीम को प्रदर्शित कर पाए।
2: हाँ।
1: तो थीम के हिसाब से आपको परिवर्तन करना पड़ता
3: या
1: है,
3: या फिर अगर समय नहीं मिले तो केवल जो हम दुपट्टा लगाते हैं केवल वो बदलेगा।
1: अच्छा,
3: जो अनारकली है मुख्य
1: परिधान
3: वो एक
1: वो
3: समान
1: नहीं बदलते,
3: नहीं बदलते हैं, केवल दुपट्टा
1: बदल जाता है, रंगों के चयन करना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, अब मैं आती हूँ कि आप दोनों बहनें कथक करती हैं, दोनों बहनें एक साथ घर में अभ्यास करती हैं, और कितनी बार करती हैं?
3: हम असल में 3 बहनें हैं
1: जी,
3: एक की शादी हो गई है अभी, क्योंकि हमारा समय, मैं स्कूल से लौटती हूँ

0: मान लीजिए 4 बजे खुशबू बहुत देर से लौटती है, लेकिन हम एक सप्ताह में अभी क्योंकि हमारे बहुत सारे शोज़ हैं तो हम रोज़ करेंगे अभ्यास, लेकिन जब शोज़ नहीं होते हैं एक सप्ताह में एक दो बार हम अवश्य करते हैं, या फिर वीकेंड्स में जब हम दोनों एक साथ फ्री होंगे तब हम अभ्यास करते हैं।
1: अभ्यास कितना ज़रूरी है एक नृत्यांगना के लिए? जिस प्रकार गायक है वो गायन का अभ्यास रोज ना करे, अभ्यास का समय उसका जो होता है ब्रह्म मुहूर्त में होता है, अभ्यास ना करे तो वो गा नहीं सकता है, उसी प्रकार जब नृत्यांगना अभ्यास ना करे तो कहीं ना कहीं क्षति होती है, यहाँ के आप कार्यक्रम के अंतर्गत पकड़ लेती हैं, अच्छे से कर पाती हैं।
0: नहीं, अगर सोलो परफॉर्मेंस हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टोली में हो, ग्रुप परफॉर्मेंस हो, तो अभ्यास बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एक डांस प्रोग्राम के लिए।
1: बिल्कुल, और एक का हाथ ऊपर जाए और दूसरे का नीचे रह जाए,
0: दर्शकों को पता चल जाएगा।
1: बिल्कुल, तब वो आपका संदेश सही मायने में दर्शक तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपकी भावभंगिमा उनकी भावभंगिमा से अलग होगी। यहाँ पर तो दो बहनें हैं, कोई कोई कार्यक्रम होता है जहाँ 8-10 लोग एक साथ मंच सजाते हैं, तब भी अभ्यास उनके साथ जाके भी करना पड़ता
0: है। उनके साथ करना पड़ता है, बल्कि रोज होता है अभ्यास उनके साथ। तो एक स्थान, हम एक स्थान का चयन करते हैं, किसी का घर, किसी के यहाँ, तो वहाँ हम रोज मिलते हैं शाम को और अभ्यास करते हैं
1: एक साथ, मिलकर अभ्यास करते हैं। अच्छा, नृत्य आपने पहले शुरू किया, नाट्य कला से आप बाद में जुड़ी, कितना आपके लिए सुविधाजनक रहा नृत्यांगना होते हुए नाटक में जुड़ना?
0: कठिन नहीं था बहन जी, मैंने जब डिप्लोमा भरतनाट्यम किया हुआ था तो नाटक से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम हिंदी के पाठ्यक्रम में भी नाटक है,
1: नाटक है।
0: और महात्मा गांधी संस्थान में हर साल हिंदी दिवस का आयोजन होता है, तो उसमें हम लोग नाटक सपना भर होता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत हम नाटक से जुड़े हुए थे।
1: वहाँ पे नुक्कड़ नाटक का आयोजन होता है,
0: जी होता है,
1: उसमें भी आप भाग लेते थे।
0: तो फिर लेकिन मंच में प्रतियोगिताओं में हम बाद में जुड़े रहे, जब हमारी जो पढ़ाई समाप्त हुई तब हमने प्रतियोगिताओं में भाग लिया।
1: नहीं तो मेरा पूछना इसलिए आवश्यक लगा कि नृत्य तो आपको आता ही है, साथ साथ में आप नाट्य कला से भी जुड़ी, नाटक प्रदर्शन में भी तो अपनी भावभंगिमा नृत्यों द्वारा, मुद्राओं द्वारा, नाटक में भी तो आपको उसका अभ्यास करना पड़ता होगा।
0: जी,
1: तो वो आपके लिए सहज हो जाता है?
0: सहज नहीं, लेकिन उसमें भी अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसमें भी बराबर मिलना होगा, स्क्रिप्ट तैयार करना होगा, अभ्यास,
1: संवाद,
0: उसको कंठस्थ करना, फिर जो आप मंच पे देखते हैं, फिर वो वी गेट द रिजल्ट, वो परिणाम जो मिलता है।
1: सही परिणाम लाने के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, जो कि मेन मुद्दा मेरा प्रश्न यही था कि अभ्यास बहुत आवश्यक है। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में मैंने अभी आपसे बात की कि लोक नृत्य भी आवश्यक है, पर शास्त्रीय नृत्य आपको लोक नृत्य के लिए आसान लगता है या कि लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य के लिए आसान है?
0: जो व्यक्ति मैं कहूँगी उसका अभ्यास करता है वही जानेगा कि उसमें सरलता कितनी है या फिर कितनी परेशानी होती है उसके पीछे दोनों, क्योंकि मान लीजिए एक थाली में अलग अलग मैं कहूँगी भोजन है, तरकारी है, भात है, उसको जैसे बिरयानी में है, अलग अलग है, इंग्रेडिएंट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए मैं नहीं कह सकती कि दोनों बराबर, जो व्यक्ति उस साधना में है उसका अभ्यास करेगा या फिर उसकी प्रस्तुति करता है वही व्यक्ति जानता है कि उसके पीछे कितनी कठिनाई होती है, जो
1: हम मंच में करनी पड़ती है।
0: जी, क्योंकि मंच में जो हम देखते हैं उसके पीछे बहुत कुछ होता है, बैक स्टेज जो हम कहते हैं, पर्दे के पीछे बहुत बहुत कुछ होता है।
1: जी,
0: तो मैं ये नहीं कहूँगी, लोक नृत्य में भी बराबर उसके पीछे भी एक अभ्यास होने की आवश्यकता है, उसके पीछे भी कठिनाइयाँ होती है।
1: नहीं, पर मेरा प्रश्न ये था कि

0: नृत्य आसान है क्योंकि उसमें आप कोई मुद्रा कोई भाव भंगिमा मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, जैसे भी आता है जिसको भी आता है वो नाच लेता है। पर शास्त्रीय नृत्य में आपको हर चीज जैसे सिखाया गया है उसी पारंगत स्थिति में करना पड़ता होगा, तो अंतर तो है दोनों
1: है,
0: में
1: अवश्य।
0: जब हम गीत गवाई की बात करते हैं मॉरिशस में वो एक धरोहर है, तो गीत गवाई के बारे में आपका क्या विचार है?
1: गीत गवाई जो है बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये हमारी जो पूर्वज हैं दादा दादी उन जो वो जो धरोहर है उसको आगे लाना उसको बरकरार रखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वरना वो मृत हो जाएगा।
0: हमारी संस्कृति का एक भाग है
1: जी जी,
0: हमारी संस्कृति का एक भाग है जो कि परंपराओं से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा विवाह वाला घर नहीं होगा जहाँ पे गीत गवाई नहीं होती है। तो आप इसके लिए आप क्या सोचती हैं, गीत गवाई जैसे होती है वैसे ही होनी चाहिए या कि उसमें कोई परिवर्तन आना चाहिए या कि बिल्कुल परिवर्तित नहीं होना चाहिए?
1: थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है क्योंकि खासकर युवकों के लिए, ताकि युवक जो है उससे प्रोत्साहित हो पाए, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आवश्यक ही है लेकिन पूरी तरह से नहीं।
0: उसके प्रभाव को बदलना नहीं चाहिए। पर आजकल हिंदी सिनेमा के गीत गीत गवाई में गाए जाते हैं, भोजपुरी गीत तो आते ही हैं, जैसे बहुत सारे भोजपुरी गीत हैं और साथ में हमारे संस्कारों के गीत हैं जो कि शुरू होते हैं माटी कोड़ाई से, तिलक हल्दी सब के गीत बने हुए हैं और उनका तो अब प्रारूप भी है। पर बॉलीवुड के कहना चाहूँगी हिंदी सिनेमा के जो गीत जुड़ते हैं उसमें, वो जुड़ने चाहिए या नहीं?
1: मेरे मतानुसार नहीं जुड़ने चाहिए।
0: संस्कृति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं
1: जी,
0: तो वो संस्कृति हमें बचा के रखनी है ताकि उसमें केवल भोजपुरी और जो हमारी संस्कृति से जुड़े गीत हैं लोकगीत हैं वो अपनी परिभाषा ना बदलें
1: जी,
0: बिल्कुल उसके प्रारूप को भी ना बदलें, क्योंकि ये ढोलक और लोटा चम्मच से ही गीतों का प्रदर्शन किया जाता है, तो उसमें और अन्य को ना जोड़ा जाए,
1: नहीं
0: वो जैसे हैं वैसे ही रहे। बहुत अच्छी बात आपने की कि उसके प्रारूप को हमें संजोना है तभी हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं से जुड़ा रहेगा। अब आती हूँ मैं कि आप विद्यालय में कुछ अलग करती हैं, ये तो बेला जी तो नृत्य भी करती हैं हिंदी शिक्षिका हैं, पर आपको कितना प्रयास करना पड़ता है क्योंकि आप शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं, तो आपका क्षेत्र अलग है कार्य का और नृत्य से भी जुड़ी हैं, कहाँ आप दोनों को जोड़ पाती हैं और कहाँ आप भिन्नता पाती हैं?
2: जो जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइवेट स्कूल है
0: जी,
2: जहाँ सभी जो लोग आते हैं वो मॉरिशन नहीं है,
0: अंग्रेजी अधिक है वहाँ
2: जी हाँ, तो वहाँ पर शास्त्रीय गीत या नृत्य नहीं होता, लेकिन मैं जैसे कि मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ तो अपने स्कूल में अपने पाठशाला में जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है या म्यूज़िक डे होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक या दो शास्त्रीय नृत्य या संगीत हो
0: उसमें जोड़े जाएं
2: जी हाँ,
0: उस कार्यक्रम में जोड़े जाएं
2: जी,
0: और वो जोड़ पाती हैं आप?
2: जी हाँ।
0: तो स्वयं करती हैं या के छात्रों को भी जोड़ती हैं?
2: नहीं मैं नहीं करती, मैं छात्रों को करवाती हूँ, तो मैं उनको सिखाती हूँ। जो इस साल जब इंडिपेंडेंस डे हुआ था तो हमें एक जो डिफरेंट कल्चर्स हैं मॉरिशस में, तमिल तेलुगु मराठी हिंदी सभी का एक नृत्य करना था, और वो बच्चे तो ये नहीं जानती क्योंकि वो बाले करते हैं अन्य भिन्न भिन्न तरह के कंटेम्पररी डांस करते हैं, तो उनको तैयार करना शास्त्रीय नृत्य में कठिन था बट बहुत सुंदर था, क्योंकि जो कल्चर्स का मिश्रण होता है वो लोगों को दिखाई दे, क्योंकि एक एक छात्र जो जो शायद अमेरिका से है वो भरतनाट्यम कर रही है स्टेज पर, एक लड़का जो रशियन है वो कथक कर रहा है,

0: तो वो देखकर वो बहुत
1: वो समन्वय बहुत सुंदर बना के, और उसमें आपको कितनी मेहनत लगी?
0: बहुत, क्योंकि
1: कितने दिन का अभ्यास आपने करवाया उनको?
0: मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता था, क्योंकि जो भी प्रोग्राम था वो बहुत लास्ट मिनट हुआ था, लेकिन जो भी मैंने की वो एक हफ्ते में जो कुछ कर पाती वो मैंने की।
1: आपने स्वयं अकेले तैयार किया या अन्य किसी ने भी भाग
0: नहीं,
1: लिया?
0: मैं अकेले
1: करवाया,
0: छात्रों को करवाया।
1: छात्रों की उम्र क्या रही?
0: 12-13 साल।
1: 12-13 वर्ष के बच्चों को आपने शास्त्रीय नृत्य से जोड़ा,
0: हाँ।
1: जो कि बिल्कुल भारत के एक परंपरागत नृत्यों के साथ जोड़ा, चाहे वे अमेरिकन थे, रशियन थे, जो भी, उन्होंने इसका आनंद उठाया।
0: जी हाँ।
1: और उनके माता पिता की प्रक्रिया कैसी रही?
0: उनके लिए ये एक बहुत ही अलग चीज़ थी, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो लहंगा पहना था, चूड़ीदार पहना था, सभी गहने पहने थे, तो उनके लिए वो बहुत ही इंडियन दौर की तरह लग रहे थे।
1: यादगार दिन रहा हाँ। होगा उनके लिए।
0: जी हाँ।
1: अब मैं आती हूँ आपके पास बेला जी, आप जब नृत्यांगनाओं को तैयार करवाती हैं अपने ग्रुप में, जब तैयारी करवाती हैं, अभ्यास कितना समय के लिए करती हैं?
2: मान लीजिए अगर एक शो अगले सप्ताह हो तो एक सप्ताह में हमें करना चाहिए।
1: हर एक को एक सप्ताह का ही समय मिल पाता है?
2: नहीं,
1: उससे अधिक भी मिलता है।
2: अधिक भी मिलता है।
1: तो आप उनको पहले दिन से आखिरी दिन तक या के लास्ट रिहर्सल पे पूरी तैयार करके, उनके परिधान को पहना के, आभूषण सब पहना के रिहर्सल करवाती हैं, या के केवल रिहर्सल्स कर लो और लास्ट दिन पर तैयारी के साथ आते हैं?
2: नहीं, हम रोज़ रिहर्सल करते हैं, लेकिन एक ऐसा दिन हम रखते हैं, एक या दो दिन, जहां हम पूरे परिधान के साथ, वेशभूषा उनके साथ भी हम रिहर्सल करते हैं।
1: करना आवश्यक होता है,
2: आवश्यक होता है,
1: उस परिधान में कितने कंफर्टेबली नाच पाएंगे
2: जी, जी,
1: ये देखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने घर के कपड़ों से या किसी भी शॉर्ट्स में पहन के तो आसान होता है, पर साड़ी पहन लेंगे तो वही नाटक या वही नृत्य करना मुश्किल पाते हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करती हैं?
2: हर छात्र को या फिर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन, ये एक मैं कहूँगी एक संस्कृति, एक जिस प्रकार हम पर उनको पता चल जाता है कि ओके एक दिन ऐसा आएगा जहाँ एक स्टेज रिहर्सल होगा या फिर क्योंकि हम
1: एक स्टेज रिहर्सल काफ़ी होता है,
2: काफ़ी नहीं होता, लेकिन रोज़ मंच नहीं मिलता, जैसे कि हम अभी कुछ अर्थ्स में भाग ले रहे हैं उसके एक कार्यक्रम में, मंच के हिसाब से या फिर उस सेंटर के माध्यम से भी हमें अपने रिहर्सल को
1: करना,
2: प्लान करना पड़ेगा। यस।
1: तो आप किसी दूसरे मंच पर जब आप तैयारी करते हैं वो सेम स्थिति तो नहीं आती होगी जिस मंच पर आपको प्रस्तुत करना है?
2: नहीं बहन जी, क्या होता है मॉरिशस में वे हमें या एक सप्ताह तक मंच नहीं देते, एक ही बार मंच देते हैं।
1: यही मैंने कहा ना,
2: एक ही बार
1: मंच देना आसान नहीं होता। अब आप वाक्वा में, थिएटर में जाएंगे तो वो एक दिन के लिए आपको देंगे।
2: एग्जैक्टली।
1: IGCIC में जाएंगे वो एक दिन के लिए आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। महात्मा गांधी संस्थान में भी एक दिन उपलब्धि हो सकती है, पर रोज जो तैयारी होती है वो आप अपने घर पर करती हैं,
2: घर पे करते
1: तो
2: हैं,
1: वो समा नहीं बंद पाता है जो कि घर में है और जो मंच पे है।
2: मंच पे है
1: तो यही मेरा प्रश्न है कि कितनी मुश्किल आती है उसमें?
2: मंच में क्योंकि लाइट्स है वहां पे और मंच का जो मैं कहूंगी जो एहसास है, प्रभाव है मंच में अलग होता है, कम है। हम कभी कभी पूछते भी है अगर एक दिन से बढ़ के दो दिन हम कर सकते हैं, तीन दिन हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं मिलता, लेकिन मिलना चाहिए, किसी
1: मिलना चाहिए पर नहीं मिल पाता। तो वो ना मिलने की स्थिति में आप कैसे उसको रिकम्पेंसेट करती हैं?
2: शायद हमारी जो मैं कहूंगी हम जो मानसिक स्थिति है ऐसी बन
1: उसको
2: गई
1: तैयारी करवाते हैं।
2: एग्जैक्टली। वो अब हर एक नृत्यांगना के लिए, अब हम अगर आप कहेंगे आज ही

0: आप हमें मंच देंगे तो उसके हिसाब से वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि कभी कभी जो फ्लो भी है अलग होता है.
1: हाँ,
0: जैसे कि हम स्वामी विवेकानंद में जाएंगे तो वहाँ पे
1: मंच बड़ा है,
0: मंच बड़ा है, और वहाँ पे जैसे कि कॉर्पोरेट

0: और एक प्रश्न मेरा ये रहेगा, आपने तैयारी करवाई, आप को संतुष्टि भी है कि बच्चे या जिन छात्रों के साथ आपने तैयार किया है वो अच्छे से कर पाएंगे, पर मंच पर जाके वो पैनिक हो जाता है, वो नहीं कर पाता है, उस स्थिति में आप कैसे संभालती हैं कार्यक्रम को?
1: गलती जो
0: कुछ
1: है,
0: लोग कुछ बच्चे होते हैं
1: जी,
0: जो कि बहुत अच्छे से, वही है जैसे एग्जाम्स में आता सब कुछ है पर पैनिक हो गए, ब्लैंक शीट छूट गई, उसी प्रकार नृत्यांगना के लिए तैयारी करवाना आसान है पर मंच पर उस समय लास्ट मोमेंट पे आप स्थिति कैसे संभालती हैं?
1: हम पहले से ही नृत्य नाटक के लिए शारीरिक अभ्यास, शारीरिक शक्ति जो है आवश्यक है, तैयारी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक तैयारी भी बहुत ही आवश्यक है। लेकिन होता है, बहुत बार हुआ है जब बच्चा जो है स्टेज पे, मंच पे पैनिक हो गया, हम क्या करेंगे, पहले से ही हम बच्चे को बोल देते हैं अगर कुछ हुआ उस मंच पे तो जारी रखना, कुछ भी हो जारी रखना, क्योंकि गलती हमसे भी होती है कभी कभी, बहुत बार हुआ है हमसे भी गलती हुई, या हमने कुछ जो मूवमेंट्स जो है या फिर कुछ मिस हो गया है उस समय, लेकिन क्या करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, जारी रखना चाहिए, कुछ भी हो जारी रखना चाहिए। भगवान की कृपा से अभी तक ऐसा एक उदाहरण नहीं मिला जहाँ पे बच्चा पैनिक हुआ या फिर जो प्रस्तुति है बंद हो गई है उस समय, नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर हो, खुशबू के साथ शायद हुआ है,
0: खुशबू के साथ हुआ है
2: जी हाँ,
0: तो अपना अनुभव बताएं।
2: स्टेज पर जाने से पहले एक बच्ची मुझे देख रही है, वो कह रही है नहीं नहीं मिस, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, और उस मोमेंट पे अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो बच्चा और भी पैनिक हो जाएगा, तो हमें उन्हें एंकरेज करना पड़ता है, नहीं यू कैन डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। और अगर तो मैं उसके साथ स्टेज पर गई पर मैं नहीं नाची, जस्ट
0: उसके पास खड़ी रही,
2: हाँ जी हाँ, ताकि उसे पता हो कि वो अकेली नहीं है,
0: अकेली नहीं,
2: उसके बगल में कोई है, तो जब वो और कंफर्टेबल हो गई तब मैं स्टेज से बाहर
0: हट गई
2: जी हाँ।
0: दोनों से मैं प्रश्न करती हूँ, आपने खूब तैयारी की है नाटक के लिए या नृत्य के लिए, तो जब आपका कोई आभूषण है, वो जैसे कान का झुमका गिर गया है और वो आपके पैर के नीचे आ गया है, आप रुकती हैं उस समय, या के आप उसे हटा के नाचती हैं, या के आप अपने फ्लो में ही रहती हैं?
1: मेरे साथ बहुत बार हुआ
0: क्योंकि
2: ये बहुत
0: होता है, हमने देखा भी है मंचो, जब हम कार्यक्रम में जाते हैं किसी महिला का मांग टीका गिर गया है, किसी की आंख के ऊपर आ गया है पर उसने नृत्य नहीं छोड़ा
1: जी
0: जी, तो आपका अनुभव क्या रहा?
1: बहुत बार हुआ है, हमेशा होता है हमारे साथ, कान की बाली जो है यहाँ गिर गई, लेकिन हम नहीं रुकते हैं, कुछ भी हो, पैर के नीचे भी आ गया या फिर चोट लगी हो उस समय,
0: नीचे चोट लग जाती
1: नहीं,
0: है,
1: जारी रखते
0: हैं, जारी रख पाते हैं,
1: ताकि दर्शकों को ये उनको
0: महसूस
1: ना हो, पता ना चले कि अच्छा कुछ हुआ है, नहीं,
0: बट जो सामने देखते हैं उनको पता चलता है कि कुछ बदलाव आ गया है। जी आप कुछ कह रही थी?
2: कहना चाहती हूँ, एक बार मैं नृत्य कर रही थी एक स्टेज पर, और वो स्टेज जो परफॉर्मेंस स्टेज नहीं था, वो एक यू नो जब लोग स्पीच करते हैं उस तरह का स्टेज था, तो बीच में एक गैप था, और जब मैं नृत्य कर रही थी मेरा पैर उसके अंदर गया और मैं स्टेज पर गिर गई, लेकिन मैं रुकी नहीं, मैंने अपना नृत्य कंप्लीट कर दिया,
0: पूरा किया
2: और किसी को पता नहीं चला कि मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई थी। अब मंच के जब नृत्य हुआ, जब मैं मंच से चली गई, तब मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे चोट आई थी मेरे कलाई में, जो एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन अगर मैं उस वक्त रुकी और रोई तो सभी को पता चल जाता कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं गिर गई,
0: संभाल ली
2: जी हाँ
0: जी।
2: गिरने के बाद, चोट लगने के बाद बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं रुकी नहीं।
0: आप रुकी नहीं
2: जी हाँ,
0: सराहना करेंगे आपकी। आप अब हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, नाटक करते में भी आप कोई डायलॉग भूल जाते हैं, उस समय आप या आपके

0: साथ जो है सहयोगी, तो आप उसकी लाइन को बढ़ा पाती हैं या के रुक जाता है नाटक, तो स्थिति क्या होती है?
1: एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, चाहे कुछ भी हो शो जो है
0: शो मस्ट गो ऑन
1: एग्जैक्टली शो मस्ट गो ऑन। तो नाटक में भी यही होता है, अगर कोई भूल गया हो तो हम क्या करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। जब हम रिहर्सल भी करते हैं हम बच्चों को कहते हैं या हम उस स्थिति में भी करते हैं कि अगर कोई भूल गया तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो आप किस प्रकार से
1: इम्प्रोवाइजेशन होता है
0: और उसको इम्प्रोवाइजेशन आपने किया, वो दूसरा जो आपके साथ खड़ा है वो भी इम्प्रोवाइज कर पाता है?
1: अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हमें स्थिति को संभालना पड़ेगा, या तो पूरी जो वार्तालाप संवाद हो रहे हैं उसको बदलेंगे,
2: हिंट देते हैं ताकि वो अपना डायलॉग
0: याद कर पाए। आपने कहा कि आप ऐसे विद्यालय में पढ़ाती हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, पर आपका जो नृत्य का क्षेत्र है वो हिंदी से जुड़ा हुआ है, शास्त्रीय नृत्य तो और भी हिंदी के बिना आप सोच ही नहीं सकते, तो आप वहाँ पर प्रस्तुति के लिए प्रस्ताव कैसे रखती हैं, कैसे आप कन्विंस करती हैं लोगों को कि शास्त्रीय नृत्य भी उतना ही आवश्यक है जितना कि कंटेम्प्रेरी है?
2: वो पाठशाला तो मॉरिशस में है
0: जी,
2: और हिंदी शास्त्रीय गीत या नृत्य मॉरिशस के ही कल्चर का भाग है, तो जब भी हम कुछ कर रहे हैं और हमारे स्कूल का जो मिशन स्टेटमेंट है वो इंटरकल्चरल है, तो इसमें तो इंडियन क्लासिकल डांस या संगीत तो होना ही चाहिए।
0: हमारा देश बहुत, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने ज़्यादा रंगों से जुड़े हुए हैं, इंद्रधनुषी देश है हमारा, बहुत सारे कल्चर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संस्कृति एक नहीं अनेक हैं, परंपराएं एक नहीं अनेक हैं। आप कैसे आज के युवा को प्रभावित करेंगी, समझाएंगी और उसे मंच तक लाएंगी कि उसका प्रारूप ही ना बदला जाए, संस्कृति को भी संजोया जाए, परंपराओं को भी निभाया जाए और शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ लोक नृत्य, गीत गवाई सब आप कैसे मैनेज करेंगी? युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश, क्योंकि बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं हमें, तो ये संदेश पूरे देश के लिए है कि नृत्य कला, नाट्य कला और लोक नृत्य सब का सामंजस्य है, जुड़ते हैं, पर किस प्रकार?
1: युवकों को ये ज्ञात होना चाहिए कि जो शास्त्रीय नृत्य है, अगर आप हम बॉलीवुड भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो मूल जो रूट है, जड़ है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत और नाटक से ही है, तो अगर वे उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो जो मॉडर्न, जो आधुनिक जो परिवर्तन हो रहा है, जो देखते हैं बॉलीवुड के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, वो सीख नहीं पाएंगे। वो जड़ सीखना बहुत ही आवश्यक है पहले, फिर
0: आज यूट्यूबर्स बहुत हैं,
1: बहुत
0: है। कदम चलाए, कोई गाना रजिस्टर किया और वो प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, पर रूट तक नहीं पहुंचे, जड़ तक नहीं पहुंचे। इस पर आपका क्या कहना है?
1: आजकल तो कोई भी, जैसे आपने कहा, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर्स है, लेकिन जो दर्शकों को है या फिर माता पिता को ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हम यूट्यूब में देखते हैं अलग है, और जो सच में जो जड़ है उसका,
0: संस्कृति
1: की जड़ है, पहले तो माता पिता को पता चलना चाहिए कि बच्चों को क्या सीख दे। लेकिन हम कोशिश करते हैं स्कूल में, जब हम जाते हैं, जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम सिखाते हैं कि जड़ बहुत ही आवश्यक है, बॉलीवुड अलग है,
0: किस प्रकार अच्छी भाषा का प्रयोग करना है ये भी आवश्यक है,
1: ये भी आवश्यक है, अच्छी भाषा का, अच्छे कपड़ों का, और जो वे किस प्रकार उनका रहन सहन है समाज में, क्योंकि वे ही हमारे भविष्य है, मॉरिशस के भविष्य है। तो अगर भविष्य में ही आजकल एक त्रुटि आ रही है तो क्या होगा बाद में?
0: भविष्य

0: और खराब हो सकता है। तो आप ये कहती हैं कि हमें आज की संस्कृति को बचाने के लिए माता पिता को,
1: माता पिता केवल माता पिता को नहीं, लेकिन एक हर एक व्यक्ति का अपना एक उत्तरदायित्व होता है।
0: आप भी अध्यापिका हैं तो आपका भी दायित्व है, पर अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि वे सही दिशा मार्गदर्शन कर पाएं अपने बच्चों का, अपने छात्रों का सही दिशा ले पाएंगे तो वो हमारी संस्कृति और हमारी समाज, हमारी परंपराओं से जुड़े रहेंगे। आप इस पर अंतिम संदेश।
1: मेरा अंतिम संदेश यही होगा कि जितने भी परिवर्तन आए, हमें कभी भी अपनी जो जड़ है, संस्कृति है, जो शास्त्रीय नृत्य है, कला है, उसको नहीं भूलना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें जो घमंड है, अहंकार है, वो भी नहीं लाना चाहिए।
0: कला में घमंड आ जाएगा तो वो कला का अपमान होगा,
1: अपमान होगा,
0: क्योंकि कला हमेशा ईश्वर को समर्पित होती है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। खुशबू, आप भी अध्यापिका हैं, बेला जी आप भी अध्यापिका हैं, बहुत अच्छे से आप अपना दायित्व निभा रहे हैं कला, संस्कृति, भाषा सबको जोड़ कर रखने के लिए, और आप दोनों ने समय निकाल कर हम इस कार्यक्रम में अपना विचार, अपना सहयोग दिया, इसके लिए आभार प्रकट करेंगे। हमारी टीम में भाई शिव, दीपशिखा और जावेद जी हैं, उनको भी आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि उनके सहयोग के बिना श्रोताओं ये कार्यक्रम आप तक नहीं पहुंच पाता। तो आज अंजू को आज्ञा दीजिए, इतना ही, एक अन्य कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे। शुभ संध्या।
2: उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। शिक्षा मंत्रालय इतला करता है कि प्राइमरी स्कूल असेसमेंट सर्टिफिकेट पे साल 2026 के इम्तहानों की तारीख तय की गई है। 22 अक्टूबर को फ्रांसीसी जबान और साइंस के पर्चे होंगे। शुक्रवार 23 अक्टूबर को अंग्रेजी की परीक्षा निर्धारित है। सोमवार 26 अक्टूबर को हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, पूर्वी भाषाएं और अरबी जबान तथा रियाजी यानी मैथ्स का इम्तहान जुमेरात 27 अक्टूबर के लिए तय है। पर्यावरण प्रिय पहल के तौर पर मॉरीशस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक माध्यम अपना रहा है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को अपनाते हुए सरकार सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा कारगर बनाना चाहती है। कल रुजिल ट्रांसपोर्ट ने एलियस परियोजना की लॉन्चिंग की। इस मौके पर परिवहन मंत्री मौजूद थे। इसके तहत 5 सालों के दौरान डीजल से चलने वाली 20 बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा और ये बसें 5 मेगावाट सौर्य फोटोवोल्टाइक पैनल से चार्ज होंगी। मॉरीशस में कुल 116 बसें इलेक्ट्रिक हैं। मॉरीशस में ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग के वास्ते शिक्षा मंत्रालय ने आज कथोबोन में एक गोल मेज बैठक लगाई। इसके दौरान मॉरीशस में एक राष्ट्रीय स्क्रीनिंग प्रोग्राम को स्थापित करने के लिए बातचीत की गई, जो अस्पतालों और मेडिक्लिनिक्स में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मुलाकात के दौरान मॉरीशस में ऑफ्थाल्मोलॉजी के क्षेत्र में यूके से आए 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की यात्रा के संदर्भ में भी बातचीत की गई। विदेश में उत्तराखंड भारत में एक सुरंग के ढह जाने से कम 7 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग अभी भी फंसे हैं। एक वृहद बचाव कार्रवाई शुरू की गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: RM3 Radio, Radio, Radio.
4: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। जहां श्रोताओं, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जैसे कि पिछले हफ्ते हमारे बीच हमारे जो मेहमान हैं कपिल देव रघुनंदन जी, उनके साथ हमने गोद, जैसे हम बच्चा गोद लेते हैं, और आदुपशों जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। तो वो जो हमारा विषय है वो रह गया था। तो आज जो है उनसे हम फिर मिल रहे हैं इसी विषय पर बात करने के लिए। चलिए उनसे मिलते हैं। कपिल देव जी नमस्ते।
5: नमस्ते जी,
4: कार्यक्रम में स्वागत बा।
5: शुक्रिया।
4: तो पिछले हफ्ते हमने आदुपशों पर बतियले रलीजा और हम के याद बा कि हमने बोले रलीजा की 3 तरह के लादु

0: शो हा और ओकर पर हमनी बात करे रही जा हमनी के पास इतना समय नहीं रहल कि हमनी के जो पिछले हफ्ते के जो हमनी के विषय रहल ओकर पर पूरी तरह से बात करब जा तो हम चाहते कि जितना कोई हमनी के कार्यक्रम जो बा कहीं ना कहीं अगर छूट गल बा नहीं सुन ले रहल जा पूरा या ढेर कोई नहीं सुन ले हो जा हमनी के कार्यक्रम तो एगो छोटा कुन एगो रिकाप कर दे ला जाप शो पर
1: जैसे शुरुआत में तू बोल कि हमनी के देखे ला हमनी के कानून में कुछ सिविल में तीन काली थे के अडोप्शन बा और पहला देख ले रही सब मज अडोप्शन सैप अडोप्शन प्लीनियर और लेजिटिमेशन पर अडोप्शन ये सब हम एक्सप्लेन करब सर ये वो जाने ला ये वो टॉपिक है जो बड़ी लंबा है
0: हाँ
1: मैं ही खातिन तक मज वक्त लगे ला कभी देख बा आधा मेरा जाला आधा नहीं होला मैं तो हर परमिशन से आज जैसे बोल ला शुरू करते हैं इसे एगो रिकाप करते हैं
0: एगो छोटा कुन रिकाप जितना कोई मौके होगा हमने के कार्यक्रम
1: अली पहला देखे ला सर ये अडोप्शन सैप देख ले रही सबने अडोप्शन सैप मॉरिशस में बड़ी courant bas. Tien kar admi jun adoption karela ego laika god me levela jaisi ya chokri ho ya chokra koi ta dekhba o adoption simple hoy karela. Adoption simple ke okar maja ka hai ba okar hai ban raison ba konchi konchi kare ke chahela u sab dikhle rali sa ar hamni dikhela sa aaj adoption simple kab ego admi karela ego laika ke ta u laika mem droit hoela oke jun ke adopte karleba okar laika near कोनो तो आदमी अडोप्ट करेला कब नहीं है भलाई का कोनो तो अडोप्ट करेला एगो लड़का ओकर माँ ओकर बहन उनके या एगो परिवार जोन के पोस बा उ लड़का के जोन उ लड़का ओकर संगे है दिन भर ओके देखभाल कर ले बा तो बोले अरे हम ओकर तो माँ बाप अब तक नहीं बा तो जाई कहाँ तो चलो हम ओके अडोप्ट कर देला तो देख बा मेम की ओकर लड़का बा और हियाँ देख बा उ लड़का के वो अडोप्ट करता जब वो अडोप्ट करता उपमा जे लड़का के उ लड़का अन मन एगो लड़का लेजिटिम नियर बन जाला
0: उ लड़का के एगो परिवार अपन नाम देवेला
1: हाँ
0: नाम देवेला ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवेला ओकर देखभाल करेला ओकर लेकुल के ओकर पढ़ाई के ओकर खाए पिए के ओकर कपड़ा जूता यानी कि उ लैकवा जोन बा उ लोग के जिंदगी के उ लोग के एक परिवार के हिस्सा बन जाला जहाँ पर ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले मिलन जा
1: जरूर जरूर सब तू बोल देला तो ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी कब ओके देखता मैं हम नहीं देखते इस ई कुमा जल्दी लेकुल भेजे के नहीं ओके का कर ले बा होला देख ले रही सर मैं अभी के लिए देखते इस उ लैकवा कब उ परिवार में चला वेला अनमन एगो लैका हो जाला आज के मैडम होय के या मिसेवा जोन के रल ओकर लैका नियर अब ओकर देख कब लैकवा ओ आवेला जहाँ अडोप्शन कर लेवन सर बस ओकर तो लड़का है बायोलॉजिक नहीं है ना दूसर के लड़का है जब वो आदेय होवेला उ फमिया में अडोप्टन के फैमिली में अनमन ओकर भाग जे रिचे हो जाला ओकर लड़का दूसर नियर ओके धन दौलत घर उर सब मिली और जब हियाँ भी देखे वो कितना जोली चीज है ओके मिली हियाँ सब चीज एक बगल पारूर रही या कुछ रही पैसा रही
0: ओकर जो परिवार बा अगर हुआ पर बा तो हुआ पर मिली
1: है का और हुआ को हुआ से देख बा ओके ओके फिर से मिली तो यहाँ देखा कोई भाग कोई याद उठते तो देखा कोई हमने के मन हो याद उठते खड़े के तो याद उठते कर टेंशन तो सब से दोनों बगल से कुछ ना कुछ मिली अरे तो देखे ला वो लड़का के ओकर जैसे हमने बोल से ओकर दुआ एगो जीते अनमन ओकर दोनों बगल से मिलेला माँ बगल से नहीं हो और हो बोल जो नादोपते कर लेबा आर ये सब हमने कब दिखले रही सर आर दिखले रही सर कौन कौन डिफरेंस चाहेला एगो आदमी के सिबोजो थां थां रहे के चाहेला इन बिटवीन चाहेला वो आदमी आके आज तो देख ली सर हाउ वाला देख ली सर एगो अडोप्शन सैप होला अरे अब का होल मन बातों का रिवोके करे के हाउ अडोप्शन मा कर ले हुआ और अडोप्शन सैपे है और दूसर में नहीं बात करते हैं सर ओके मन बा हिया रिवोके करे के अब कौन प्रोसीजर करी काहे एगो आदमी देख बा सकेला एगो लड़का के अडोप्टे करे वो लड़का कैसे बड़ा होल तनी मनी जिस वितान से तक यहाँ
0: बीता
1: मोवे तो देखबा बहुत चीज लगल करे मोवे हो तो कुमा जरी तो देखबा लाधोग में लगल जाए या कुमा जैसे ने वो काम लगी करे कि तोरा देखत हो
0: नहीं सुधरत नहीं बा मोवे काम करता
1: हमनी के कुमा कानून में बोलेला ओके रिवोके करे के प मोचिव ग्राव ओकर एगो कुमा जे इंटेंशन ग्राव बा एगो चीज करे के नहीं करे के चाहेला आ देखो बोली के मुआ दे लेबा कोई के
0: हां
1: वो आदमीया तो सोचत आ ऐसन लइका हम का करब
0: नाम खराब करत का ही तब भोजन जन परिवार बा उत पर नाम दे लेबा ना
1: हां तो अब वो के कुमा जे मन बागी वो के करे के अब सके रिवो के करे वो आदमीया फिर से कुमा जे लइका के कुमा जब नहीं मां बापू कुमा जब नहीं बनी ना अडोप्टन जैसे हमने वर्ष नहीं रही का एगो केस कब डाली लाकुर में

0: मजे डाली हुआ बोली कि कुमकुआ दिख हम मांग कर थे जी से कि ई छोकड़वा या छोकड़िया के जोन के हम हई आदुप्ते कर रही हमके मन बा रिवोके करे के हमके रिवोके करे के काहे मांगत हई एगो आबू के देखी अब आ
1: गया कर चला कर वजह चला रहे के ना
0: हां अब ऊ में ए वोके करी ओके बोली कि ई लइकवा ए जी बा एगो लइकवा को मजो कर रिलेशन देते हुए बा नई लिमन लड़का जो ओकर कोपोट में जैसे हमने बोल सकते रवासी बा मुआ हुआ था से भाई गुलाबी पोस्टिचुए आना था तो ओकर परिवार के कुमार जो सब इज्जत जैसे बोल ओकर इज्जत तक कुमार जी
1: परिवार के नाम खराब कर रहता तो कैसे भी करके परिवार वा जोन बा जो माता पिता बाबा लोग के अधिकार बा कि वो लोग जोन बा है आदब शोवा के सकन जा वो करके आएगी नेकवा नाम खराब कर रहता
0: और नाम तो खराब करती बा मैं का करता जो आदमियों के आदुपते कर लेबा मैं नासे करता वही आदमिया के
1: घर में तोड़ फोड़ में नासे करता मारे जाता दुमिदे करता हो सकेला कि जो परिवार बा लोग के लड़का बा लोग के लड़का के मारता देखो खतरा से की बन जाए लड़का
0: ई सब लगल कुमा जे कब ऊ लड़का औसे करे अब कुमा जे एगो बोली के का करी एक बान बा ऐसन में हम कानून में तो है बा अब ऊ छोकड़वा के बड़ा हुलसी पूछो एको गो लड़का नहीं रहो जो आदमिया के आदुपते कर ला यही लड़का के खाली आदुपते कर ले बा अब ये लइकवा का बोलता है लादोग में ढुक गल बा बोले घरवा बेच है जमीनवा बेच अब हमके मन तुम बेच के हमके पैसवा दे पसी हम ही तो जगी छी हां अब कहां जईबे तो अब ऐसन ऐसन काम ओकर मोटिव ग्राफ जैसे हमने बोला सर तो रही तो सकी मांग करी लाखू सिपाही से कि देख उ जीवो है लइकवा के हम आदुपते कर लें अब हम चाहत हैं रिवोके करे के अब हम नहीं चाहते यू हमर लड़का आदुपशों के लड़का हो
1: ऐसन में जूस कुंच करेला
0: हाँ तो जी सुने ला कहनिया जे कुमा जे जोली अरे तू ही एगो आदमी तोरा में है कुमा जे एगो लड़का के तू है आदुपते कर लेवा वही लड़का तोरा मेनासे करे तो तोरा मुआई की
1: हाँ लड़का मान ला लड़का लाधोक लेवा था अब घर के चीज बेच देवा था चोरी कर देवा था पैसा
0: ई तो बा और का करे से नहीं देब ओके कुमा जे पैसा तो ऊ छोकड़ुआ उ तो आर कुमा जे घर में एक मजे एगो है मजे एगो तराका दे दई तो ही बोलल जला आदुपशों करे के गाड़ी एगो आदुपशों सै बोलत हैं सर चाहे ला बहुत लिमन से सोचे के हमने पहला शुरू देखे सर कब आदमी सोचे रहे अरे हमर कब हम बूढ़ा हो जाब ना कोई नहीं रही हमके देखे ये लइकवा के देखब नई जन्म अनमन एगो शादी है शादी कर ल भैया नहीं सोचल कि कुमाजा पगाजी में हुआ कुमाजे जैसे कुमार बोले सर शादी कर ल लाइफ खातिर नई जन्म बीच में का हुए एगो जीवोश हो जाला हौ लइकवा के देख ल आदुपते कर ल सोच ल उ बखत हुआ कि हरि बाप हई हमार देखभाल करी एगो बड़ी लिमन नहीं बताई नहीं आदुपते कर है तो तू अदमिया जो आदुपते करे ओके जानी ओकर चालन छलन उ लइकवा के कि इस सकल आदुपते करे कि नहीं कि ओकर कुमाजे मोशियो हो जाइब एगो सागर करब उ लइकवा के बस कुमा जे जाके आदुपते कर ल तो का करेला एक बार कानून में बा केस आल बा जहां उ लइकवा लाधोग में ढुक गल बा दिन रात जोनो के आदुपते कर ले बा मऊआ या बबुआ पैसा मांगता
1: मारता
0: अब उ लइकवा से कभी यहाँ यहाँ तक कभी तो बा कोनो के पैसो नहीं बा उ सकेला गरीब हुई एगो लइका के जैसे बोली ना सोचा था कि कम का बूढ़ा हुई तो ओके देखी तो वो नहीं मारे ओकर यहाँ पैसा पसंद ओसन आदमी कोई नहीं दबाव कर लेगा तो दिखब एगो सिचुएशन चला वेला कि जहाँ उ लइकवा एगो प्रॉब्लम हो जाला कुमा जे अब हुए के आदोपते कर ला कितना खुशहाली से कितना गई से अब बड़ा होल घर बेचो भैया सब चीज करके ओके अब पैसा द वो कुछ करे तोरा नहीं सकब कुमा जे ओकर में अब लोड डाले ये देख लो आले ये तो देख लेली से एगो रिवोकेशन के तबलिक मोटिव ग्राव एगो सोलिड रीजन हुई एगो बोन रीजन हुई तो सकब एगो मांग करे कुमा जे लाखों के ओके रिवोके करे के आले ये तो देख लेली सर तने ज्यादा हलियाली जाते हैं सर अब एगो लड़का के कोनो कर फोसे जी आदुपते करे के
1: हाँ
0: आदुपते तो बोल दी सकून कौन कौन जिश्यो है कौन फोसे जी कैसे गो लड़का के आदुपते करब आले पहला चाहेला जोन आदमिया ओके मन बा आदुपते करे के ऊ छोकड़िया के या छोकड़िया के तो ओके चाहेला एगो केस डाले के लाकू सिपाही में
1: अच्छा यानी कि हम आज कोई के आदुपते करे खोजते एगो लड़का के हाँ, तो हमके चाहेला लाकू सिपाही में
0: हाँ, एगो केस डाले
1: एगो केस डाले के
0: केसवा डाले के चाहेला एगो आबो एगो आबो का लेके
1: हां बिल्कुल
0: हां पसी गो पोसे पे एगो प्लांट नियर डाले लनसन मांग करल जला जीजुआ के फैमिली डिवीजन में कि देख ई हमर मज ई लइकवा के जुनबा ओ हम के मन बा ओके आदुपते करे के और ओकर आदुपते आदुपशोवा में एक बार ओकर रीजन दे के चाहेला और चाहेला एगो कब डाली ओ अब वो आदुपशोवा में

0: कोई के आदुप्ते करे खो जाता और ई देवे खोता पर लेका कि हाँ हमर तब फ्रिजों में है हमके तब अब यहाँ पर का हमर जीवन खराब हो गल बा हम चाहते कि हमर लेका के कोई आदुप्ते करी ऐसा में कोनो मुश्किल नहीं होला
1: नहीं कोनो मुश्किल नहीं हुई मैं कहे चीज वा प्ली इंपोर्टेंट देखे जे आदुप्ते करता ओकर झकमा जाल चलन जे रही ओकर उकमा जे पापी है जैसे हम से बोले सफा रही पोप रही तब तो ओ तो बोली नहीं तो ये ओ कही तो नहीं ऊ सकेला कुछ कर ले यही खातिर साइड नहीं सकता वो लैकवा के देखे बस को मजा
0: एगो एगो एगो रीजन मिल जाला कि लैकवा के सगबा आदुप्ते करे अब आज लैकवा बड़ा हो गया जे अपन बाप कहते बन गल तो यहाँ सगबा रिवो के कर दे
1: हाँ और एगो एक मजा रिवो काशों सगबा करे दूसरा चीज है सिर्फ कुमा जे तरेलवा नहीं बोली कुमा जे है बा सिबुजों पुजों करता लाधोग में बा जब वो लैकवा ओकर आदुप्शों सकल जला रिवो के करे जब वो लैकवा ए ग्रैचुटी बा और है बगल ओकर जोन आदमा है आदोप्ते कर लेबा कानून है जब एगो लैका के आदोप्ते कर देबा अनमन तोहर लैका हो जाला कब ऊ लैका होवेला ओके भी चाहेला एगो सैतन कुमा जे है पैसा दे के खाई के दे के मवा के जे सकी काम करे ते देखभाल करे के अब ओके देखभाल नहीं करता मारता पीटता बस ओकर ए ग्रैचुटी बा और ओकर गिलासों जोन बा देते तोहिए हो गल बा ते ऊ परिवार में तो ऐसा काम ही दिखब सकी मांग करी कि एगो नहीं ई लैकवा से अब हम नहीं सकब जे रहे अब प्रीतो रिवो के कर ते सब जीजुआ के इताले करेला ओकर पेचिशुआ पोसे पेवा में आवेवा कब जीजुआ देखेला कब आवेला बतिया ला लाकुर में तो कुंवैंक करेला जीजुआ के चाहे कोई कुंवैंक करेगी तब ने जीजुआ है कुमार जे रिवो के करी जे जीजुआ सैटिस्फे बा कि रेजों बा और बा ऐसा बा एविडेंस बा प्रेव बा तो सकी कुमार जे ई केसुआ में ऊ लैकवा के जोन आदुप्ति कर ले रहा माता जिया या आ रही हो चचा सकी वो है बुके कर दे
0: बहुत खूब
1: देख लो ये स्टेबली बात कर ली सर तीन काल थे अदुप्शन अदुप्शन सेंट में कुमार जी फिनोला अब हमने आप सर न तो नहीं फिनोला जिसे लंबा बा ना हाँ हाँ तो आप सर अब सेगों अदुप्शन में देखें सर सेगों अदुप्शन एक रे नाम हमने बात कर सर अदुप्शन प्लेनियर ये कहा है एक बार आदमी बोली अरे अदुप्शन सेंट तो सब कोई जाने ला गोद में के गोद में के ले ले लो अच्छा एगो डिमांड अडॉप्शन प्लेनेर अप्लीके होए रहला दो तीन कंडीशन में जब देखब ई सकल जाय होई करी आली जब एगो आदमी मन बा ओके एगो है अडॉप्शन प्लेनेर करी के तो ऊ चाहला ऊ कुपवा के जो ना अडॉप्ट करता दोनों शादी कर ले वंसन विसंगे रहे लंसन हो में तो देख ली सा सकी तो वेव होई रही जो नदमिया ओके ओकी बेगा एगो दादी सिबा मौसी है लड़का भाई का नहीं बा पति नहीं बा आदोपते वेव सकला मैं है में नहीं जब एगो है आदोप्शन प्लेनिया करे कहते दोनों के चाहेला संगे रह के एक एक घर में जाने पिता देख अब समझ जीवोस और सेपरेशन जी को एगो दो दो डिफरेंस चीज है एक बार आदमी को बोले नहीं सेपारे हैं योकर से कब सेपारे हुए तो अनमन जीवो से नियर मैं देख अब सभी वो अभी ज्यादा कॉम्प्लीट वो नहीं बात करते हैं सर तो यहाँ आदोप्शन प्लेनिया में देखा वो का करता वो आदमिया की सखी हो लैकवा के आदोप्ते करे फोडे एगो खूब जो संगे जियत वंसन अब जे संगे जियत वंसन ई में कोनो लाज की कुमा जे नहीं नेसेसेर बा हो में तो दिख ली सन तीस बरिस के चाहेला लैकवा के चाहेला पंद्रह बरिस ज्यादा है रहे के है से जोन कुपवा आदोप्ते करता से उस कुपवा जोन आदोप्ते करता बा ओके थ बा तो कैंज मजे ऊ लैकवा को मजे है कम कम रहेला ना कैंज रही तब न थ के आदोप्ते कर एगो डिफरेंस दे लाज दे कैंज चाहेला ये सब देख ली सर ई में नहीं ई में ओ कोनो कंडीशन लाज नहीं बा ऊ कुपवा के चाहेला आदोप्ते करे के एगो आदोप्शन प्लेनिया में
0: यानी कि एगो एगो एगो जो जोड़ा बा एगो कुप हवन चा दोनों के कैसे थौतां थौतां थान सैकां या कारौतां होल होई एगो लेका के आदुप्ते करे थौन सा संगे रह थौन सा लो के लेका नहीं बा
1: जोली इही हां संगे रह यन सन पूवी तब उ कुपवा सकी एगो अडॉप्शन प्लेनिया करे आले ई त अडॉप्शन प्लेनिया करे के इमे त खाली एक एगो चीज नहीं है कि संगे रहिब आलुस तो कुमा जा सकब अब का होइला एगो लैका जुन अडॉप्शन प्लेनिया करे सन कहाँ लैकवा के मिले हाउ तो देख ली से परिवार के देवता
0: हाँ
1: तो तीन कार दिखब आदोप्शन प्लेनिया में वो लैकवा जोन लैकवा अबांडोने हो गल बा अबांडोने हो गल बा ओकर परिवार से परिवार वा के कोते नहीं लोता हाउ में तो देख ला ना ओके चाहे ओकर परमिशन डाले के बपुआ के और मऊआ के थप ओके दे हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,

0: Okay, jom deliba janamwa
1: lai ko ale chhod deliba sa
0: chhod deliba bondo ne kar deliba koi jage nahi ba ek ban admi babi dekha sa
1: aisa nikal log zyada tar kaise bola ja ki anathalay mein milela na
0: ये दूसरा भी देखब सर अनाथालय सिर्फ नहीं बा शेल्टर बा कोई के नहीं बा लिया देख बा माँ बाबू को छोड़ दे बा लड़का देख बा कुमार जी हमनी के देश में भी बा एगो लड़का को एगो मादाम हो एगो लिपो खोल बा एगो केस रहल अरे लड़को के का होल ओके कुमार जी सदा मदमो का होल कोई के नहीं बा जियत हल दूसर कालीते बस एगो कुमार जी लड़का हो गल बिस्टोप के आगे बैठल बा बिस्टोप के आगे अभी लड़का नहीं होल मारे गुल्लू हई में हई सेवियत में डाल के ओके वहाँ छोड़ के भाग गल एकरे ना अबोंदो ने हाँ। तो के छोड़ के हई चल गल अब लड़का के अभी तक कभी देखबे को दूसर आदमी पासे होता सिपाला पुलिस पासे होता बोली देखे एगो लड़का खाने के छोड़ के गल बा तो के लेवेल अंसन कोट में जे आके ओके ले जाए तो यहाँ देख ल ऐसन ऐसन जोन लड़का बोंदोने हो गल बा शेल्टर में बा क्रैश में बा तो देख बा इस सब लड़का के कुमार जे आदुप्शो प्लेने आवेला अब दूसरा दिखेला सर जोन के लड़का के उरे बोंदोने हो गल बा तो किसे जन्म कर पारों के हो ऐ को नहीं हाँ। था, जब अबोंदोने करके
1: लड़का के जन्म देके कहूं जंगल में फेंक के कहूं कूड़ादान में डाल के चल गलो कैसे पता चली कि के है
0: कितना लेन में बा देखबक मैं हम अफाई हम तो बहुत लागल हई वहाँ देखने एगो लड़का के कुमार जे खाई नहीं होल बा अभी देखल से एगो हई में अनमन एगो फ्लास्क में जे आबो दोने में एगो तेरा जैसे छोड़ के चल जन अब कोई नहीं जानत तो ओकर माँ है कि है बाप के है कि अब मजा ये फसिल चीज नहीं है मैं ऐसने हो अब औसन लड़का के तेल मैं बा एगो इंस्टीट्यूशन कुमार जे कैसे हिया तो बा न गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन बा औसन लड़का के देखभाल करे के लियन सन खश में लियन सन सिपा ओके शेल्टर में ले जाके ओकर देख भाल करी तबले कुमार जी ये गुहाई रही और दूसरा रही ये सब बोले से जिसको परिवार ऐ को नहीं बा मैं ऐ को नहीं बा कोरे एक बार तब बा बेचारा वो अपने मर गल बा तो यहाँ तब बहुत ने हो जाने लगी को मौवे बपुआ कुमार जी अब नहीं बा मर गई लंसन जन्म ले लकू मिसल में का कर लक उलाई को के माँ बपुआ कब कैसे कुमार जी जन्म लेक से एक बड़ी सोल दो बड़ी सोल वो देख बा उलाई को के माँ बाप दोनों मर गल अब हमने देख सतुआ नियर ओकर लिफे का देखली से पहला कब तू एगो लड़का के आदोपते कर लस तो दोनों बगल से अभी देखो अभी पहला चीज देखला सा ओकर लिफे आदोपशो का एगो आदोपशो प्लेनियर में उकर लिफे कौन चीज हुएला उकर ऐसन लैके के कब रही बा जोन लैका अपन कुमार जे है आदुप्ते कर ले हुआ एगो आदुप्शो प्लेनियर वो सब उकर जोन रहल उकर माँ बाप से वो सब कुमार जे उकर फैमिली ओरिजिन से के सब बिला जाला कुछ ओके रिकोनेक्ट नहीं है करी अब
1: लड़कुआ के तो जन्मे नहीं करत हो ना के है कहाँ से आल बा के पैदा कर ले बा लाख देने सांस नहीं बा कुछ नहीं बा
0: हाँ, अब दोने हो गल बा
1: जाए नहीं लड़कुआ के ओकर नाम में कुछ नहीं बा ले कोई नहीं आता के ओकर माँ बाप
0: हाँ कोई गाली कोई नहीं जाने ला तो ऐसन लड़का के ओकर फैमिली ओरिजिन वाली से बुझो लड़कुआ जानत हुई या बप मऊआ तो जानत ये रही तो हमारे लड़का है मेकअप वो आदमिया जो ओके आदोपते करता प्लेनेय ओकर नाता कुमार जो हौल हाउ पहला पहली वार से बायोलॉजी को से हाउ लाइक वाके नहीं बा कुछ
1: अच्छा
0: कुछ कुछ नहीं उके रिकोनेते नहीं बा हई में तो देख ली सर जानी अनसन कि ऊ हमर मां रखल हमर बाप रहल पहला अडॉप्शन सेंपवा में
1: कहे के सब अगर सब को के कैसे बोले रला पापी मोरालिटे हाँ। और लाख देने सा शादी कर ला तो कर लाख मा या सब कुछ देख के हाँ। तब जाके एक्सेप्ट हो लन से लाइक के आदुप्ते करे के दे के यहां पर बोला था कि आज लाइक के पता नहीं बा कर मां बाप के ह आज कोई के आदुप्ते करता तो उ परिवार से आज काल के परिवार वा आई बोली कि लाइक हमर हाँ। हम आबा आबा करे हम छोड़ के कर ली तो यानी ओकर कोनो निशाना
0: हक नहीं बा हां ये देख ला ये ऐसा एक चीज मतलब ओकर नाता जो रहल ओकर परिवार वसे अब नहीं रे को
1: अब लाइक का नहीं जान गल कि हां है हमर मां हां बोल देलक माफ कर दे अब तो के छोड़ दे रली चल कर ली तो बोले जैन रली जिस भी तौके रली तो के छोड़ के चल गई नहीं अब हम चाहते हैं कि तू हमर संगे आके रहो अब लाइक आज अपन माँ के साथ जाए खोजत है तब
0: हाँ अली ये तब का हुएला एगो लड़का इंटीग्रे हुएला उ नया फमेवा में जो ओके कुमा जे आदोप्ते कर लेबा ले तो हिया देखला और

0: जो अदोप्ते कर ले बा दे एगो नाम ओकर हौ परिवरवा के नमुआ नहीं बा बस ओके तक मजा बौदेव ने कर दे बा जय नाम दे ले बा खाली सिर्फ ई मैं ओके कुमा जे देखभाल कुछ नहीं कर ले बा ओकर कुमा जे अच्छी एगो एगो बात हुई पूछन से कोई की है तोर माँ बाप बोले नहीं जानी ला बोले अरे तोर माँ बाप जन्म दे ले बा नहीं जानी तोर माँ बाप के है माँ बापो छोड़ दे बा कैसे पैदा ही होल बा कुमजी को
1: नाम से जानी
0: ओकर नाम से जानी अब ओकर भाई में ओकर भाई एविताज में पहला के देख ले सा दोनों बगल से एविते करी हई में नहीं कैसे हिया चलाल ओकर माँ एगो आदोप सौंपलेनी खातिर देख बहुत सा मोश है भाई बहन लोग तीन कार जो आदोप सौ करेला आदोप सौ सैप करेलन सन नई आदोप सौंप मा जे है प्लेनी है सब करेला ओकर मुश्किल हो के जानने के ओकर कोसौत में जाने के कहाँ अभी देख सब प्रितार एक बार कोई आदमी बोले ला अरे तुके लड़का नहीं जाना था हवे कहाँ बा बोले नहीं एगो लड़का तुके मिला दें बोले हाँ मिला दे भैया हमके तो खुद ही कही बड़ी से परिवार तो नहीं आक्षेप दे पा लड़का मुश्किल होता बोले अरे शेल्टर में जो सिपा खश में जो हुआ तो एक बार लड़का बा बोने बा देख बे रहे सन तो हैया मवा बपुआ जुन जाके आप मजे रजिस्ट्री करी एगो लड़का के आदुपते करी तो वो तो बोली पति आली हम एगो लड़का को जता नहीं जोन कुमा जे सिपा छोटा से फोमातोही में रहल या एगो मूवे लड़का रहल अब हमके बोते तू ऐसा लड़का के हई करे के नहीं एगो एग्जाम्प ओके नहीं तो से मोगिश में देखब आदुप्सों सैप कुआ ज्यादा आदमी ई करेला में बहुत सा कम जोन आदुप्सों हई लेवेला अब हमने वो सब देख ली
1: अच्छा था आदुप्सों प्लेयरवा जोन बोलला एकर में ओकर फोसिजिया कोन चीज रहला
0: हां एकर फोसिजिया में जिस तो ओकर जाके अब मांग करी कि कमका अनमन आदुप्सों हई नियर में ओ में अभी ई में परिवारवा नहीं बा तो ओकर ससिया चौ सब नहीं ओ तो विजा कुछ नहीं बा
1: अब तक परिवार ने बा कोई ने बा ले कोई शेल्टर में बा अब जब शेल्टर से कोई ओके आदुप्ते करे खो जाता तब कोन ओकर फोसिजिया रहला
0: ओकर फोसिजिया रही जोन आदमीया जोन हई बा शेल्टर बा शेल्टर के ओ दे ओकर परमिशन और ओकर सब चीज ओकर है जोन जोन जो चीज ओकर हई में बा आके हियाँ ऊ बिलाफी दाबित करी तो हुआ बताए
1: किलापुर
0: में हाँ तो पूजे करी अनेक से करी ऊ प्लेने प्लेने में ओकर कुमा जल लैकवा के एप्लीकेशन में तस्वीर देखी सब लेक नहीं मिली सब चीज ओ तो माछिक में एगो हुई ना लग देने सांस ओ लैकवा के नहीं हो हुई था कब ऊ लैकवा जोन हो बा एक जोन आदमी दिखलारे कर ले बा ओकर नाम में तो हुई तो देख ला हियाँ जे हुआ से लैका आलो हुआ था तो ओकर त नॉर्मल माँ बाप कुछ ओके नहीं सकी दे कुछ बा पपियोए नहीं रही मैं हियाँ जोन आसोस बा ओ दे सबो के दुखी में हुआ ओ तब भाव जोन हो आदमिया ओके हई करी
1: अच्छा इतना ले बात करिए ले रहे जल आदिप शुमा की बात करते लेकिन कबो कबो सवाल चला बिला जैसे कि बोल रहा कि वो लड़का बिस्तर पर पैदा हो गल
0: हाँ।
1: कोई नहीं जाना था कोई सेवित पे लपेट के छोड़ देलक अब लेके गए लंसा लड़का के शेल्टर में डालन सर तो लड़का के ओकरो ते को लाग देने सांस चाहिए ना
0: हाँ बस जो आदमिया ओके दिखलारे कर लग अरे को बोली कि हम एगो लड़का के देखते हैं सीमा में कोई आ बाँध नहीं कर लेगा कोई कुछ ओके मजा कौन रहे हम ही लड़का के लेके लेता सिविल में जाके ओके दिखलारे कर ले बस ये ओके तब हुआ था जब जो आदमिया दिखलारे करेला लेता सिविलवा में उही लैक आदमिया के नाम उ लैकवा के मिलेला कि ई एकर माँ है या कर बाप एगो बोली के एगो है पति पत्नी शादी कर ले रवन सन या नहीं शादी नहीं कर ले रवन सन एगो को मेराज से एगो लड़का हो गल पतिया तो नहीं जाई ना बाप है पति है बोला था कुमा जय एगो दूसर में प्रिय रिस्पेक्ट से पति पति तो ओकर नहीं है तो ओके गल ओके कुमा जय खुशी हो गल अब उसे एगो लड़का होल तो आदमिया नहीं जाई कुमा जैसे बुझो शादी कर ले बा कहाँ जाई दिखलारे करे हो लैकवा के नहीं जाई
1: और के तो माँ चाहे चाहे
0: माँ जाई ना दिखलारे करे तो लग देने सांसवा में कब दिखलारे करे ला मऊआ तब वो पूछी ना लेता सिविल के ऑफिस हुआ ये कर लैका है तो वो बोली ना कि हमारे ऐसे हैं तिल सुलवा तो बोले हाई कोरे तू अनले वाला लैकवा ना तू दिखलारे करत हुए ना चला तुहरे नाम में डाल लीला सा तब ओकर नमुआ में हो जाला
1: तो यानी कि एगो लड़का जब आम उन्होंने कोई के मिले ला जैसे ला पुलिस लेके जाला फिर ओके शेल्टर में जाता तो शेल्टर में जे ओके दिखलारे जे बा औसत ऊ सके दिखलारे करे
0: हां ऊ कुमा जे है हां नहीं कभी नहीं मिले तो लोग दिखलारे करे सन कि ई लैकवा के ओकर नाम में धई दियन सन जुन लोग के मन बा अपने नमुआ नहीं देखी कुमा जे
1: हां तो ये जाने खाते कि कौन नाम देवे लन सन जे रे को लैका आज एगो शेल्टर में बा लैकवा दिखलारे नहीं बा कहे कि अभी अभी लैकवा पैदा होल बा लैकवा के सकेला अभी दो दिन तीन दिन होले लैकवा के एक दिन होल हो अब लैकवा के लेके ला पुलिस लोग जाके शेल्टर में डाल

0: लाइक वत डिक्लेयर नहीं होलबा ना
1: हां
0: तो के डिक्लेयर कर
1: दो के देखिए ते बोली ना ओके पुलिस वाले के हां जो रिस्पांसिबल है शेल्टर वाके वो ले जाए अब कुआं हुआ जाए तो पूछी ना के पर नाम ही बताएं ओके पूछी ना को नाम है तो हिया तो ओकर लेका नहीं है ना
0: को नाम दे
1: तो अब एगो नाम जो के मन होई दे के ऊ नहीं दे तो हो लेता सिविल के कुआं जे बोगा एगो सकी आज ओके बोले देख एंटेल एंटेल नाम बा कोन ची तोर मन बस वाजे के
0: अच्छा तो कोनो नाम इस्तेमाल दे लन
1: हां तो इसने डाल के कोनो नाम में पसी ऊ में लिखल बा ना
0: देखो स्नैचर से के कोई के स्नैचर से के अंदर डाले
1: नहीं सियाचे नहीं बाहिया डाली को नाम देवता को अच्छा। को नाम से बा ई आदमीया के देखला नमुआ खाली बक मजा पोता ओकर खानदान के हा ओ कोई नहीं है खाली डिक्लेयर करता ओकर
0: के एगो नाम देवेलन
1: सर एगो नाम देवेलन सर
0: सियानो नहीं रहला खाली
1: सियानो नहीं अभी तक बान में बजे नाम हर बिना के हर लड़का होई तू तो मिसेल मा हुआ एगो कुमाजे एगो नाम हर आदमी के देई
0: के राजेश रहे तो खाली राजेश राकेश रहे तो खाली राकेश
1: हां और दूसरे का सियानो नहीं रही खाली राजेश होता जिसे बोल लकु बोल ओकर नाम खाली रही और कुमा जे है दूसरा चीज नहीं बापसी नहीं बना है के इंस्टीट्यूशन के दे नमुआ नहीं रखी वो कर लेका वो कर दे इंस्टीट्यूशन को है मेगो कुमा जे नहीं सके वो कर लेका पैदा करे नाली अब वो सब है बात कर ले ली सर दे ले अब सर लेजिटिमेशन पर अडॉप्शन तीन गो आते देख ले ली सर न तो नहीं फिनी हुई अभी तारे लिए तंजे के देख अब से थोड़ा मन बोई अडॉप्ट करे के गोलाई का के तभी यहाँ देखते हैं सर लेजिटिमेशन अब एक लेजिटिमेशन पर adoption il intervient là job ego comment dire conjoint pati patni do not accepter hoelanson ego laika hai adopte kare ke jun ego laika naturel allez kay kab na ego laika naturel la tab kar ma bap shadi nahi kare la civil to ulai ko jun paida hoela ou tak ma ego laika naturel ha allez job option laika ka hoelanson job ego laika ho gal allez हम शादी कर ले हैं अब कुमा जे है हम है एगो है मैडम से नहीं डिक्लेयर कर ली ऊ लैकवा पसी ओकर ले हमार संगे ऊ आर मैडम से ऊ लैकवा होल तो लैकवा के गल ओकर माँ डिक्लेयर कर लग ओकर माँ डिक्लेयर कर लग है है लेता सिविल में कि कुम कुआ ई ओकर लैका है नहीं मिशुआ के नमुआ नहीं दिलक पस तो जाने शादी कर ले बा ओकर नमुआ दिलक ओकर माँ
0: खाली सिर्फ माँ के नाम बा
1: सिर्फ माँ के नाम बा अब का होल एगो सेतन लेपो खोल लैकवा तब हुए बा ई है बपुआ शादी जोन कर ले रल एगो बोली के बपुए के बुढ़िया मर गल जब ओकर बुढ़िया मर गल लैका सब नहीं बाबी को बोली के या हुई ते पाफे नहीं है तो हिया देखते हैं सर तो के मन हुई दूसरा शादी करे के
0: हाँ
1: तो दूसरा शादी करे के अब हौ जोन मदमुआ से लैकवा हो रहल
0: ओकर से शादी करे खोजी
1: अब ओकर से शादी होके मन हुई तो करे के तो शादी करी नहीं हो करी सदिया तो सकी कुमा जे जाके अब ऊ लैकवा जोन रखल पैदा रल ओकर से बस ओकर बुढ़िया तो रल यार शादी कर ले रल नहीं जनाई के तो नहीं गल दिखला रे करे अब ओकर कॉन्शियंस बोला था अरे तो हम जानी लई हमर लैका है हम के चाहे लोग के दिखला रे करे के अब जाए लेता सिविल में वहाँ ओकर कोरेक्शन वहाँ करी ओकर नाम में जहाँ रल ओकर माँ के है नाम में ऊ लैकवा अब बपुआ के नमुआ में डाली अब बपुआस के नाम से उलैकुआ अब जाने मौवा के नाम नहीं अब बपुआ पसी अब तक मजे डिक्लेयर करे था हमेशा कानून है जब मजे पति पत्नी रहेला कभी को लैका हुएला बपुआ के नाम आवेला अगाड़ी वो डिक्लेयर करेला कुमाजे जूनो जे डिक्लेयर कर दी तक कुमाजे देख बपुआ के नाम लेवेला तो हिया अब डिक्लेयर कर लख उलैकुआ के तब उलैकुआ ओकर नाम हुएला तो हिया देख ल लेजी चीज माशो नेचुरल रखल अब उ रिकनेक्ट हो उ लैकवा एगो लैकवा लेजिटिम ई कानून जो है कुमार जी हासिल नहीं है सिर में सब जाने के चाहेला दुनिया में हम नहीं भूला सर कौन छुई तो यहाँ देख ला ओके कुमार जो ओकर नाम है जो मिशुआ अब डिक्लेयर करता था उ लैकवा के अब ओकर बाप हो गए अब ओकर नाम मिला था ओके और कुमार जी रिकनेक्ट करे था जोन लैकवा नेचुरल रहल उ लैकवा एगो लैका है
0: अब लैकवा बड़ा हो गल होई मान ला 20-25 साल के हो गल बा तब बोसे की पप्पा पर नाम दे
1: नहीं बोले रली से ना कभी एगो अडॉप्शन सैप होएला
0: हां
1: तब हुआ एगो है रहल कि एगो सेतन लिपुक होएला कि चाहेला कुमा जे ओके एक मा जे 20 बरिस के आगे
0: हां
1: 18 ans मासे ह 2 बरिस ओके देवेला अपने से सकत के स्वा करे मैं हिया बात करत हैं सर एगो अडॉप्शन है के लेजिटिम के तो जब ले बपवा कैसे कुमा जे है सदिया नहीं रिकनेक्ट करी उलै क्वा के तो उस

0: qui comment dire hein ou même qui ou là quoi comment dire 18 ans mazé c'est yada ou galba ou qui reconnaît que le temps hein ce qui ou que l'aïka qui ou que nam de déclarer ou déclarer ça ou que procédure ka
1: अच्छा
0: पैसे देख ले सर दोनों के देख ली सर अब उकर पूछे जिया हा एक रो चाहे ला एगो लाफी दावित करे के हो मिशेवा के बस उकर से मदमुआ बा बानो कर मदमुआ के मजे तले को के नाम में बा तो मिशेवा जोन से अब उजिया था पति पत्नी नियर खुशी था अब उका कर एगो लाफी दावित करे मिशेवा मदमो एगो लाफी दावित करी कि ऑब्जेक्शन नहीं बा कि ई ओकर बाप हो ओकर नाम दे या ओके रिस्पांसिबिलिटी ओके आदुप्ति करी
1: त मदमो के चाहला पापियावा में डाले कि लइकवा ओकरे ह
0: नहीं अब बोली कि हां उ सब राखू ते करी ना हाँ। कि ई लइकवा रहल ओकर है के ओकर है औ मिशवा के तो ओकर से होल रहल कुमा जे एकरे नाम बोलन सन एगो लइका इलिजिटिम समझ जा लेजिटिमेट नहीं है मिसेल मकमा कब शादी हुएला सिविल तब न वही को नेट हुएला त नेचुरल हुएला जोन कुमा इलिजिटिम जोन लइका कुमा जे मां बाप के रिको नहीं बा त हिया दिखब मेम प्रोसीजर जोन रखल एगो अडॉप्शन सिंप और एगो अडॉप्शन प्लेनियर में अन मन उकरो करे के चाहे ला लगे देने सांस सब चीज
1: सब जितना सब बाकी चाहे ला देता है सब चाहे ला देखे
0: ओ के चाहे ला ये एगो चीज बड़ी इंपोर्टेंट है अरे बड़ी जोड़ी चीज है अब हमने देखब सर एगो आदमी
1: हाँ।
0: बहुत शक मजा मुविष्य का करेला वो आदुपते करता एगो मुविष्य एगो लड़का तो फैसिल हो जाला मैं बा हमने के आदोपशो में जहाँ एगो लड़का वो एगो मोगिश्य है मैं आदोपशो करे खोजता बाकी को मजे एगो जैसे मुझे एगो आदोपशो एगो लड़का मोगिश्य के आदोपते हुई एगो एथांजे से जाना सा बहुत देश से हमने के यहाँ मॉरिशस में आवेलन सन दिखेलन सन लड़का अरे बा क्यों मैंने लड़का हुआ के कोनो एक बान बा कोनो नहीं खुशी बा कि हुए के लड़का के आदोपते करी और इफ नहीं बा कभी परिवार में जान पहचान बा हो एतरांजेवा से
1: अच्छा
0: से वो एगो अंगले है तो एतरांजेवा से बस वो जान पहचान जाने ला हिया बा उकर एगो लड़का बा अब वो के मन बा इ लड़का के आदोपते करे के जो मुर्शियावा के लड़का बा हुआ बा हूँ अन मन लाली सु सब बहुत आज जस्ती फासिल बा एगो आदोपशो सब मजा है के बा करे के तमी सिलवा हिया एगो इतरांजे आवा ता आदोपते करे एगो लड़का जो मोशियां के वो कर पोशे जिया कहा तो हमने के कानून में लिखल अचिक 346 कोड सिविल लिखल बा कौन कौन चीज चाहेला हर आदमी एगो इतरांजे बा उ लिब बा ओके कानून देवेला उ हक हुआ ओके दुआ हुआ आदोपते करे के
1: हिया
0: एगो लड़का जो ने गोलाइका मुगशिया के बा आलो आप देखा से आदोपशों कब एगो लड़का मुगशिया के है वो एतरांजे ओके कुमा जे आदोपते करता तो एकर एगो दूसर सीमा बा हिया ओके चाहे ला एप्लीकेशन करे के नेशनल आदोपशन काउंसिल के जो जिरे करेला मिनिस्टर दे एगालिते दे जो ए दे बियनेट दे ला फामी ऊमा कुमा जे ऐसन लड़का के है चीजवा में ओकर पोसे जेवा में तू करबा ऊ लड़का जोन अबा नहीं कि कुमा जे अपने मने ऊ एतरांजेवा आल हिया देख के एगो लड़का के बोले कुमा जे कोरेक बा एक है कुमा जे स्वाजरे कर ले बा मैं पोसे जिया भी हिया देखते हैं सर तब ऊ आल बा ऊ लड़का के ओके चल तो हर कुमा जे हमने के बा आदोपशन काउंसिल ऊ आके कुमा जिया देखी इके स्वामी ओकर पोषे जिया ए दे करी ऊ अदमिया के
1: हाँ जो पर तो चाहला ना मुगालिते चाहला ओकर बैकग्राउंड जैसे कि जो अदमिया आदुपते करता कहाँ लेके जाता जैसे तलेवा बुढ़ला के एगो लड़का के लेके आदुपते करके गैलन जा फिर ओकर बाद में ओकर जो ओगान हो बेच देवेलन जा कोई की कैसे बोझला कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बोल जला ये सब प्रॉब्लम हो जाला तो चाहला ओकर देखे कि ओकर बैकग्राउंड कैसे बा कैसन इंसान बा काहे आदुपते करता वजह भी चाहना जाने की कि काहे आदुपते करता
0: अरे पहला चीज दे देगा एगो एग्जामी रहत वकील के तो तू वकील में पासे हो जाए एगो रेजिमे में सब जोन रखल बोले के नहीं ये बतावल जला
1: हाँ।
0: कि एगो आदमी को मजा बड़ी ध्यान से सुनता
1: हाँ।
0: ध्यान से सुनता जानता का बोलता ओकर दिमाग में जाता तो ऐसे तो सब एग्जामे है जैसे जो एगो प्रोफेसर के स्पीके करेला लड़का जे रिमस से रमस लग तो पासे होबे करी तो हम देख ली तू एगो नेचुरल में छोटा में सब चीज बोल दिला अरे ऊ लड़का के अब जो आलबा आदमिया इतरांजेवा हिया ओके आलबा ऊ

देखवा कि कुमा जो कि मन आदुप्ते करे के तो ओके चाहेला रिसीवर होई के ओकर हई में हुआ जहां देशवा में आरबा सिबो सोरंग लेते रोए के बोल एग्जांपल लेला सर ओ लइकवा के हुआ ओके मन बा कुमा जे हिया के लइकवा ओके चाहेला सब डिमांड करे के हुआ सब चीज अप्रूव करे के

0: सबमिट करके कि देखो ऐते लैते लड़का के हम देख ले हैं, ऐते लैते लड़का के अब हम कुमा जे आदुप्ति कर ले हैं, आदुप्ति करे खोज हैं। तो एन आसे उ अपन लंकित करी, उ देखी कि ये आदमिया जोन आल बा इसके कोरे के बा उ आदमिया ये लड़का जोनो के मन बा आदुप्ति करे के आदुप्ति करे उ लोग एगो लंकित करेला।
1: अच्छा
0: नहीं तो इसने नहीं सकिन उ लोग के जिम्मेवारी है जेके कुमका लैका के हियाँ दे के एगो कुमा जो आदमी अली माँ बापा जोन के लैका से बुझो के मन बा हई करे के आदुप्ते करे के तो वो तो नहीं है वो के जानत हुई। दूसरा से बुझो खश के लैका बा शेल्टर के प्रीता रवि देखब समिनिस्त हई दे दुआई दे ला फार्म का करे को जता नुवो लालुआ आनी अभी जे वक्त मिली तो इमें स्प्रिक करब सर तो हियाँ देख ला वो का करी हुआ से अब वो के देख हई करी ओकर देखभाल करी कौन काली ते आदमी है नहीं कि कुमा जय नासे तो ऐसा नहीं है ना कि एगो आदमी मांगलक एगो अप्लीकेशन ओके दे देलक अब जैसे बोल तारे को ट्रैफिक दे मैं करत हुई या कौन सी चीज करत हुई तो ऐसा काली ते आदमी बहुत सा ऐसा ऐसा का आदमी आवेला मांगेला देखेला मैं उन लोग के रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोग के जिम्मेवारी है देखे कि वो आदमी यहाँ कुमा जय कुरिक बा कि नहीं बा ओकर दोषिये आदमिया के जो मांग करता ओकर दोषी एच जी करी और देखी ओकर हकैत कोरेग बा कि नहीं बा ओकर इन्फॉर्मेशन मांगी साई जोन बा पपीवा में सबमिट कर ले बा है एन आर सी के उ लोग लंकित कर ले बा बोलियन सर नहीं हमने ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं सर मैं तो के चाहेला ज्यादा इन्फॉर्मेशन जैसे हमने बोल सा इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंटे तो के देखे के चाहेला ये आदुप्ते आदुप्शन में बस बहुत चीज जो बोले हुए बहुत चीज कमती भाई में क्या फासिल नहीं बोला एक आके मजे आके आके हमने के देश में ओके आदुप्ते करे के तो हियाँ बाय एना से ना वो अपन ये चीजें करी वो कर छानबीन करी देखी कि एगो लंकित करी ये वो ये चीजें करी दो सेवा कि ये आदमिया एगो राइट पर्सन है कि नहीं मजे राइट पर्सन है बस वहाँ से अभी देखिए क्या करी वहाँ भी ओके पूछ पाछ करी ना तो कोई सक भी वहाँ से आई यहाँ खाली होकर दिख लग को एक बाकी नहीं और वहाँ तो माफ करिए एगो सबसे मोवा नहीं बोलब सर मैं एगो मुवे आदमी है समझ लेना तो हियाँ कबूलो के हई करेला तब ओकर कोसे ही बैठेला एना से के उन लोग के मामू सब बैठ के उन लोग पोनों से करेला इसकी कुमा जे एगो आदमिया सकल जाइए कि लड़कुआ दे कि नहीं एगो दे ले लीगल भी बा कि ओके दे के चाहना श्वासों जू बा कि कुमा जो उमें उ दोषेवा है देखे करी तब उ लोग का करी मांग करी कि देखो शिवो जो दोषी सब पारे होल बा तो उ लोग मांग करी जीज के अब उ लोग एक बस जीज देवे ला नहीं अपने को उठा के लड़कुआ के या सीता है कि वो लेके जाए अब आज एगो प्लान डलबा लाकुर में अब तू लाकुर से मांग करत हो तो लाकुर हुआ ओके मजे जिजुआ सुनी जिजुआ सुनी जिजुआ देखी उद्यमान जोन मांगले बा ओकर मांग जोन कर ले बा ओकर प्लेतवा में ओकर दुसेवा के विषय में ऐसकी ई बा एगो मजे कोरेक बा कि नहीं बा जीज जब देखी सब ओकर लंकित सब ओकर मजे चीज बा फावोगा बा उ आदमिया के है के केसवा में तब उ सकी मांग एगो है करे रेफरे करी कुमा जे कि इ लैकवा के लैतेरे माफ करिया लैतेरे लैकवा में हाँ कुरिक बा सकल जाई ए के कुमा जे इ लैकवा जो जो आदमिया मांग करता ए ट्रांसे हुआ के उ लैकवा के दे के अडॉप्शन करे
1: अब लैकवा आज अडॉप्टे हो गल लैकवा मान ला लोंग लेतिया चल गल तो फिर अगर बाद में कोई रहेला देखेला कि वे ये करेला कि लैकवा के निमन से देखत बन जा कि आदुप्ते हो गल फिनी हो गल
0: देखेला एगो स्वीवी कम है ये खूब बोले एगो जोली चीज बोले है आली तो एगो आदमिया लेके चल गल ना
1: हाँ
0: ओकर स्वीवी के करेला
1: हाँ वही तो पूछा था कि जैसे बोला एन आस से बोला ना एगो
0: हाँ मैं हुआ भी इंस्टीट्यूशन बा नहीं हियाँ एन आसे मुरिस के है नेशनल एडॉप्शन काउंसिल के विषय आदमिया वो लोग तो देख लग ये चीजें कर लग सिवा सकल जायो के मिले अब हुआ से ओके लैकवा के लेके चल गल
1: अब हुआ पर लैकवा अब तो माँ सोचला माँ बाप के पास पैसा नहीं बा नहीं सकत हुआ जाए तभी तो लैकवा के आदुप्ते में दे लन जा अब हो सके लगे लैका जोन बा वो लैकवा जोन बा कोई नहीं बा ओकर
0: हाँ
1: अब लैकवा हुआ गल बा लैकवा के कौन चीज होल बा इसकी एगो एगो एगो रिपोर्ट रहेला एगो स्वीवी रहेला
0: जानेला
1: कौन सी होवेला
0: फासिल नहीं है ऐसा काम में एगो लड़का हुआ जे चल गल बात एगो बा हूँ लोग के इंस्टीट्यूशन जाने लनसन की ऐते लड़का
1: दोते
0: हो के अलबा एना से जोन हुआ के कौन से नहीं बा जिकुमा जे है एगो है किसे नाम

0: बाएं को कुमार जो कम्युनिकेशन दोनों बगल से कैसे स्वीवी हुए ला मैं कैसे जानब सहिया के आदमी यहाँ ऐसी लिखता हुआ कि नहीं लिखता सब कोई तेरा नहीं नहीं कुमार जैसे सोचे ला ना कि अरे वो दूसरे रह जाए तेरे अब हम उठा बो दूसरे हुआ उधर बोली हो गल ना हाई आदर्श हुआ था लेके चल गल नहीं अब वो कैसे रही कैसे हुआ था अब हुआ के आदमी हाँ मैं एगो चीज हिया लोग कोट ले या नहीं ले कोट ले या नहीं ले हई लई को जोन मऊसवा आदुपते होल भाई गो बोली के मैं हुआ के देश में बा हूँ बा इंस्टीट्यूशन जो लयिका लोग के इरिस्पेक्टिव उ लयिकुआ मोरिशियन है अफ्रीकन है या कहूँ के है उ लयिकुआ के ओकर देखभाल करे के उ स्वीवी करे लंसन हमरे तो दोनों लड़का मातेनल में हुआ रहलन सन कब हम रही तो देखबो हुआ कब मातेनल में जालन सन नई बा कि नई बा रिजिस बा कि नई बा दुखतेर बा कि देखा तो लड़का के कौन खाली थे हुआ जी तो खैश में कैसे बा सब आर जे एगो लड़का नई लिमन से कुमा जो के देखभाल कर देन सन तो कोई कंप्लेंट करी तो देखभाल क्यों ले वेलन सन वो आदमिया से देख लही यहाँ इरिस्पेक्टिव वो आदमिया के ओकर खुले ओकर रास या कहाँ से आल बा एगो अपफो में होई कि वो एगो सिटुआइन अंगले
1: हाँ
0: अब तो ओके अनमन ओके कोंट ले हर लड़का के जैसे लेवल जाए वहाँ के देशवा के कानून बा अप्लीके करी यही लड़का कोनो डिफरेंस नहीं रही कि एगो लड़का अडॉप्शन है और ये वहाँ के लड़का एगो लड़का अंग्रेज देख ल एगो एगो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है आली वक्त मिली तो हम जो हमी
1: तीन मिनट बा
0: आली देख तीन मिनट के लिए के अभी हमने सोचा नहीं सर अभी हमने कर आती सर कैसे एगो आदोपशों एगो लयिका कुमार जी है आदोपते कर एगो एगो लयिका इतरांसी मोरिश के देख ले इतरांसी वहाँ के ही यहाँ अलबा मोरिशियन के लयिका लेके अब तू मोरिशियन वह तुहरा मन बा हुआ है एगो लयिका हुआ के कुमार जी आदोपते करे के
1: कुछ चाहना करे के
0: आली पहला चीज बहुत सकेस बा नहीं मोरिशस में मैं एगो एग्जाम्पल दे ला जना बहुत सा आदमी बा एगो बोली के सिर्फ अंग्ले है एगो मोरिशियन है मोरिशियन है शादी करलक एगो अंग्लेज से अब अंग्लेज से कुमा जो हुआ एगो अंग्लेज से नहीं एगो मोरिशियन शादी करलक हुआ कुमा जो एगो अंग्लेज से अंग्ले वा से एगो लड़का हो अरे माँ बाप के है मोरिशियवा और है ना
1: अंग्लेवा
0: अब का होल उ लोग में कुमार जी एगो
1: खटपट हो गल
0: हाँ एगो प्रॉब्लम हो गल
1: अब लेकवा मोरिस आई कि लेकवा हो रही
0: आई का आर अब हो गल मिशेवा से बोझू यहाँ आदोपते करके रहे द बोली हा देख अब से उ पितार एगो कब आप से जीवोश में का हुए ला अब यहाँ देखा था इसा कि हुआ के मिशेवा जे कर से शादी कर ले रखल मर गल अब कब उ हुआ कुमार अब मर गल बा त एगो लड़का छोड़ के हुआ छोड़ के चल गल बा अंगले तेरवा में बहु लड़कवा बस हुआ तो अगर बाप संगे रहल मौवा तो हिया चला रहल ते अब बपुआ हुआ तो बा अब हुआ तो मर गल बपुआ के ओकर बाल देखी ओकरे के बा हुआ बा इंस्टीट्यूशन में हिया ओकर मौवा जोन से लैकवा रहल उ घतूने हो गल हिया अब ओके मन बा
1: उ लैकवा के
0: बुलाए के अब खुशी होई तो जहाँ लैकवा बा ओकर लाग देने संसवा में हुई ना कि मौवा के नाम हुई हुआ सके अपन दिमस करे जाके कि बोली देखो हम मिशुआ रहनी हते लेके लैकवा लेके रगल अब हमर लैका के भम के चाहे हाँ तो करो पोसे जे अनवन जाए ओके लाकू जाए आज मुको सीएस छोड़ जाए जा सर दूसरा वाला आम सर तो राखू ते करके जब सर ये ज्यादा
1: हाँ अगले हफ्ते जो बच गलवाओ के पूरा करके एक दूसरा विषय में से कब से बात करे
0: हाँ,
1: लेकिन बहुत बड़ा अवधि
0: आई ये काकर बना ये पुस्तक में देखबा तो इसने बा अरे कैसे शादी और जीवोस बड़ा लंबा है देखबा
1: एक मिनट बा बोले थे जैसे बोले कुछ कुछ रही कंप्लीट करके तो सब करे
0: हमने देखा था ऐसा ये बड़ी इंपोर्टेंट चीज है हमने देखा था ऐसा गवर्नमेंट आना था बहुत सा लालुआ जो अभी आमादे करता ये आदोपियों के विषय के लयिका के सही में कुमार जी कौन कैसे फैसिलिटे करी अनसन एगो आदोपशों करे के कौन कौन ओकर स्वीवी करे के चाहे ला इमें में दूसरा हला हमने आप सर तो हमने देखा सर लिसिटेशन या सेल बाय लेवी
1: अच्छा
0: एगो कभी को घर एगो आदमी नहीं सकल पे ये करे कैसे

0: उके कुमाजे आके है है मे कुमाजे है लाभार में जाइए गो जमीन लाभार हिंदे सेल बाइली भी देखब स कैसे हुआ आल जाला हर जीजी के है वेला एगो लाभार कैसे को घर जहाँ बेचाला कैसे पूछे करे लंसन कैसे कुमाजे बेचाला सब उकर दिता उकर पोसे जी सब अनब स
1: तैन की हम के जन अगले हफ्ते के जन विषय बा उ सेल बाइली भी करब
0: सेल बाइली भी
1: चला कपिल देवरा गुनंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के हम के कार्यक्रम खातिर बहुत कुछ जाने के मिलल जितना कोई अतृप्ति करे खोजत लई के जितना कोई अपन लड़का के या देवी खोजत आदित्य करे खोजत के बहुत कुछ आज जाने के मिलल बा और पोसेजिया भी जनलन जा तो हमने के आज के जो कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुआ था अगले हफ्ते थोड़ा से फिर मिलब जा तो प्रिय श्रोताओं हम अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे आज की चर्चा अब हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सेल बाय लेवी जो होगा ये हमारे अगले हफ्ते का विषय होगा आप लोगों ने बड़े प्यार से हमारे इस कार्यक्रम को सुना बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को शुभ दिन नमस्ते

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: घड़ी मिला लीजिए, समय शाम के ठीक 4 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं संक्षिप्त समाचारों के साथ।

0: होगी। इस नई प्रणाली का मकसद पार्किंग में गाड़ियों की आवाजाही को ज्यादा आसान बनाना है और साथ में पार्किंग पर सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। पर्यावरण प्रिय पहल के तौर पर मुशर्रफ कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक माध्यम अपना रहा है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को अपनाते हुए सरकार सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा कारगर बनाना चाहती है। कर्रुजिल ट्रांसपोर्ट ने एलियस परियोजना की लॉन्चिंग की। इसके तहत 5 सालों के दौरान डीजल से चलने वाली 20 बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा और ये बसें 5 मेगावाट सौर्य फोटोवोल्टाइक पैनल से चार्ज होंगी। मुशर्रफ में कुल 116 बसें इलेक्ट्रिक हैं। शिक्षा मंत्रालय इतला करता है कि प्राइमरी स्कूल असेसमेंट सर्टिफिकेट पिसाक 2026 के इम्तहानों की तारीख तय की गई है। 22 अक्टूबर को फ्रांसीसी जबान और साइंस के पर्चे होंगे। शुक्रवार 23 अक्टूबर को अंग्रेजी की परीक्षा निर्धारित है। सोमवार 26 अक्टूबर को हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, पूर्वी भाषाएं और अरबी जबान और रियाजी यानी मैथ्स का इम्तहान जुमेरात 27 अक्टूबर के लिए तय है। विदेश में उत्तराखंड भारत में एक सुरंग के ढह जाने से 7 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग जख्मी बताए जाते हैं, बचाव कार्रवाई की जा रही है। उधर पूर्वी चीन के शिजियांग राज्य में भूस्खलन पेश आया, 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 3 लोग घायल हैं तथा अन्य 3 लोग गुमशुदा है। चीन के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जैज डीजे नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Up center, 95.5. North, south, 95.6. East, west, 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
2: आपकी चिट्ठी मिली की चिट्ठी मिली इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल शाम के 4:09 हो चुके हैं। मैं हूँ रत्ना, आ पहुंची हूँ आपकी चिट्ठी कार्यक्रम में, आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में, जहां पर आपके संदेशों को हम पढ़ते हैं, आपके भेजे गए मैसेजेस को, आपके फ़ोन कॉल से द्वारा कही गई आपकी जो लाइफ की कहानियां हैं उसे हम बस बयां करते हैं, आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो बस जहां कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमें बताइए 4028070 पर, और बेशक हमारा साथ दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मैसेजेस को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 5250-6200 नंबर है रेडियो मनोरंजन का। और आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में एक लाजवाब गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया है। आशा करते हैं इस वक्त आप बिल्कुल काम से निकल चुके होंगे, रास्ते में होंगे, घर की ओर बढ़ रहे होंगे, तो ट्यून इन कीजिए रेडियो मनोरंजन का ये प्रसारण। बेहतरीन से बेहतरीन गानों का सिलेक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं और कुछ ऐसी लाजवाब बातें जो आप के द्वारा भेजी गई हैं, कुछ ऐसी चिट्ठियाँ, कुछ ऐसे मैसेजेस जो आप भेजते हैं और हम उन्हें पढ़कर शामिल करते हैं हमारे आज के इस शो में। वैसे आपकी जो चिट्ठियां होती है बहुत ही लाजवाब, कुछ कहानियां तो एकदम हटकर, और आज की एक ऐसी ही कहानी हमारे साथ किसी ने शेयर की है। भाई हम पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा धीरे, क्योंकि आपके जो अक्षर हैं बिल्कुल आपने लिख कर फोटो निकाल कर भेजा हुआ है ये ख़त, और हम कोशिश करेंगे कि इस ख़त को हम पढ़ कर आप तक पहुँचाएँ ज़रूर। आपने भी हमारे इस कार्यक्रम की बड़ी ही सराहना की है और आज आपके ही घर में जो घटना

हुई उस पर आपने एक छोटा सा खत लिखा है, छोटी सी कहानी जो हमारे साथ आपने शेयर की है। और आप लिखते हैं कि एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बहुत ही अशुभ माना जाता था, बहुत ही बुरा माना जाता था। और परंतु आज कल की जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, और आज कल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। ओके, वही विचार ठीक समझा जाता है और जिससे काम चले। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि काम चलने के लिए जैसी परिस्थिति होती है हमें भी उसी तरह से परिवर्तन को अपनाना पड़ता है। और आप लिखते हैं कि पिछले दिनों हमारे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे और उन्हें घर से निकालने के बहुत तरीके हमने बहुत सारे प्रयत्न अपनाए, पर हमारी सभी कोशिशें नाकाम रहीं। आटे और अनाज में वे इस तरह घुस जाते थे कि हम कुछ नहीं कर पाते थे, और हर एक चीज़ को वे हर थैलियों को मुंह डालकर फाड़ते थे, और सभी ओर अनाज बिखरा हुआ हमें सुबह में मिलता था, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक था। क्योंकि मुश्किल के दौर में, आज के ज़माने में हम समझते हैं कि कितना मुश्किल से एक इंसान कमा कर लाता है, और घर का जो आटा राशन है अगर वो चूहों के द्वारा ख़राब हो जाए तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। और ये उपाय कुछ दिनों तक, आपने कहा कि आपने बहुत सारे तकनीक को अपनाया चूहों को पकड़ने के लिए, पर ये बस कुछ दिनों के लिए काम करता, फिर बाद में फिर से चूहों का जो कहर था वो बहुत ही बुरी तरह से बढ़ने लगा था। परंतु आप लिखते हैं कि यहाँ पर ओके, आपने लिखा है कि इस समस्या से बचने के लिए किसी ने हमें परामर्श दिया कि आप घर में बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते। ओके, और इस प्रस्ताव पर किसी को भाई कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि चूहों का जो कहर था वो पूरी तरह से बढ़ चुका था। इसीलिए उन्होंने हमने थोड़े दिनों पहले ही एक बिल्ली लाई, और बिल्ली के आते ही सच में सभी लोग उसकी बड़ी ही खातिर करने लगे, क्योंकि बिल्ली घर में आते ही बच्चों ने उसे दूध पिलाना शुरू किया, कभी दूध कभी भात खिलाते, रोटी खिलाते। और बिल्ली के आते ही हमारे घर में चूहों का सफाया शुरू होने लगा, चूहों का कहीं पर दिखना, नामो निशान दिखना बंद हो गया। ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी, और बिल्ली हमारे घर का एक हिस्सा बनने तो लगी, पर हमें बिल्ली से बड़ी चिढ़। बिल्ली प्रायः सभी लोगों के प्लेट में जाकर जूठन खा लेती, इसीलिए हमें इसका कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता था, कुछ ज़्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। पर कुछ महीने से ये सिलसिला कुछ इस कदर से चलने लगा कि जो बिल्ली है वो हमें बड़ा ही तंग करने लगी, जहाँ देखो वहाँ मुंह डालती और खाना खा लेती, और इसी कारण हमारे लिए ये परेशानी बढ़ गई। तब जाकर हमें समझ में आया कि जहाँ चूहों का कहर ख़त्म हो चुका था, वहाँ अब बिल्ली का कहर बढ़ने लगा। और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि इंसान कितना जल्दी किसी चीज से परेशान हो जाता है। भाई, आपकी ये जिंदगी की कहानी थी या एक मोरल, ये तो मुझे नहीं पता है, पर आपका ये जो लास्ट वाला पंचिंग लाइन सेंटेंस था ना, कि सच में इंसान किसी समय, कुछ समय के बाद किसी चीज़ से किस कदर चिढ़ जाता है, क्या तुक्का मारा है बॉस। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम इंसानों में ये फितरत ऊपर वाले ने दी है कि कुछ समय हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, पर वही चीज़ें कुछ समय के बाद हमें बड़ा ही परेशान करती हैं, बड़ा ही तंग कर देती है, और इसी कारण फिर हम किसी और नई चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। एनीवेज, अगर ये जिंदगी की कहानी के साथ आपने अपने जिंदगी को जोड़ा है तो हम कहेंगे लाजवाब, आपने इस कहानी का मोरल हमें समझाया है, क्योंकि मैं बिल्कुल
आपकी

कही गई बात से सहमत हूँ। आपकी चिट्ठियों के लिए थैंक यू सो मच। आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम जारी है अप टिल 5 o'clock, जी हाँ 5 बजे तक जारी है। और इस वक्त 4:16 और अगर ड्राइव कर रहे हैं सो बी वेरी कॉशियस, बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड्स एंड एन्जॉय द बेस्ट म्यूजिक हमारे साथ।

सरप्राइजेस देंगी ये कोई नहीं जानता। और कभी खुशी कभी गम यूं ही नहीं कहा गया। जिंदगी में कई बार कई लम्हे ऐसे होते हैं जहां पर कई बार ढेर सारे गम बहुत कम खुशियां होती हैं, और किसी के अगर दामन में खुशियां भरपूर चली आए तो इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। चलिए यहाँ पर हमारे एक जो श्रोता हैं उन्होंने अपने जीवन की इस खुशी को हमारे साथ शेयर किया है जो बहुत ही बड़ी बात है। और सच में आपकी खुशी में आपके गम में हम हमेशा शामिल होने की कोशिश करते हैं, आपका साथ देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथ जुड़े एक ऐसे श्रोता जिन्होंने ये बात शेयर की कि कितने सालों के बाद आज उनका इकलौता बेटा वापस आने के लिए तैयार हो चुका है, जहाँ वो अपनी बहू के साथ अपने पोते के साथ घर से अलग हुआ था, आज उसने अपने पिता को फोन करके ये कहा कि बस अब वो सोच रहा है कि वो वापस आ जाए। इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती माता पिता के लिए। और भाई कहते हैं ना, कि भाई असल से ज्यादा ब्याज प्यारा लगता है। नाती पोते जो होते हैं कहीं ना कहीं वो हमारा बीता हुआ कल हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। बचपन की वो यादें जहां पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए समय नहीं दे पाए थे, वो समय अपने नाती पोतों को देखकर वो उसी खुशी के साथ उसी प्यार भरी गुदगुदी के साथ उस समय को जीते हैं, उस पल को बिल्कुल 100% जीने की कोशिश करते हैं। तो आपने इस खुशी के मौके को हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ऊपर वाले से हम यही प्रार्थना करेंगे कि इन खुशियों को कभी किसी की नज़र ना लगे। और दिल से बस यही दुआ, दिल से यही प्रार्थना आपके लिए करते हैं।

0: यहाँ पर प्रेमा राजीव के साथ घर की ओर ड्राइव करते हुए निकल पड़े हैं. So hope you're having a beautiful time. और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, so just be very very very careful. And आज के इस कार्यक्रम में हम भी आपका साथ दे रहे हैं शाम के 5 बजे तक.
1: कभी खुशी कभी गम.
2: Continuous music. RM3.
0: यहाँ पर सुदेवी जी भी मौका से साथ दे रही हैं. सो होप यू विल हैव अ ब्यूटीफुल टाइम हमारे बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक के साथ. और यहाँ पर बिल्कुल शाम के 4:31.

की चिट्ठियों का ही सहारा लेते हैं कई बार प्यार की बातें कहने के लिए। कई बार हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसे घटनाएं घट गई हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, किसी से कुछ ना कुछ शेयर करना चाहते हैं। सो अगेन, ऐसी चिट्ठियों से ही हम अपने दिल को बहला लेते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे ही ख़त किसी के आए हैं जिसको हम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं। और आज की इस अगली चिट्ठी को हम पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर आपने लिखा है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव रहा है और मैंने अब तक के जीवन में सबसे बड़े अनुभव को समझा है, पर ये अनुभव बहुत ही कड़वे रहे हैं। और अनुभव ये प्राप्त किया है कि अगर कोई मनुष्य, कोई इंसान धनवान है, पैसे वाला है, लेकिन उसमें कोई गुण ना हो, जी हाँ आपने लिखा है उसमें कोई गुण नहीं, तो भी वो हमारे समाज के लिए आदरणीय एवं पूजनीय हो जाता है, हर कोई उसका मित्र बनना चाहता है। वहीं अगर कोई इंसान कितनी भी चरित्रवान हो, ज्ञानी हो, अध्ययनशील हो, ईमानदार हो, सत्यवादी हो, परिश्रमी हो, सेवाभावी हो, लेकिन उसके पास धन ना हो तो उसके ये सभी गुण व्यर्थ समझे जाते हैं। उसका कोई हितैषी नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, करीबी लोग ही उस पर ताने कसते हैं और उसे हतोत्साहित करार दे देते हैं और बिल्कुल उनको बिल्कुल अकेला छोड़ा जाता है। समाज आपके गुणों को तभी कभी वो कद्र नहीं करता जब आपका बटुआ रुपयों से भरा हो, तो बिल्कुल आपकी गिनती की जाती है, आपको समझा जाता है। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में आप हमारा साथ दे रहे हैं तो आपको हम कहेंगे थैंक यू सो मच, क्योंकि ये भी एक तरह का ख़त आपने हमारे इस कार्यक्रम में शामिल किया। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहेंगे। और बिल्कुल जीवन में आज का समय ऐसा ही हो चुका है, अब इस पर हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि मैं समझती हूँ एक ऐसी समस्या से हर कोई गुजर रहा है। तो चलिए प्यार भरे गीतों को सुनते हैं, दिल के बोझ को हल्का करते हैं और कई बार ऐसे ही चिट्ठियों के माध्यम से, जहाँ पर बेनाम चिट्ठियों के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुँचाने की बिल्कुल पहल कर सकते हैं।

वैसे आपको बताते चले, कल 15 अगस्त है और कल भारत का स्वतंत्रता दिवस। और मॉरिशस में कई ऐसे भारतवासी हैं जो बसे हुए हैं, और देखा जाए तो हमारे जो पूर्वज आए थे वे भी भारत से ही थे। चलिए, यहाँ पर सरिता जी काठमांडू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं अभी इस वक्त खाना पकाते हुए हमारे इस शो को एंजॉय कर रही हैं और हमें इनवाइट कर रही हैं खाना खाने पर। अरे आप तो पास होते तो सच में बिना सोचे हम तो धमक पड़ते आपके यहाँ। थैंक यू सो मच फॉर आपने इतने दिल से हमें इन्वाइट किया है, सो गुड, सो नाइस ऑफ यू। और यहाँ पर श्यामा जी भी बहुत ही प्यार से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, थैंक यू सो मच। वे भी बहुत ही शौक रखती है पालतू जानवरों को लेकर, और आज की जो कहानी, आज की जो पहली चिट्ठी हमने पढ़ी उनको बेहद पसंद आई। और आज के इस कार्यक्रम में, बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे इस आखिरी मैसेज के साथ। और आप हमारे इस शो को बहुत ही पसंद करती हैं, आपने भी कहा है आपका नाम हम ना जोड़ें, वैसे आपने ये लिखा है कि आप भारत से हैं और बिल्कुल अपने भारत को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हैं, खासकर कल के दिन जब हर भारतवासी के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन माना गया है स्वतंत्रता का ये दिवस। और 1947 में जब आज़ादी मिली थी भारत को, और आज इतने सालों के बाद भी इस दिन को लेकर, खासकर वो भारतवासी जो भारत से बाहर बसे हुए हैं, उनको ये दिन बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक दिल में अपने देश के प्रति वो जो प्रेम है, वो जो भावना है, वो जो देशभक्ति है, वो छलक पड़ती है। और आज के इस प्रोग्राम को भी कुछ ऐसे ही खास गीत के साथ हम जोड़ेंगे। वैसे आप सभी भारतवासियों को विश करना चाहती हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम को हम भी कुछ लाजवाब शब्दों के साथ ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि चाहे आप अपनी मातृभूमि से दूर हो जाएं, पर मातृभूमि के प्रति का जो, आपके मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, जो सद्भावना है, जो मन में वो प्यार है, जो इज्जत है अपने देश के प्रति, कम से कम उस ख़ास दिन के लिए आप उस दिन को अपने देश के लिए समर्पित करें। और बेशक आप जिस भूमि से हैं उसके प्रति कृतज्ञता बिल्कुल हमें प्रकट करनी चाहिए, और साथ ही साथ जहाँ पर आप अपना कर्म करते हैं, जहाँ पर आपकी कर्म भूमि है, जहाँ पर आप बसे हैं, भले आप अपनी मातृभूमि पर नहीं पर देश से दूर हैं, उस भूमि को भी आप वंदन करें, क्योंकि वही भूमि के कारण आज आप प्रगति कर पाए हैं, आगे बढ़ पाए हैं। आपको उस भूमि के कारण, उस देश के कारण, क्योंकि आप उस देश की आबोहवा में सांस ले रहे हैं, तो उस देश के प्रति भी आप कृतज्ञता प्रकट करें। और मातृभूमि जो हमारी, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि संरक्षणी, जहाँ पर हम कदम रखते हैं, जहाँ पर हम सांस लेते हैं, जहाँ पर हम अपना कर्म करते हैं, ये भूमि के लिए भी हम उतना ही मान, उतना ही सम्मान महसूस करें। और जितने भी भारतवासी यहाँ पर बसे हुए हैं, आप सभी को कल के दिन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को इस अंतिम गीत के साथ हम जोड़ेंगे। आशा

करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और बेशक 5 बजे हम जुड़ेंगे कलाकार के बाद कार्यक्रम में और आपको बताते चले कि कलाकार के बाद कार्यक्रम आज हमारी ओर से एक बार फिर हमें मौका मिला है आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होने के लिए कलाकार के बाद कार्यक्रम को लेकर। तो कहीं मत जाइएगा, हम देंगे साथ आपका शाम के 6 बजे तक।

घड़ी मिला ला जा शाम के अभी 5 बजकर बाटे और अभी से लेके शाम के 6 बजे ले कल लाकर के बात करब जा। और आज के कार्यक्रम में हम सब कोई के जना देवत है आज कोनो कलाकार हमनी के स्टूडियो में नए आल होवन, पर तबो हम बात करब एगो ऐसन महारथी के विषय में। एक नए दूगो नए ऐसे हमनी के बहुत महारथी हवन मोरिस में, पर सबसे पहला हमनी के प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कर लजा। हम हई रत्ना और आप सब कोई के सेवा में हाजिर हो गल हई रेडियो मनोरंजन के लहरों पर। तो चला आशा करब जा कि आप सब कोई हमनी के बहुते प्यार से साथ देबा और जे तोहर मन में कोनो ऐसन अनुभव ह कोनो ऐसन विचार रही तो जरूर हमनी के तू साथ देवे सकब। 4028070 हमनी के नंबर बा रेडियो मनोरंजन के। और जाने ल 12 तारीख के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनावल गल और हमनी के भोजपुरी के जब हम बात करत हैं तो हमनी के देश में ऐसन बहुत युवा कलाकार हवन, बहुत ऐसन संगीतकार हवन जे संगीत के प्रति बहुते रुचि रखेलन सब। और इतना ही नहीं, आज हमनी के देश के प्रगति में हमनी के जो नव युवक हवन उन सब कोई के भी बहुत बड़ा हाथ है। सच्चा मायना में जितना हमनी के महारथी कलाकार रहलन और जे प्रगति खातिर जे हमनी के देश के आगे बढ़ावे में, संस्कृति के आगे बढ़ावे में अपन बहुत बड़ा योगदान देलन और हये योगदान के आगे बढ़ावे में हमनी के जितना युवा कलाकार हवन बहुत मेहनत करता और उनकर जुन सहयोग है उस सराहनीय है। तो चला एगो युवा कलाकार के आवाज में रखल आज के है पहला गीत और ई जाने ल है गीत वी भोजपुरी भाषा में गावल गल बा। और इतना ही नहीं है, गीत के तनी मॉडर्न म्यूजिक के संगे वो भोजपुरी भाषा के भी है गीत में शामिल कर ले हवन। तो चला है गीत के साथ करब जा शुरुआत और जाने ला है गीत 2022 के बरिस में है गीत आल रहल बेस्ट भोजपुरी गीत में। आशीष रामफल के आवाज में रखल है गीत, रूपल रक्तू संगे गावल गल रहल और कमरिया है गीत के तू जाने ला बहुत बहुत प्रशंसा मिलल रहल। तो चला है ये गीत के साथ करब जाए गो बढ़िया शुरुआत। जाने ला है गीतवा तनी जिसको जिसको नियर है बहुत जोली गीत है ये खातिर हमनी के जितना युवा हवन वो है गीत के बहुत पसंद कर ले रहलन।

कलाकार के बाद कार्यक्रम के शुरुआत आज एगो नवा अंदाज में रखल है गीत के साथ काहे हम कर ली काहे के 12 तारीख को यानी 12 अगस्त को के दिन मनावल गल विश्व युवा दिवस और उही संपर्क में एगो बढ़िया गीत हम चलैनी और है जोन गीत रहल आशीष रामफल के आवाज में। वैसा आज के कार्यक्रम में कोनो कलाकार त नहीं आल हवन सिल्म हम बात करब उन सब कलाकार के विषय में उन सब कलाकार के बारे में जे हमनी के भोजपुरी भाषा के बहुत बड़ा योगदान देले हवन और सब कोई त जानेलन स कि है जोन भोजपुरी भाषा है उ भारत से आनल गल भाषा रहल हमनी के जितना गिरमिटिया मजदूर लोग रहलन जे मोरिस से भारत से मोरिस आल रहलन उ अपन संगे ला अनले रहलन एगो कैसे बोलबा अपन भाषा के जन संस्कृति है अपन लोकगीत के जन संस्कृति है और ओकरा हैजा पर उजागर करलन ढेर कोई हमनी के महारथी हवन जे है भाषा के आगे बढ़ावे में अपन बहुत बहुत बड़ा योगदान देलन और ये वो भाषा के ले के संगीत के दिशा में संगीत के द्वारा वो है भाषा के जीवंत रखलन और सबसे बड़ा हमनी के मोरिस के जोन गमट किंग है जेकरा सब कोई जानेलन स सोना नयन जी और उनकरा जानेलन खाले पीले है गीत खातिन कितना प्रशंसा मिलल रहल उ त पहिला प्रतियोगी रहल और ओकरा पहिला स्थान मिलल रहल भोजपुरी बाहर कार्यक्रम में जहाँ जे MBC देने से ऑर्गेनाइज करल गल रहल और जानेला नेशनल गम्मत डे है दिवस भी स्वर्गीय सोना नोयन के जन्मदिन के दिन मनावल जाला। उनकर जोन अंदाज रहल गीत गावे के अंदाज अपन बाल कैसे उछालत रहल और जैसे गमट करत रहन उनकरा देख के मन हो जाला गदगद और वो जैसे शुरू करेलन स गीतवा तोरा मन

सुनाई रही तब वो तू उठ के नाचे के शुरू कर दे बाबू। तो चलो उनकर आवाज में रखल एक दो गीत तोहर खातिन हम चलाओ अब जाओ। और आज के कार्यक्रम में हम बात करब जा उन सब कोई के विषय में जे हमनी के मुरिस में बहुत अपन योगदान देले हवन। वैसे तो देखबा तो जितना हमनी के कलाकार है सब कोई के एक एक को प्रोग्राम में शामिल करे के बहुत बहुत मुश्किल है, पर कोशिश करब कि जितना सकब से चलावब से और जितना हमनी के महारथी लोग हवन हमनी के कलाकार हवन जे गुजर गल और आज भी उनकर गीत के माध्यम से हम कोशिश करब उनकरा श्रद्धांजलि देवे के।

0: RM3 Radio.
1: कलाकार के बाद रेडियो मनोरंजन पर और जाने ल हमनी के मोरिस के बहुत ऐसन कलाकार हवन जे बहुत बहुत हमनी के देश के आगे बढ़ावे में अपन सहयोग देले हवन और खास कर संगीत के दुनिया में एगो ऐसन नाम कमैलक और हैजा पर हमनी के बहुत श्रोता लोगन हवन जे वो उनकरा देख के उनकरा भयल एगो एगो मन में तृप्ति जैसे कैसे बोलबा कि ओकर देख के बुझाला जैसे हमनी के मुरिस के एगो बड़का कलाकार से भेंट करके ओकरा बहुत खुशी होल। और हैजा पर हमनी के संगे एगो श्रोता जुड़ले हवन जे हई अनुभव करले हवन, तो चला उनकर जुबानी सुनब जा कि ऊ कैसे दिन रहल कैसे बुझाल जब ओकर सामने ओकर अगाड़ी रहल सोना नयन जी आइए बात करत हैं। हेलो हेलो
2: नमस्ते
1: नमस्ते उदय जी, नमस्ते उदय जी, तू हमनी के संगे वंदे मातरम तोरो भी काहे काल जरूर जरूर। और उदय जी आज हमनी के कार्यक्रम में तू भाग लेलन बहुत बहुत धन्यवाद। उदय जी हमनी के बतावा कि कैसे तू भेंट कर ले रहन सोना नयन जी से और संगे संगे बसंत सुपोल जी से।
2: जानेल हमर एगो कुजन रहल चचा के बेटा, ओ भोजपुरी खुशी रहल जमत जमत पहले लाखों सोच रहल ना गाँव में, तो हम ओकर संगे जा चली जल उठन एव जा चली ओकर संगे पी सगरो छिप नहीं रहल हमने के गाँव में सकेला पाँच गो किलो के बाद ऐसी तो कबो गम्मत फिन हुई वहाँ से मिनवी तो हमके लेके जाए तो हम जा लेके हमके हमरो रुचि हो गई से भोजपुरी में। तब एक दिन शादी कर ली तो एगो एविताशा मिल गो शादी में एक सारी एक दो साल के बाद जब गईली हो जाता जहाँ शादी रह चचवा हमके बोले भीतर लोग बेचल बा तो हम लिखे बेचल बा तो बोले सोना भाई सोना सोना लोहन भाई और भाई बास्तवन तो हम बोली चलो दर्शन कर लो लोग के रेसिव लोग सालों में बेचलवा अभी हरदी होता हरदी चढ़ा था तो वो लोग अभी तैयारी करता अभी बेचल भाजा गैस के थे तो हम वो लोग के बैठ के थोड़ा अपने हाथ मौका लोग के छुए गए हाथ दे ली
1: शेखन कर लन ओकर संगे
2: गम्मत रली जब लोग गम्मत ने फिर रली हम
1: और कैसन अनुभव कैसन रहल पहला हला तू लाखोश देखलक और ऐसन बड़का कम गमट गमट किंग के दोनों दोनों बगल से दोनों अपन अपन क्षेत्र में एगो महारथी होवन
2: और जैसे बोलत रहो बार जन जब उला देता हवे ओकर मजा
1: एगो स्टील एगो सिग्नेचर स्टाइल हो गेल।
2: हां खुशी हुई जब हम उसे कर देता हां हां तो और ही करी जे मैं लोग और ही खुशी
1: और ही थपरी बजाई ओकरा देख के। हां तो है एगो एगो स्टील है आदमी लोग के कैसे तू तू हां साहे काहे के
2: पहला लाख मजे आशीष कर ली।
1: हां
2: हां हां रली मैं एगो गमत कोमे
1: पहला हला को मजा आंखों से तोरा देखे के एगो मौका मिला।
2: चलो चलो किसी हम के हिंदुस्तान में बा मोहम्मद रफी जी किशोर कुमार
1: हां जैसे मोरिस के है स्थानीय कलाकार है एगो बहुत बड़ा बात
2: है हमने की हमर दर्शन होलो चलो इतना बड़ा
1: एगो बड़का कलाकार। हां और जानेला मोरिस में वो भोजपुरी
2: बाद में
1: हां।

0: और भाई जो गुरु जी हम बोल रहे ओके भाई भाषण जी रहल बाद में रविजय कौन रहता ओकर गांव है मैं हर दिमाग के बाजा उस बेल आई तो हम मर हाल की जाए तो हम के दूरवे से हम
1: भाई
0: जीत गए हाँ दूरवे से चले हम भाई जीतवा गए लोग बिलीला बिलीला बिलीना बिलीला
1: अरे वाह
0: बिलीना बिलीला बिलीना बिलीला ऐसे तो जब लोग चल आए तो हम कैसे आओगे देखी तो हम के हम भीतर से निकल के जाकर ओकर पैर छूब
1: हाँ
0: अब ऐसे आदत बन गल
1: हाँ तो जैसे ईगो नहीं और ईगो बहुत बड़ा मान चला आज के कार्यक्रम में उदय जी हाँ नहीं सच है क्या साखन लगेला काहे के हमनी के मुरिस के है एगो छाप है एगो कैसे बोलबा हमनी के मान है सम्मान है काहे के हमनी के जितना स्थानीय कलाकार उ हमर खातिर एगो जेम है एगो नगीना है और ऐसन बहुत नगीना हवन जे हम पैदी कर देले हैं काहे के उ अब इस दुनिया में नहीं बा सिर्मा उनकर जो गीत है आज भी लोग उतना ही खुशी रहेलन सुने के उतना ही मन से उ खुशी खुशी के साथ देवेलन तो चला जो गीत तू अभी गैलक उही गीत तोरा सुनावब जा बसंत चचा के आवाज़ में बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी
0: अच्छा सब जी साथ देवाता लोग के सब के नमस्ते
1: नमस्ते और शुभ संध्या आपके हाँ जी
2: बेले रामे।

बसंत सुपोल जी और गम्मट खातिन वो भी बहुत लोकप्रिय हो गल हवन वैदिक खयोल में उनका जन्म होल रहल और जानेला हमनी के जितना भोजपुरी गायक कलाकार हवन वो बहुत कोई लोग के इंस्पिरे यानी प्रोत्साहित करले हवन और हैजा पर जब हम कोनो युवा कलाकार के बात करीला तब बसंत सुपोल जी आदेश ताकू पसान के ढेर इंस्पिरे करले हवन और उनका जुन बोलचाल है वो बसन जी जैसन लगेला और साथ ही साथ हमनी के मुरीस के जितना कलाकार हवन उमें विनोद सिवदत्त जी के नाम भी जुड़ जाला काहे कि विनोद सिवदत्त जी भी एगो बहुत लोकप्रिय बहुत ही प्रसिद्ध लोक गीत गायक और भोजपुरी गीत गायक हवन लोक संगीत के संस्कृति के वो आगे बढ़ैलन और गम्मट गम्मट के वो जीवित रखलन और उनकर भी जो गायन के जो शैली है ओकर जो प्रस्तुतिकरण रहन लोगन के बहुत बहुत अच्छा लगल उनकरा मास्टर विनोद सिवदत्त के नाम से जस्ती जानत रहन सब कोई और पारंपरिक भोजपुरी लोकगीत गम्मट और स्थानीय सांस्कृतिक गीत गावे खातिन वो बहुत नाम कमैलन और बिस्तर पे ठेला ठेली है गीत जितना सुप्रसिद्ध होल है तो सबको ही जानता तो चला आज के कार्यक्रम में शामिल करब जा उनकर आवाज में रखल है बढ़िया गीत

ऐसा बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत सुन के मन बिल्कुल टकाटक हो जाला। और आज के कार्यक्रम में ऐसा ऐसा कलाकार के बात हम करत हैं जहाँ पर हमनी के देश के वो आगे लेके गल, और उनकर गीत में एगो ऐसा अंदाज रहल, उनकर गीत गावे के पद्धति बहुत अलग, बहुत हट के रहल। और ऐसा एगो और कलाकार हवन विश किरोधर, वो भी भोजपुरी जगत के बहुत जाना माना एगो ऐसन गायक कलाकार जे बहुत भोजपुरी गीत के आगे लेके गल। और शादी और ब्याह के जैसे बोलब एगो ऐसे प्रसंग में ऐसन ऐसन गीत गा के वो भोजपुरी भाषा के जीवित रखलन।

चलो उनकर आवाज में रखल भी आई है ये गो गीत सुनाब अब जा सब कोई के। वो भी बहुत छोटा उम्र में गुजर कर चला गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देवत हैं उन सब कोई के।

रहल विश किरोधर और ऐसन ऐसन कलाकार जे हमनी के एगो ऐसन अनमोल खजाना देले हवन भोजपुरी भाषा गीत के कलाकार और गीत गीत के हमनी के ऐसन खजाना देले हवन। के उठान में भोजपुरी भाषा के जितना योगदान बा है योगदान कब्बो नहीं भुलावे सकबो। और ऐसन ऐसन गायक कलाकार त जैसे हमनी के गौरी ब्रदर्स में बहाल गौरी, जी हाँ बहाल गौरी जाने ल तोहर हाथ ल हमर हाथ भाई एगो कैसे बोलब एगो ऐसन सिग्नेचर सॉन्ग। जब जब मुरीस के पावियों हवा में फहरे ला है गीत हमनी के रोंगटा खड़ा कर देवे। ये गीत के साथ आज के कार्यक्रम थोड़ा घड़ी में हम समाप्त करब जा पर उसकर से आगे मीरा मोहन के भी हम कैसे भुलावे सकब। मीरा मोहन के द क्वीन ऑफ भोजपुरी डाब लेवल गल संगे संगे ऐसन ऐसन फिल्मी गीत भी गईले हवन जे बहुत ही प्रशंसनीय है। और जानेला 80s और 90s के दौर में दशक में वो ऐसे ऐसे गीत के NBC के टीवी पर गईले रहा। आज भी हमनी के मन गदगद कर चला सुनब जा एगो बढ़िया गीत मीरा मोहन जी की आवाज में।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: कलाकार के बाद कार्यक्रम में बिल्कुल जीने को तो जीते हैं सभी। प्यार बिना कैसन जीवन हो, और हई जोन संगीत हई में इतना जादू है, सब कोई के भीरी करे लग, सब कोई के पास आने लग, और सब कोई के दिल में एक दूसरा के प्रति मान और सम्मान के भावना प्रकट करे लग। और ऐसन में हमनी के जितने गायक कलाकार, खासकर हमनी के जितने स्थानीय गायक कलाकार हवन भोजपुरी भाषा के, वो बहुत आगे लिखे, बहुत मान बढ़ैलन, बहुत एगो कह कह बोले सकबा कि हमनी के समाज में भोजपुरी भाषा एगो समय में लुप्त होत रहलन। और ऐसन में हमनी के ऐसन ऐसन कलाकार हवन जे हई अग्नि के जागृत रखलन, और खासकर भोजपुरी भाषा के एगो जीवन दान देलन गीत के माध्यम से, हई सब गीतवन के जीवित रखलन। और जैसे हमनी के गायक कलाकार में ज्ञान मोहिपत लाल और जीवन दाऊ सिंह के नाम कैसे भुलावे सकब, वो भी एगो ऐसन गम्मट जोड़ी है जे सगड़ो सगड़ो शादी ब्याह में शादी के गीत गा गा के लोग के, सब लोग के नचावत रहलन, और गम्मट करे खातिर उनकर भी बहुत बड़ा योगदान रहलन। और आज के कार्यक्रम में हमनी के ढेर कोई मेहसास विदा कलन, बोले हम भी शादी में जब रहली, हमर शादी जब होल रहल, तो ऐसन बहुत गम्मट कलाकार रहलन जे हमर शादी में गम्मट करले रहलन। तो चला पहला तक ज्ञान महिपत लाल के आवाज में रखल है गीत चलाओ अब जा। और अभी थोड़ा घड़ी में हमारी धरोहर कार्यक्रम तो सुने सकबा किरण जानकी के आवाज में, और उकर बाद हम चलाओ अब जा बहाल गौरी के आवाज में रखल एगो बढ़िया गीत जोन रही आज के कार्यक्रम के अंतिम गीत। ज्ञान महिपत लाल जी के आवाज में रखल है गीत, बहुत बढ़िया सुहावन गीत है, बदरिया घिर घिर ना।

0: तो चलो इसी के साथ आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करे के समय हो गलबा। किरण जानकी की आवाज में बिल्कुल हम सुनब जा हमारी धरोहर कार्यक्रम अभी थोड़ा घर।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने यूनेस्को के एगो ऐसन संगठन पर बात करब जा जोन की अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल संगठन है और एकर नाम है इक्रोम। इक्रोम अपन सदस्य देश लोक संगे दुनिया भर में और दुनिया भर के हर एक इलाका में सांस्कृतिक धरोहर के हर रूप में संरक्षण करेला और संरक्षण के बढ़ावा देवेला। 2001 के सांस्कृतिक विविधता यूनेस्को यूनिवर्सल डिक्लोरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी के जन कन्वेंशन बा वो एकदम इक्रोम के फिलोसॉफी पर ही आधारित है। इक्रोम के मतलब का है? एक मतलब है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, मतलब कि सांस्कृतिक विरासत के पुनर्स्थापना। एकर मकसद है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खातिर आपसी विश्वास, सहयोग, बातचीत, सहनशीलता और संस्कृति के विविधता के सम्मान करते हुए काम करेंगे। 6 दशक तक इक्रोम अपन सदस्य देश के सहयोग दे ले आलबा अपन अपन धरोहर के संरक्षण करेंगे। इक्रोम की स्थापना इटाली में करल गल रहल और ऊ हुए से कार्य करेला।

0: एकर गठन जानेला काहे कर लगल रहल? जब दूसरा विश्व युद्ध चलल और समाप्त होल, तब कितने धरोहर, कितने सांस्कृतिक धरोहर विशेष रूप से यूरोप में बर्बाद होकर रहल, उ सब कल्चरल प्रॉपर्टी के फिर से स्थापित करे खातिर और धरोहर के सुरक्षा और प्रमोशन खातिर यूनेस्को हाली हाली एकर गठन करलक। और एकर एगो और मकसद ई भी रहल कि इक्रम ही उ मुख्य संस्था सेंट्रल बॉडी रही जो इन सब देश के रास्ता दिखाए, उ लोग के अपन विशेषज्ञता, सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करी जे अपन धरोहर के बढ़ावा देवे चाहता। इटाली रोम के ई खातिर चुनल कर रहल मुख्यालय के रूप में, कहे कि इटाली सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के क्षेत्र में संस्था लोग के बहुत अच्छा तरह से तैयार कर ले रहा। और फिर 1957 जिनेव कॉन्सेंट में पेरिस में यूनेस्को के मुख्यालय में इस संधि पर सही कर गए। और 1958 जिनेव कॉन्सेंट में इटाली के राष्ट्रीय सभा में ये फैसला के रेटिफाई करा गए। आज 60 बरिस स्वतंत्रता से जस्ती समय के बाद भी इक्रम उतने ही ताकत के साथ, मजबूती के साथ अपन लक्ष्य में आगे बढ़ाता। आज दुनिया के सबसे बड़ा चुनौती बा मौसम परिवर्तन, और इक्रम बहुत ही वफादारी के साथ अपन मिशन, अपन लक्ष्य में आगे बढ़ाता सब सदस्य देश लोक संगे। याद रखिए कि मॉरिशस भी इक्रम के एगो सदस्य देश है। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना, धन्यवाद, नमस्ते।
1: चला इसी के साथ किरण जानकी जी के बहुत बहुत धन्यवाद बोला बड़ा। और कलाकार के बात कार्यक्रम में आज के आखिरी गीत स्वर्गीय बहाल गौरी जी की आवाज में, और हये गीत के साथ आज के कार्यक्रम हाईजा पर समाप्त हो जाए। आप सबनी सब हमनी के बहुत प्यार से सुनलन, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी थोड़ा घड़ी में 6 बजे के समाचार तू सुने सकब। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या सब कोई के।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार, आदाब, शाम की

0: ठीक 6 बजे हैं। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की अहम खबरें। आज पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक लगेगी ताकि ईंधन की कीमतों पर दोबारा जायजा लिया जा सके। आज अगर इन दामों में बढ़ोतरी लाई गई तो पीपीसी के नियमों के मुताबिक 10% की वृद्धि लाई जाएगी। सूखे के इन दिनों में पानी का संचालन करना सबसे बड़ी चुनौती। होटल क्षेत्र नए तरीके अपना रहा है ताकि गतिविधियों में कोई रुकावटें पैदा ना हों। पर्यावरण प्रिय पहल के तौर पर मॉरीशस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक माध्यम अपना रहा है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को अपनाते हुए सरकार सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा कारगर बनाती जा रही है। कल रुजिल ट्रांसपोर्ट ने एलियस परियोजना की लॉन्चिंग। और पूर्वी जापान में मूसलाधार बारिश की वजह से 20,000 से ज्यादा घरों में बिजली की सप्लाई बंद, 7 लोगों की मौत की खबर। नमस्कार और आदाब। आज पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी पीपीसी की बैठक लगाई जाएगी ताकि ईंधन की कीमतों का दोबारा जायजा लिया जा सके। फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल का दाम 64.25 रुपए है और डीजल लीटर पीछे 71.25 रुपए में बेचा जा रहा है। आज अगर इन दामों में बढ़ोतरी लाई गई तो पीपीसी के नियमों के मुताबिक 10% की वृद्धि होनी चाहिए।
1: अप्रैल महीने में बढ़ोतरी के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल की कीमत 64.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 71.25 रुपए प्रति लीटर है। अप्रैल में दामों में बढ़ोतरी 10% तक सीमित रखी गई थी, जबकि पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी के अनुसार पेट्रोल के दाम में 20.29% और डीजल में 34.44% की बढ़ोतरी हो सकती थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम काफी ऊंचा था। अप्रैल में ब्रेंट तेल की कीमत 100 से 117 डॉलर प्रति बैरल के बीच थी। इसकी बड़ी वजह दुनिया में तनाव और तेल की सप्लाई में रुकावट थी। आज 4 महीने बाद ब्रेंट तेल की कीमत करीब $88 प्रति बैरल है। ये अप्रैल के मुकाबले काफी कम है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तनाव के कारण दामों में अब भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। मॉरीशस में पेट्रोल और डीजल की कीमत ब्रेंट तेल की रोज की कीमत के हिसाब से अपने आप नहीं बदलती। कीमत तय करते समय आयात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव दर और प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट की स्थिति को भी देखा जाता है। अप्रैल में इस खाते में करीब 3,200,000,000 रुपए की कमी थी।
0: ग्लूकोमा का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कैथोबोन में गोलमेज बैठक का आयोजन किया। एक राष्ट्रीय ग्लूकोमा प्रोग्राम को स्थापित करने के सिलसिले में ख्यालात पेश किए गए। ये प्रोग्राम अस्पतालों और मेडिक्लिनिक्स में चलाया जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन से 2 स्पेशलिस्ट मॉरिशन डॉक्टरों की मॉरीशस आमद के संदर्भ में ये मुलाकात की गई। कोयल सितल की रिपोर्ट पर ये विवरण।
1: ग्लूकोमा की समय रहते पहचान के लिए मॉरीशस में एक राष्ट्रीय जांच कार्यक्रम शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इसी को लेकर नेत्र विशेषज्ञों और स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े लोगों की एक बैठक लगी। योजना है कि देश के अस्पतालों और मेडिक्लिनिक्स में आंखों की जांच की सुविधा दी जाए ताकि बीमारी का शुरुआती दौर में ही पता लगाया जा सके।
2: Et pas l'hôpital, moi je dis, même dans les médias cliniques qui nous est là, nous pouvons faire provision pour mettre ça dans l'appareil là, entraîne nous les médecins.
1: इस सप्ताह करीब 100 मरीजों की आंखों की जांच की गई। जिन मरीजों में ग्लूकोमा की स्थिति ज्यादा गंभीर पाई गई उनमें कुछ का ऑपरेशन करना पड़ा।
3: On opère l'eau des patients qui tiennent à glaucome sévère. Elle en tient une mamzazis 30 ans qui voit même un peu pleuré dans clinique parce qu'il voit même des PPD sous vision à cause d'un tension lisée glaucome. Donc, nous faisons beaucoup d'interventions, mais aussi sans traitement médical. Donc, it's been a very productive week en termes d'improve glaucoma and eye care in Mauritius.
1: इस दौरान मॉरीशस के स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें लेजर के इस्तेमाल और ग्लूकोमा के इलाज की नई ऑपरेशन टेक्निकों के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग दी गई।

0: आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। 14 अगस्त की तारीख तकसीम हिंद और पाकिस्तान के क़याम के लिए बड़ी मायने रखती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बरतानी शासन को ख़त्म करते हुए बंटवारा किया गया था। मुशरस में पाकिस्तानी लोगों ने आज मिलकर फ्लोरियाल में पाकिस्तानी सफारत में यौम आज़ादी मनाई। इस मौके पर मुशरस और पाकिस्तान के गहरे रिश्तों पर रोशनी डाली गई, ख़ास तौर पर सकाफती, तजारती और माली शोबों में। किशन सिचिया की रिपोर्ट पर आसिता रघु का विवरण।
1: कुरान का एक हिस्सा पढ़ने के बाद आज 14 अगस्त को पाकिस्तानी झंडे को ध्वज स्तंभ के ऊपर तक फहराया गया। इस साल पाकिस्तान की आजादी का 79वां सालगिरह है। मॉरिशस में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए ये गर्व का लम्हा रहा।
2: मेरे लिए पाकिस्तान मेरी जान है, मेरी आन है। मैं पाकिस्तान का एक फ़र्द हूँ, पाकिस्तान की एक फ़र्द हूँ। मैं बड़े अरसे के से यहाँ पे मुकीम हूँ, कोई 38 ईयर से। जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा तो मेरा दिल वहीं रह गया, लेकिन यहाँ मेरा जिस्म है, वहाँ मेरा दिल है। इस लिहाज से तो मैं यहाँ जब उदास थी तो मैंने शायरी शुरू कर दी। मैं अपने शायरी में मैंने अपना सारे जज्बात वो निकाले, और इस दिन के लिए भी मैंने अपने वतन पे लिखा है, बहुत कुछ लिखा है।
1: कुछ पाकिस्तानी नागरिक स्थानीय संस्कृति की तुलना पाकिस्तान की संस्कृति से करते हैं, जिससे उन्हें यहाँ अपने घर जैसा महसूस होता है।
3: हमारे यहाँ जो नमक होता है सॉल्ट, मॉरिशस में लामिया से हम उसको निकालते हैं, सी से निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये माउंटेन से आता है, जिसको हिमालयन पिंक सॉल्ट कहते हैं। सो इट कम्स फ्रॉम देयर। सो इसके अलावा जो लोग हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, जैसे आपके यहाँ, हमारे यहाँ मॉरिशस में भोजपुरी है, तमिल है और बहुत सारी ज़बानें हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर आप कराची में स्पेशली जाएंगे तो एक तमिल पूरी सोसाइटी है, एक हिंदू पूरी एक सोसाइटी है, सिंध के रीजन में उमरकोट, नोकोट, डिप्लो, ये सब इलाका जो है यहाँ काफ़ी बड़ी हिंदू मेजॉरिटी है जो वहाँ रहती है। अगरचे वो पाकिस्तान के टोटल प्रोपोर्शन के हिसाब से एक माइनॉरिटी है, लेकिन अपने रीजन के हिसाब से दे आर अ गुड मेजॉरिटी।
1: उच्चायोग ने पाकिस्तान और मॉरिशस के बीच कायम मजबूत राजनयिक और आर्थिक ताल्लुकों पर जोर दिया। वर्तमान प्राथमिकता दोनों देशों के बीच तरजीही व्यापार समझौते को फिर से सक्रिय करना है, जिसकी आखिरी कार्य बैठक 2014 में हुई थी।
4: मॉरिशस वो वाहिद अफ्रीकन कंट्री है जिसके साथ पाकिस्तान प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मुआहदा रखता है, और ये मुआहदा फ़िलहाल काफ़ी डोरमेंट है, इनएक्टिव है, लेकिन इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान इसका 11वां सेशन जॉइंट वर्किंग ग्रुप के नाम से एक सेशन है जो कन्वीन होगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, उसकी कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान जो एक्चुअल पोटेंशियल है ट्रेड का उसको मज़ीद बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, जो इससे बहुत ज़्यादा मुमकिन हो गया। फिलहाल हमारे पास मैंगोज़ आ चुके हैं मॉरिशस में, ये हमारा दूसरा साल था मैंगोज़ के इंट्रोडक्शन का, और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला। अब हमारे पास पाकिस्तानी पेंट आ रहा है मॉरिशस में, पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक केबल्स आ रही हैं, और इंशाल्लाह बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। हमारे बहुत सारे ट्रेड डेलीगेट्स आ रहे हैं मॉरिशस से पाकिस्तान और पाकिस्तान से मॉरिशस।
1: समारोह में प्रवासी समुदाय द्वारा अपनी मातृभूमि के सम्मान में प्रस्तुत किए गए गीत भी शामिल थे।
5: हमारी अजमत का पासबां है।
0: पर्यावरण प्रिय पहल के तौर पर मॉरिशस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक माध्यम अपना रहा है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को अपनाते हुए सरकार सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा कारगर बनाना चाहती है। कर्रोजिल ट्रांसपोर्ट ने एलियोस परियोजना की लॉन्चिंग की। इसके तहत 5 सालों के दौरान डीजल से चलने वाली 20 बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा, और ये बसें 5 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल से चार्ज होंगी। मॉरिशस में आपको बता दें कुल 116 बसें इलेक्ट्रिक हैं। संतना पोस्नो की रिपोर्ट पर ये विवरण।
1: सार्वजनिक परिवहन के ऊर्जा परिवर्तन ने प्रोजेक्ट हेलियोस के शुभारंभ के साथ एक नया चरण पार कर लिया है। बस कंपनी रोजिल ट्रांसपोर्ट ने अगले 5 वर्षों के दौरान हर साल 20 नए इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करते हुए अपने डीजल से चलने वाले बसों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की योजना बनाई है। शुभारंभ के दौरान 2 इलेक्ट्रिक बसों और 1 इलेक्ट्रिक वैन का अनावरण किया गया, जो पहले से ही फ्लीट में मौजूद 8 इलेक्ट्रिक बसों में शामिल हो गई है।

0: ban bis, on dirait, ban pollueur et tout.
1: रॉजिल होल्डिंग लिमिटेड तथा ग्रुप के सीईओ डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा कहती हैं, अक्सर हम सोचते हैं कि बसें प्रदूषण फैलाती हैं, इसलिए हमारा विजन बहुआयामी है और जब परिवहन उद्योग के खर्चों को देखते हैं तो इसमें वृद्धि लगातार हुई है, मुनाफा कम हुआ है, इसलिए हमें लागत को कम करना होगा और रॉजिल में हम एक मुख्य परिवहन सेवा है, इसलिए हवा व पर्यावरण के लिए हम कुछ करना चाहती है। ये बदलाव नवीनीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर भी आधारित हैं। रॉजिल ट्रांसपोर्ट वर्तमान में रिश्लू में लगभग 4 एकड़ क्षेत्रफल में 5.5 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक बस फ्लीट को ऊर्जा उपलब्ध कराना और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। कंपनी जुलाई 2019 में 2 इलेक्ट्रिक बसों के साथ शुरू किए गए अपने पहले अनुभव पर भी भरोसा कर रही है। 7 वर्षों के संचालन के बाद कंपनी ने अपने ऊर्जा बिल में 60% और स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले खर्चे में 70% की कमी की घोषणा की है। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद कहती हैं, सरकार की ओर से बस ऑपरेटरों के लिए एक बस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कायम है जिसके तहत एक फंड उपलब्ध है। पिछले वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री ने इसकी राशि बढ़ाकर 150 मिलियन रुपया कर दिया था। इस स्कीम के तहत केवल 11 बसें खरीदी गई हैं, जो बहुत कम है। मैं अन्य बस कंपनियों तथा निजी बस ऑपरेटरों से भी इस स्कीम में आने की मांग करता हूँ। ये फंड सभी के लिए उपलब्ध है। कुल मिलाकर इस परियोजना में 2 बिलियन मॉर्शन रुपए का निवेश किया गया है। इस परियोजना को IFCM और सरकार द्वारा बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के माध्यम से भी समर्थन दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट हेलियोस के साथ रॉजिल ट्रांसपोर्ट अपने बस फ्लीट के आधुनिकीकरण को तेज करना चाहती है, साथ ही अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहती है।
2: गए कुछ हफ्तों से आपने ज़रूर रास्तों पर देखा होगा, सड़कों पर हम्प्स को और बड़ा किया जा रहा है और इन्हें लाल रंग से पेंट किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसके लिए कितने पैसे लग रहे हैं, अंजू राम गुलाम ने जांच की है।
3: जून महीने से देश के कई सड़कों पर लाल रंग के नए स्पीड ब्रेकर नजर आ रहे हैं। ये पहले के मुकाबले ज्यादा ऊंचे और चौड़े हैं, इसलिए गाड़ी चालकों को इन पर खास ध्यान देना पड़ रहा है। देश भर में करीब 30 ऐसे स्पीड टेबल्स लगाए गए हैं। कट्रोबोन, एबेन, बोबासेन, रोजिल, लामिचे, गोकुला, पोर्ट लुई और फ्लक समेत कई इलाकों में, खासकर स्कूलों और धार्मिक स्थलों के सामने इन्हें लगाया गया है। देश भर से हमें मांगे आती हैं, हम पहले जगह का अध्ययन करते हैं, खतरे वाले इलाकों को प्राथमिकता दी जाती है जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन इन्हें लाल रंग क्यों दिया गया? अधिकारियों के मुताबिक ताकि वाहन चालक इन्हें दूर से देख सके और समय रहते अपनी रफ्तार कम करें। चालक को दूर से ही स्पीड ब्रेकर दिख जाता है और वाहन की रफ्तार कम करने का संकेत मिल जाता है। अब सवाल ये भी है कि बारिश में ये लाल रंग कितना सुरक्षित रहेगा, क्या इसकी सतह फिसलन भरी हो सकती है जैसा पहले हरे साइकिल ट्रक्स के साथ देखा गया था, और समय के साथ इसकी हालत कैसी होगी। ये एक खास पेंट है, इस स्पीड टेबल को इस तरह बनाया जाता है ताकि फिसलन नहीं हो, विशेषकर बारिश के समय भी। इन नए स्पीड ब्रेकर पर कितना पैसा खर्च किया गया है, ये भी एक सवाल है। एक स्पीड ब्रेकर को बनाने में 1 लाख से 2 लाख रुपए लगते हैं। इसमें निर्माण कार्य, तारकोल बिछाने का काम, रोड साइन का खर्च भी शामिल है। अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता सड़क सुरक्षा है। 14 अगस्त तक देश में 85 जानलेवा सड़क हादसे हुए, जिनमें 88 लोगों की मौत हुई। इनमें 40 मोटरसाइकिल चालक, 11 चालक और 25 पैदल यात्री शामिल हैं। पैदल यात्री अभी सड़क पर सबसे ज्यादा खतरे वाली श्रेणियों में दूसरे स्थान पर है। अगर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के

0: रफ्तार से एक गाड़ी आ रही हो तो राहगीर की जान बच सकती है। ज्यादा स्पीड में जान जाने का खतरा ज्यादा होता है। आने वाले महीनों में ऐसे और लाल स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे, लेकिन लाल रंग हो या काला, मकसद एक ही है, गाड़ी की रफ्तार कम करना और सड़क को ज्यादा सुरक्षित बनाना।
1: सरस्यू सागर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आते पीर 17 अगस्त से एक स्मार्ट पार्किंग प्रणाली कायम की जाएगी। 50 मिलियन रुपए की लागत पर ये सेवा लागू की जा रही है। इसके जरिए पार्किंग स्थल पर ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन, जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट दर्ज करना, खाली जगहें, मोबाइल पेमेंट की प्रक्रिया वगैरह उपलब्ध होगी। इस नई प्रणाली का मकसद पार्किंग में गाड़ियों की आवाजाही को ज्यादा आसान बनाना है और साथ में पार्किंग पर सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। सागाउनु आस्था गोबिंद टामन।
2: हर दिन 50,000 वर्ग मीटर में फैली इस पार्किंग स्थल में लगभग 7,500 वाहनों की आवाजाही दर्ज की जाती है। सोमवार 17 अगस्त से वाहन चालकों को नई व्यवस्था के अनुसार खुद को ढालना होगा। प्रवेश द्वार पर 20 से अधिक कैमरे नंबर प्लेट को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रूप से पहचानेंगे। इसके बावजूद वाहन का नंबर और एक QR कोड वाला टिकट जारी किया जाएगा। कार पार्क ऑफिसर जोगी स्वामी कहती हैं, इस टिकट पर एक QR कोड है और अब एक व्यक्ति काउंटर पर जाने की जगह पर अपने स्मार्टफोन पर इस QR कोड को स्कैन कर सकता है। 15 मिनट से कम समय यदि वह अंदर रहा तो वह बिना शुल्क चुकाए निकल सकता है, और यदि 15 मिनट से ज्यादा समय तक वह अंदर रहा तो वह QR कोड को स्कैन करने के बाद जूस, ब्लिंक इत्यादि से पेमेंट कर सकता है तथा उसके पास के बाद 15 मिनट होगा अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालने के लिए। नई व्यवस्था 2013 से इस्तेमाल की जा रही पुरानी प्रणाली की जगह लेगी, जो अब अपने निर्धारित उपयोग की अवधि के अंत तक पहुंच चुकी है। अटोल अब अधिक सुगम प्रवेश और निकास, बेहतर निगरानी और संचालन पर अधिक कड़ी नियंत्रण पर जोर दे रहा है। अटोल की CEO लोमेश बंधु कहती हैं, हमने इस पार्किंग स्थल से यातायात कम करने की कोशिश की है तथा मॉरिशन जनता को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सेवा देने के लिए प्रबंध किया है। नई प्रणाली अधिक प्रभावी और सुचारू है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो लोग अब तक भुगतान नहीं करते थे उन्हें अब पेमेंट करनी होगी। एक नियंत्रण केंद्र लगातार पूरे संचालन की निगरानी करेगा। तकनीकी समस्या की स्थिति में वाहन चालकों की सहायता के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे।
1: गए 10 अगस्त से मुशरस में पानी को लेकर कई पाबंदियां हैं, खासतौर पर जो पानी पीने के लिए है उसे दूसरी वजहों से इस्तेमाल करना मना है। इनमें बागों को और ग्रीन स्थलों को पानी देना, गाड़ियों को धोना, इमारतों की सफाई करना और आंगनों तथा रास्तों को स्वच्छ रखने के लिए जल का प्रयोग करना। हर रोज 2 घंटे कम पानी की सप्लाई की जा रही है। इल्दी दुकुकु पर स्थित होटल अलग तरीके से इस संसाधन का संचालन कर रहा है। वो बारिश का पानी स्टॉक करता है, समुन्दर के पानी का डिसैलिनेशन करता है और इस्तेमाल किए हुए जल की रिसाइकलिंग भी करता है, और ये संचालन होटल के बिजली उत्पादन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। और अब विदेश की खबरें। उत्तराखंड भारत में एक सुरंग के ढह जाने से 7 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग जख्मी बताए जाते हैं, बचाव कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी चीन के जेजियांग राज्य में भूस्खलन पेश आया, एक व्यक्ति की मौत हुई है और 3 अन्य लोग गुमशुदा हैं। चीन के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जापान के पूर्व में राजधानी टोक्यो के पास रिकॉर्ड तोड़ वर्षाओं से कम अज कम 6 लोग जान से गए हैं और अन्य लोग 5 लोग जख्मी बताए जाते हैं। इस बारिश की वजह से 20,000 से ज्यादा घरों में बिजली की सप्लाई बंद है और टोक्यो के नारिता हवाई अड्डे में करीब 7,000 मुसाफिर फंसे हैं क्योंकि यातायात ठप है। जापान में दर्जे 5 की आपात चेतावनी जारी की गई है। और अब करते हैं स्थानीय मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है और पूर्व से आ रहे कुछ बादल आज रात से स्थानीय मौसम पर असर करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात मौसम अच्छा रहेगा, बाद में पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लाटो में घने बादल होंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर 50 ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में। इसी वजह से

समुंदर में ना जाने की सलाह है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 21 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:31 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:56 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें आप तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी शिव नाग्या की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब। जगृति रोड सिच्यामिल थ्रियोले में 71 साल के 71 years old जनाब इसाक मिर्जान, जनाब इसाक मिर्जान जो इस्लाम के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 9 बजे इनके घर जगृति रोड सिच्यामिल थ्रियोले से उठाकर दफनाने के लिए प्लेंदे पापाय का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 9 PM। रॉयल रोड काटकोको में 73 साल के 74 years old श्री सत्यदेव मीटू जो चंद्रदेव के नाम से ज्यादा जाने जाते थे और टैक्सी ड्राइवर थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी रविवार को 2 बजे इनकी पत्नी प्रतिमा मीटू के घर रॉयल रोड काटकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे एट 2 PM। B85 रेजिडेंस सेंट जॉन कैथरबोन में 79 साल की 79 years old श्रीमती कुपामा सुबेन पैदाइशी नाम रामसामी जो आईवी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर के 2 बजे इनके घर B85 रेजिडेंस सेंट जॉन कैथरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। Avenue des Colombes, Médine Condé-Masque में 76 साल की 76 years old श्रीमती इंदराबाई तुकुबा पैदाइशी नामा बा जो आतोसोनी बाई के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सवा ग्यारह बजे इनके बेटे बेतन तुकुबा के घर Avenue des Colombes, Médine Condé-Masque से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए Médine Condé-Masque की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन Tomorrow at 11:15 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: RM3 Radio.
1: नमस्कार, इस समय 6:23 हुए हैं। हमारी आपके मुलाकात है रेडियो मनोरंजन पर। बेशक हमारा आपका ये साथ आप लोगों के लिए नई सोच शो प्रस्तुत करते हुए हो रही है। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं, देते हुए साथ आपका। हम आपके लिए ऐसे नगमे पेश करेंगे जिससे मन दृढ़ हो जाए। मन में अगर कोई भी निराशा हो तो वो निराशा हट जाए और आपके मन में आशा ही आशा नजर आए। चलिए ज़रा इस बात पे हम गौर करते हैं कि हम हमेशा दुआएं करते हैं आपके लिए कि मन आपका हमेशा शांत रहे, मन आपका हमेशा प्रसन्न रहे, सेहत आपकी हमेशा अच्छी रहे। ये दुआ हम हर पल हर घड़ी आपके लिए किया करते हैं। नई सोच कार्यक्रम में आप लोगों को बस इतना याद दिलाना है हमको कि इस जहां में मिलता है बहुत कुछ हमको, बस हम नज़रअंदाज कर दें उन चीज़ों को जो हमें नहीं मिल पाता। क्योंकि मुकम्मल जहां तो कभी किसी को मिलता नहीं है, कुछ मिल जाता है तो कुछ रह जाता है। आपको जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए, जो नहीं मिला है उसको भूल जाइए।

इस जहां में तो हम बोलते बहुत कुछ है, कई बार यूं होता है कि ये जबान फिसल जाती है, कुछ नहीं बोलना होता है पर हम बोल देते हैं। बस इसी बात पे तो गौर करना होता है कि हम जो कहते हैं, जो करते हैं, उन बातों से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। बस असर अच्छा रहे हर बात का, यही हम कोशिश करें। हर बात अपने आप में एक ऐसी ब्लेसिंग रहे कि औरों को भी खुश कर दे, मन आपका भी खुश कर दे। ऐसी ही कोशिश कीजिएगा हमेशा।

आते हैं जिनसे हर किसी का कदम उठे एक खुशी की ओर हर किसी का कदम उठे उधर जहां पर सुख शांति और तसल्ली का माहौल बना रहे और ऐसे में ये कदम उठाकर हम खुद को नहीं सबको खुश कर दें

चाहिए हर बात पे हम ज़रा हंस दें हर बात पे जो हम ज़रा मुस्कुरा दें हर बात पे गम हर गम पे हम थोड़ा खुश होने की कोशिश करें तो ये गम हमें हरा नहीं सकता ये खुशियाँ हमें जिता सकती हैं इन खुशियों से ही हमारे मन को जीत हासिल होगी हमारे मन को तसल्ली हासिल होगी।

बस दुआएं आपके लिए हम करते हैं कि हंसते हंसते आपके सारे रास्ते कटे और बड़ी खुशी के साथ आप हर मुसीबत से जूझें। मुसीबत तो आती ही रहती है, बस उनसे जूझने के लिए हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। अगर हम ये बैठकर सोचेंगे कि मुसीबत आनी ही नहीं है तो ऐसा तो होता ही नहीं है। हंसते हंसते आप हर रास्ता काट के और मुसीबतों से जूझते

0: घना अंधेरा कितना भी घना हो, उसमें एक छोटी सी रोशनी आ जाए तो इस घने अंधेरे को तितर बितर कर देता है। बस एक छोटी सी रोशनी आपके दिल में रहे, यही उम्मीद है।
1: एक पल तो अब हमें जीने दो,

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: तो बस यहीं पर हमारा प्रोग्राम समाप्त होता है. दिलों की आवाज़ का समय हो चुका है. नई सोच कार्यक्रम में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इस समय शाम के 7 बजे है, लेकर आए हैं आपके लिए दिलों की आवाज़.
2: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की
1: आवाज़ आवाज़ आपके दिल से आएगी सीधा हमारे स्टूडियो तक. रेडियो मनोरंजन का ये स्टूडियो है और यहाँ पर अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो बेशक हम आपको हाई कहेंगे. 5250-6200 पर अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं और जो कॉल करना चाहते

चाहते हैं तो 4028070 पर हमें कॉल कीजिएगा, बताइएगा कौन सा वाला गाना आप सुनना चाह रहे हैं। आज की शाम हम वो गाने आपके नाम करेंगे जो गाने आप सुनना चाह रहे हैं। बस हमें तो यही खुशी होती है कि आपके चुने हुए गाने आप तक पहुंचा देते हैं हम, हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है। तो बस चलिए हम आपको एक ऐसा गाना सुनवाते हैं जो बारूद मूवी से लिया है हमने। कभी प्यार आता है तो वो दुश्मन पे भी आ जाता है। चलिए ज़रा सुनते हैं ये रोमांटिक सा गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कहां कांटों की बात करते हैं अब जहां दिल लग जाता है वहां फूल ही फूल नजर आता है कांटों की क्या बात करते हैं हां ये जरूर है कि कुछ गम होते हैं कुछ दर्द होते हैं इश्क में पर इश्क हमें हमेशा दिल का सुकून देता है 7:06 हुए हैं और दिलों की आवाज कार्यक्रम है ये और दिलों की आवाज कार्यक्रम में जो आवाज आई है हमारे तक वो आवाज है सूरज शर्मा सजादा जी की और सूरज शर्मा सजादा जी त्रियोले से हमें मैसेज भेज रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं अदालत मूवी का ये गाना उन्होंने इस गाने की फरमाइश की नीतू शाजी के लिए बेटी निशाल के लिए और पूरे बिसेसर परिवार के लिए तो चलिए ये गाना आपके नाम करते हैं सूरज जी ये गाना है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में

ये है आपकी फरमाइशों का सिलसिला, सिलसिला है आपके दिल की आवाज़ का। और इस सिलसिले में हमें मैसेज भेजा है श्वेनल जी ने। श्वेनल जी ने सभी शिव भक्तों को, सभी श्रावण मास मनाने वालों को मंगल कामनाएं दी हैं। और विशेष तौर पर श्वेनल जी का कहना है कि तिलक बॉयज को बहुत मंगल कामनाएं, जो गंगा तालाब की ओर बढ़ रहे हैं, पैदल बढ़ रहे हैं और आराधना शिव जी की कर रहे हैं। इस आराधना में भगवान शिव उनको बहुत बहुत हिम्मत प्रदान करें, भगवान शिव उन पर बहुत बहुत कृपा बरसाए, ऐसी मंगल कामना की है श्वेनल जी ने।

तिलक बॉयज के लिए और सभी सभी शिव भक्तों के लिए। और इन्होंने यह गाना घूंघट मूवी से शिव जी पर आधारित मांगा है कृति के लिए अभिनव कियान नाविया और सभी शिव भक्तों के लिए।

फिल्म गुलाम का ये गाना अफ्रीकन फ्लैग से उन्होंने ये गाना अपने पति राज, बेटे आंतिश, अंकुश, बहू मनीषा, अशीमा, पोती हिमेशा और आद्या के लिए तथा पोते अंश के लिए मांगा है ये गाना। और उन्होंने यही गीत सभी सुनने वालों के नाम किया है। इंजॉय कीजिएगा।

सो आप हैं हमारे श्रोता, आप हैं हमारे दोस्त, हम हैं आपके होस्ट, हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं, आपके दिलों की आवाज़ आपके अपनों तक पहुंचा रहे हैं। और वैसे भी ये दिलों की आवाज़ शो होता ही ऐसा है जो दिल को खुश कर देता है। तो चलिए ज़रा हम आईना मूवी का ये गाना पेश करते हैं और सुदेवी जी को और उनके पूरे परिवार को खुश करते हैं। वाकवा के वाकवा की सुदेवी जी ने इस गाने की फरमाइश की है। उन्होंने गाना नाम किया है थयोली की दीदी ललिता के और कुशल परिवार के, दीदी सुनीता, शोभा, देविना, मालेगा के राम रतन परिवार के नाम उन्होंने ये गीत किया है। चलिए जरा सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: दिलों की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं गुलशन जी की पसंद का गीत, और गुलशन जी की पसंद का गीत है शिव जी के नाम का गीत, और उन्होंने इस कहानी की फरमाइश की है सभी भक्तों के लिए, सभी शिव भक्तों के लिए। श्रावण मास की मंगल कामनाएं देते हुए उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है, और उनका ये कहना है कि वे भी कांवर बना रहे हैं और कांवर बनाने वालों के नाम भी ये गाना कर रहे हैं। वे भी गंगा तालाब की ओर जाने वाले हैं कल, और गंगा तालाब में शिव जी की आराधना बहुत ही श्रद्धा के साथ करने वाले हैं। वैसे भी आजकल श्रद्धा से उनकी प्रार्थना कर ही रहे हैं, पर स्पेशल प्रेयर करेंगे कल। और वैसे उनकी मम्मा के नाम उन्होंने ये गाना किया है, प्रभा जी के नाम, अपनी बहन दीक्षिता के नाम, आयशा के नाम और पूरे भोला परिवार के नाम किया है उन्होंने ये गाना। और हर हर महादेव सभी भक्तों को कहा है, आर्य हंसिनी जी को भी कहा है।

इस बार आ गले लग जा मूवी का गाना है, किशोर कुमार की आवाज है, गूंजने वाली है ये बहुत प्यारी सी मैजिकल आवाज, और इस आवाज को सुनवा रहे हैं हम ललिता जी की पसंद पर। प्रियल की ललिता कुशल जी ने ये गाना मांगा है अपनी बहनों के लिए, सुदेवी, ज्ञानी, देविना और नीता के लिए, साथ में उनकी सखियां।

छोटी जी और प्रभावती जी हैं, साथ में भाई हरीश भाई, आत्माराम जी, सुखलाल मौसी, उषा लुकाना जी हैं और हमारे सभी श्रोताओं के नाम किया है ललिता जी ने किशोर कुमार की आवाज़ का ये गीत।

7:39 हुए हैं और अभी हम पेश कर रहे हैं आपके लिए दिलों की आवाज़ शो। और दिलों की आवाज़ शो में हम आप लोगों के नाम कर रहे हैं वो गाने जो आप फरमाइश कर रहे हैं जिनकी, और ऐसे में आपकी फरमाइशों वाली गाने हमारे पूरे श्रोताओं को, हमारे सभी श्रोताओं को एंटरटेन कर रहे हैं। फिलहाल तो बाहुश गुडलैंड से संध्या जी की पसंद पर हम बढ़ेंगे। संध्या जी का कहना है कि कल उनके पापा देवचरण गोवर्धन जी का जन्मदिन है, सभी बच्चों की तरफ से अपने लेट पापा को वे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं और उनका आशीर्वाद सब बच्चों पर रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने गाने की फरमाइश की है, जिसे लिया है हमने, वो कौन थी।

मूवी से और ये गाना उनके पापा जी का फेवरेट गाना था सो उनके नाम ज़रूर करेंगे जहाँ भी होंगे। ये गाना तो क्या उनका बच्चों का प्यार देखकर बहुत बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएंगे पापा।

तो चलिए इस बार बौशखी की ओर बढ़ाते हैं हमारे गानों को और धनी जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। धनी जी ने बौशखी से मांगा है बागमा मूवी का ये गाना अमिताभ बच्चन ऋचा शर्मा की आवाज़ों में, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं धनी जी की तरफ से यश और अहमीश के नाम।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज़

बाग़बा मूवी का ये गाना रहा और ऋचा शर्मा अमिताभ बच्चन की आवाज़ें सुनी आपने। इस बार चलिए बढ़ें हम शंकर जी का नाम लेते हैं। श्रावण मास का ये वातावरण है और शंकर जी के पूजन का, शंकर जी के आराधना का ये माहौल है। तो चलिए ज़रा हम सुनते हैं ये गाना शंकर जी के नाम का। उषा जी ने ब्रह्मस्थान से इस गाने की फरमाइश की है सभी भक्तों के नाम।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज कार्यक्रम में इस बार जो पेश करेंगे वो होगा भारत का एक गाना। कल 15 अगस्त है। इस खुशी के मौके पर हमसे फरमाइश कर रही हैं हमारी श्रोता इस गाने की, और ये वो गाना है जिसकी फरमाइश की है माला जी ने बुबा सैन से। तो हर भारतवासी के नाम ये गाना।

तो चलिए दिलों की आवाज़ कार्यक्रम हम बढ़ाते हैं, आपके दिलों की आवाज़ हम पहुंचाते हैं हमारे श्रोताओं तक। इस समय 8:08 हुए हैं और हमारा आपका साथ 9 बजे तक का है। तो चलिए अभी पेश करेंगे हम जो गाना, वो होगा करण अर्जुन से लिया गया और करण अर्जुन मूवी का ये गीत हम पेश कर रहे हैं महेंद्र जी के लिए। पालमा के महेंद्र जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपनी दीदी मान के लिए। तो चलिए ज़रा सुनते हैं प्यार का बंधन कैसा होता है, रिश्ता कितना प्यारा कितना पवित्र होता है।

आज तो है बड़ा ही स्पेशल डे. स्पेशल डे है वंशिका बगब का. वंशिका बगब आज अपना जन्मदिन मना रही हैं और आज तो बहुत बहुत प्यार से सभी लोग उनके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं. सारी दुआएं परिवार की ओर से उनकी ओर जा रही हैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन वंशिका जी. आपके पापा रंजीत, आपकी मम्मा, भाई साहिल, सर्वेश और फूफू, दादी, चाचा सब मिलके आपको कह रहे हैं वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. और चाचू नवीन जी आपको बहुत बहुत सी मंगल कामनाएं दे रहे हैं मोंटाइन ब्लॉन्च से. हमारी पूरी टीम की तरफ से ये दुआ है कि आप हमेशा प्रगति करती रहे, आप हमेशा खुश रहें और आप अपने परिवार के लिए गर्व का एक जरिया बन जाए. वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू.

और इस बार जो बढ़ेंगे तो हमें नजर आएगा मैसेज ताया के मोहित रफीक मोहित जी का। और ताया के मोहित रफीक जी ने हमसे फरमाइश की है फिल्म संघर्ष के गाने की। तो चलिए, अगर आपको पुराने गाने पसंद हैं तो ये गाना आप सबों के नाम रफीक मोहित जी की तरफ से।

और चलिए जरा हैप्पी बर्थडे कहें हम फाइज जी को। फाइज जी लावेनिया रहती हैं, उनका है बर्थडे और उन्हें मंगल कामनाएं बहुत बहुत सारी मुबारकबाद दे रही हैं उनकी पत्नी इकरा, उनके सास ससुर शिरीन और इरफान जी और बड़ी नानी छोटी जी। आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रही हैं फाइज जी, आपको लंबी उम्र मिले, आपको बहुत तरक्की मिले, आप का जीवन बहुत खुशगवार रहे, यही दुआ है छोटी जी की आपके लिए, आपके पूरे परिवार की दुआ है ये आपके लिए, हमारी पूरी टीम की तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।

और इस बार चलिए हम शिव भक्तों के नाम करते हैं। ये अगला गीत ये है सत्यम शिवम सुंदरम का गाना, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं आकाश जी की पसंद पर। आकाश जी अपने तीन कांवरों के साथ, अपनी टोली के साथ गंगा तालाब की ओर जा रहे हैं, और गंगा तालाब की ओर जाते हुए भगवान की आराधना कर रहे हैं। अभी वे महोबाकुआ पहुँचे हुए हैं, और सभी भक्तों के साथ मिलकर, अपनी पूरी टोली के साथ मिलकर ग्लेन पोगवाकवा के रामधनी परिवार के नाम ये अगला गाना कर रहे हैं, जिसे हमने इस सत्यम शिवम सुंदरम मूवी से लिया है। और यही कामना करते हैं आकाश जी कि हर भक्त की मनोकामना पूरी हो, हर भक्त की आराधना सफल हो, और भगवान शिव के चरणों में अपनी आराधना प्रकट करके वे अपने मन को शांत

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: आपके दिलों की आवाज हम तक पहुंच रही है। दिल हमारा भी बेहद खुश हो रहा है। आपके लिए हम वो गाने तो चुन ही रहे हैं जिसकी फरमाइश आपने की। उम्मीद करते हैं मन आपका बड़ा शांत तो बड़ा खुश हुआ होगा इन गानों को सुनकर। चलिए जरा हम पाक दामन मूवी का ये गाना पेश करते हैं। अगर पाक दामन मूवी का ये शादी वाला गाना हम पेश कर रहे हैं तो बेशक किसी शादी के लिए ही पेश कर रहे होंगे। तो इस गाने की फरमाइश अब्बू जी ने की है। बदुला फैमिली और लक्ष्मण फैमिली में शादी हो रही है और दूल्हा दुल्हन को बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रहे हैं खालू अब्बू की तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं बहदुल्ला फैमिली और लक्ष्मण फैमिली को। और अब्बू जी इस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आफेस, असलम, आया, जायान, जाहिरा, रईस, कला छोटी, अपी और उनकी पत्नी के लिए और रकीबा के लिए। तो चलिए सुनते हैं मुबारकबाद देता हुआ ये गाना।

और चलिए जरा हम धूल का, माफ कीजिए, धूल का फूल का गाना नहीं है ये, गुमनाम मूवी का गाना है। इब्राहिम जी आप समझ गए होंगे कि ये गाना आपके नाम है, पोर्ट्रेट के इब्राहिम जी ने सुनना चाहा है। गुमनाम मूवी का ये गाना मोहम्मद रफ़ी और शारदा सिन्हा की आवाज़ों में।

और अभी 8:47 हुए हैं और पेश करेंगे इस बार हम अगला गाना आपाजू परिवार की पसंद पर दागन श्वेता रवीश प्रीशा लविशा और पूरा अपारी परिवार रोशनों के ये गाना सुनना चाह रहे हैं तो चलिए उनकी पसंद का गाना उनके नाम करते हैं आपादू परिवार के नाम।

और ये होगा हमारा अंतिम गाना, हमारे कार्यक्रम का ये अंतिम गाना, दिलों की आवाज़ कार्यक्रम की ये अंतिम आवाज़ आप सुनिएगा, जख्मी मूवी से लिया गया। और साजिद जी, जख्मी मूवी का ये गाना है जिसकी फरमाइश आपने की है। जख्मी मूवी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में है, रोजिल के साजिद जी ने इसकी फरमाइश की है। सो इसी गाने के साथ हमारी आपकी मुलाकात दिलों की आवाज़ कार्यक्रम के जरिए समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए भोजपुरी तड़का प्रोग्राम। और भोजपुरी तड़का प्रोग्राम हम पेश करेंगे रेडियो मर्शस से, जो सीधा प्रसारित इस चैनल पर भी, यानी कि रेडियो मनोरंजन पर भी होगा। और इस प्रोग्राम में अगर आप भाग लेना चाहेंगे तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा 5251705 पर, या फिर 4028085 पर। तो इस गाने को सुनते रहिएगा और भोजपुरी तड़का में मिलते हैं।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

नमस्ते हमनी के सब श्रोता लोग के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो हर स्वागत करे थे जा और जहाँ हुई बजा हो जा खुश खुश रहिया जा ही उम्मीद करे थे जा रेडियो मर्श सौरी रेडियो मनोरंजन दोनों पर कार्यक्रम चला था और तो हर स्वागत करे थे जा हमने ये कार्यक्रम में अपन पसंद के गाना तो हमें से फरमाइश करिया जा 5251700055 पर SMS के जरिए और 4028085 पर कॉल के जरिए जैसे खुशी तैसे अपन फरमाइश करिए जा जोन गाना खोजवा जा वो गाना हम तो लुके सुनवाओ अब जा और अभी तो शुरुआत करब जा भैया के शादी से उमेश दन हो जे के गावली गाना है चले भैया के शादी हो तो गाना खूब मजे से गई है जा

तो चलो छोटी जी के फरमाइश पर हमने प्रस्तुत करे थे गीत गवाई होलाई गाना विभा चिंतामणि के गावल, और ये गाना हमने प्रस्तुत करे थे जा छोटी जी बगल से ललिता जी खातिर, प्रभावती जी, आत्माराम जी और हरी जी खातिर।

चला करी जा नारी के जय जयकार हमने राकेश परमेश्वर जी के संगे संगे करब जा। और ही नारी ये दुनिया में बहुत बहुत तरह से आगे बढ़ता और दुनिया में सब कुछ संभाल लेवेला। जय जयकार करी जा नारी जी के। और ये गाना हमने सुनीता जी के पसंद पर मंगले हैं जा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में चला हमने जन्मदिन के बधाई देला जा धनवंती राजा राम जी के। मौदालबिया के धनवंती राजा राम जी अपन 75वां जन्मदिन मनावत हवन काल 15 अगस्त के। उनका हमी के पूरा टीम बगल से बहुत बहुत मंगल कामना। तोरा अच्छा सेहत मिली, तोरा अच्छा प्यार मिली परिवार के, ये उम्मीद करते जा। तोर पूरा परिवार बगल से मंगल कामना है जन्मदिन के धनवंती राजा राम जी। गाना लीलो माथुर जी के गावल तो हर नाम करते ही जाना।

पानी के बुलबुला बिस्वा जी महेश जी के गावली गाना हमने बजाव था जा हमने के श्रोता आत्माराम जी के नाम आत्माराम जी बेले से गाना मंगले हुआ ना पर बहन सुदेवी ललिता छोटी प्रभावती जी के नाम और बेले के इसनो परिवार के नाम।

आप सुन रहे बड़का मामा के कर पत्तो याई गाना सुरेश बोजू जी गैले अवन और मंगले होन हमने से विश्वानी दुमन जी वाकवा से गाना विश्वानी जी मांगत हवन अपन बहनी इंदिरा शारदा खातिर अपन सहेली नीला और प्रतिभा खातिर शोभा जी खातिर और गीता गजाधर जी खातिर

और अभी कुछ अभी 9:32 होल बाद सुनी जा हमने गुर की समर की गाना पूर्णिमा फकीरा जी गए हवन और एक फरमाइश नोवेल फ्रांस से गायत्री जी कर ले हवन अपन बेटा अजय खातिर माई बुके मामी कल्याणी मोहन जी खातिर मोताइलोंग के भाभी शकुंतला खातिर और नोवेल फ्रांस के अपन सखी गीता बाई खातिर

और चला हमने के भोजपुरी तड़का के शान बढ़ाई लज्जा राजीव मंगर जी के गावल गाना के संगे धितना धितना और ये गाना हमने बजावत है जा अमृता जी खातिर पीतों के अमृता जी गाना मंगले हुआ सोनिया और परी खातिर बेटा विहान और पतो मीनाक्षी खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

और चलिए जरा हम बढ़ें, चला बढ़ी लाजा हमने, अभी श्रावण मास चला था और श्रावण मास के अवसर पर शिव जी के आराधना पूजा हुआ था और गुलशन जी कार्य में खूब हाथ बटावत हवन और इस संगे संगे अपन दोस्त परिवार लोग के संगे मिल के शिव जी की आराधना करत हवन। गुलशन जी सब जितना कोई परितालाब की ओर जाता उनकर खातिर एगो शिव जी पर आधारित गाना मंगले हवन, पूरा भोला परिवार खातिर और सब सब शिव भक्त लोग खातिर, सब श्रावण मास मनाए होला भक्त लोग खातिर। ई गाना जे न सुनब जा शिव जी पर आधारित, यह कुणाल हीरीलाल जी के गाव।

0: अभी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का हाँ जी भोजपुरी तड़का चलता अभी 9:50 होल बा और ये बढ़ते बढ़ते हमने चली जा सुनीता ननकू जी के गाना बगल ये गाना हमने बजावत है जाज सुनीता ननकू जी के गावल सुनीता जी माफ़ करिए सुदेवी जी के नाम सुदेवी जी मंगले अवनी गाना अपन बहन ललिता खातिर थ्रियोले के दीदी ललिता और कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेगा के रामरतन परिवार खातिर त चला चमेली चमेली गाना सुनी जा जहाँ घुमे घुमे

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: अभी जन सुनवाओ अब जाता लो के वे गो शिव जी के गाना हलीलो माथुर सुकन जी गैले हवन शिव जी के नाम लेवा थे जा शिव जी के आराधना करे थे जा गाना हमने थयोले के ललिता जी खातिर बजाओ थे जा उनकर बहिन सुदेवी ज्ञानी देवी ना नीता खातिर छोटी जी प्रभावती जी आत्मा राम जी हरि जी खातिर सुखलाल मौसी और उषा लोकाना जी खातिर

संतोष महादेव जी के गावल चढ़ल बा मरमिट में गरम पानी चलाए हमनी भी साथ साथ ये गाना गायला जा और ये गाना हमने बजावत है जा सुनीता जी के फरमाइश पर गांव गुप के सुनीता जी गाना मंगले हुआ अपन बहन विमाला और अमृता खातिर

सिया मांगे अयोध्या के राज इगाना हमने सुना थे जा अभिमन्यु हरपाल जी के गावल और इगाना हमने कल्याणी जी खातिर बजाओ थे जा कल्याणी जी गाना मंगले हवन सत्यानंद साली खातिर गीता राधे की सुन और रूप कर ले कालू खातिर अंजू और बड़की मीनोवा खातिर

चला पाई के सुनीता जी के नाम करत है जाई गाना, राजेश कोप के गावल गाना और खत लिखे के ई जन जज्बाबा। चला सुनी जा

तो एक खत लिखे के जज्बा अभी लिख चाहे ला रहे कि खत तनी कमती हो गल बाबा खेर खत लिखे के मजा ही कुछ और रहा। अभी 10:11 हो बा और ये आगे बढ़ जब हमने दादा की कहानी दादी की कहानी सुने के सुनते सुनते ये गाना हमने के सुनाओ थो वन गासन सिंगारों जी और मंगले हो नम से सुयाक से श्रीमती जी चंद्रमुनि परिवार खातिर और हमने के सब श्रोता लोग खातिर।

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का में अब रिकुत हमने अंबे मैया के को गाना सुनवाव जाता हूँ लोग के और गीत सुनीता नन को जी गए हवन अभी पूजा के माहौल चलता त राजन लक्ष्मण जी लाफलोहा से गाना मंगले हवन अपन पत्नी माला खातिर बेटी प्रगति और प्रार्थना खातिर बहन मानती खातिर भगिनी उर्मिला तुलसी खातिर और पूरा लक्ष्मण परिवार खातिर।

राजकमल चिंतामणि जी के गावल गांव के लाफों तेनुआ में और ये गाना हमने बजवा थे जा उर्मिला जी खातिर उर्मिला जी गांव पे से गाना मंगला हुआ अपन चारों बहन खातिर संध्या मेधा और मनीषा और सुनीता खातिर अपन बचपन के याद दिलावेला उनका बचपन के याद दिलावेला ये गाना उन

और अब चला सुनी जा हमनी रंभा राम तो हल्ज के हवे गाना जिन सब कोई सुन सुन के खूब ठुमका लगावेला। रेखा जी गाना मंगले हुवन बॉम्बू से अपन बहिन मीना के जन्मदिन के अवसर पर अपन भाई विनेश और विजय तथा माता पिता के तरफ से।

और अब जुन गाना सुने थे जहाँ हमने रेशमा भी कंजी के गावल है भी नहीं हो गई ले इश्क के मामला ये गाना हमने बजाया थे जा विनीता के नाम विनीता जी गाना अपन बहन बबीता के नाम कर रहे हैं और अपन भाई राघव के नाम

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के समय पूरा हुआ था। अभी 10:53 हो पा और जुन गाना अभी तो लोग सुना अब जा वो गाना हमने के कार्यक्रम के अंतिम चरण लेके चलाए और ये हमने के कार्यक्रम 11 बजे लेके है।

12 बजे सुनिया जा आज के हमने के पुराना गीत के कार्यक्रम सुनहरे पल और सुनहरे पल कार्यक्रम लेके एहन गिनेशा हमने के मुलाकात आवथला होई दिमाग के फजीर के मिलब जा तब तक खातिर हम सुरेखा तौर से आ गया चाहत है शुभ रात्रि नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ,
1: जहाँ सुर हो, संगीत हो और दिल से निकले एहसास हो, वही तो है सुनहरे पल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत सा सफर आपके और हमारे बीच में। विशिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम।

हर गीत एक एहसास है, हर सुर एक याद है, और आज का हर पल आपके नाम है सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। बिल्कुल, आज का दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, कुछ मिनट अपने दिल के लिए जरूर निकालिए और सुनिए वो गीत जो कभी दिल से नहीं उतरते हैं। और गिनीशा की तरफ से अगला नगमा खासकर आपके नाम।

संगीत की दुनिया में कुछ गीत हमेशा अमर रहते हैं और आज हम उन्हीं अमर नगमों को लेकर हाजिर हैं। बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए और इन गीतों के साथ अपने जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को फिर से महसूस कर लीजिए। आप सुन रहे हो सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

बॉलीवुड के गीतों की मिठास आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी पहले थी, तो चलिए उसी मिठास का मजा ले लेते हैं। वैसे हर धुन में छुपा है एक रिश्ता और हर लफ्ज में छुपा है एक जज्बात। ये सफर आपके दिल तक जरूर पहुंचेगा, सिर्फ और सिर्फ सुनहरे पल। तो चलिए जी, हमारी तरफ से अगला नगमा सारे सुनने वालों के नाम जो बड़े शिद्दत से गिनेशा का साथ दे रहे हैं इन योर सुनहरे पल।

जो गीत माँ बाप ने सुने, जो हमने सुने और जो आज भी नए लगते हैं, उन्हीं गीतों का खूबसूरत संगम है सुनहरे पल में। आज के गीत आपको मुस्कुराएंगे, आज के गीत आपको मुस्कुराएंगे भी और शायद थोड़ा इमोशनल भी कर देंगे। बस दिल खोल कर सुन लीजिए और यूं ही साथ देते रहे ऑन रेडियो मॉरिशस।

म्यूजिक कभी बुरा नहीं होता है अच्छे गीत हमेशा जवान ही रहते हैं और इसी खूबसूरत एहसास के साथ इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे वैसे ये जो सुनहरे पल हम लेकर आते हैं यादगार बना देते हैं पुराने गीतों के साथ आइए इन नगमों के साथ दिल को सुकून देते हैं और अगला नगमा आप बस सुन लीजिए आपके लिए ही है

मानना तो पड़ेगा कि बहुत सारे ड्राइवर्स लोग जो हैं हमारा साथ देते रहते हैं ऑन द रेडियो मॉरिशस इस वक्त, पुराने गीतों को एंजॉय करते रहते हैं और साथ साथ में इतने सारे मॉरिशियंस हैं डायस्पोरा अक्रॉस द ग्लोब साथ निभाते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो चलिए ये अगला नगमा हमारी तरफ से आप लोगों के नाम, खासकर हमारी तरफ से।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गनीशा टू से गुड बाय टू यू. हम बाय बाय इसीलिए बोलते हैं ताकि हम दोबारा वापस आ सके. मिलेंगे फिर से एक और सुनहरे पल के खूबसूरत से सफर में. तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: फिर वही फुर्सत के रात।
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

ममा के कंच पकाए मची के खाई हो, ममा के खाई हो, पापा के खाई हो, भैया

परमाना। आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो